FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की स्थानीय प्रसारण सेवा का ये छिंदवाड़ा केंद्र है। आज दिन शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की नवमी तिथि, तदनुसार 30 मई सन 2026। श्रोताओं, इस वक्त सुबह के 5:58 और ठीक 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। सुबह के ठीक 6 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अपने देश की मिट्टी में एक अनोखी खुशबू है। यहाँ की हवाओं में प्रेम है, खेतों में हरियाली है, पर्वतों में अडिग साहस है और नदियों में बहती संस्कृति की अमिट धारा है। जब सुबह की पहली किरण धरती को छूती है तो ऐसा लगता है मानो भारत माँ ने अपने आंचल से पूरे संसार को उजाला बांट दिया हो।

माँ, यह शब्द अपने आप में ममता, शक्ति, करुणा और संरक्षण का प्रतीक है। जब जब संसार पर संकट आया, तब तब आदिशक्ति माँ दुर्गा ने अपने विविध रूपों में भक्तों की रक्षा की और अधर्म का नाश किया।

भक्त शिरोमणि महाबली हनुमान केवल बल और पराक्रम के प्रतीक नहीं बल्कि सच्ची सेवा, विनम्रता और अटूट श्रद्धा के भी प्रतीक हैं।

श्रोताओं, भक्ति का रंग जब मन पर चढ़ता है तो सारी चकाचौंध फीकी लगने लगती है। कान्हा की मुरली में ऐसा अद्भुत आकर्षण है कि जिसने भी उसकी तान सुनी वह बस उसी का होकर रह गया। वृंदावन की गलियों में गूंजती बांसुरी की मधुर धुन केवल संगीत नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और आत्मा का आह्वान है।

गम्य समाहित स्वर्थे शर्मा बंधु, नितिन मुकेश, अनूप जलूटा, उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन और साथियों के। इसी के साथ आज की वंदना अब यहीं संपन्न होती है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। सुबह के 6:30 बजे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर के स्वरों में। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है। ये है श्री रामचरित मानस गान की कड़ी संख्या 408।

आज प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का समापन प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास की विनय और रामायण के पारायण की फलस्तुति की गई है। भक्त कवि का कहना है कि इस कलिकाल में श्री राम स्मरण के अतिरिक्त योग, जप, तप, व्रत, पूजा आदि कोई भी दूसरा साधन नहीं है। स्वयं को संबोधित करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, हे मेरे मन, पतित पावन श्री राम का भजन कर किसने सदगति नहीं पाई। जो मनुष्य रघुकुल शिरोमणि का चरित गाते और सुनते हैं, उनके समस्त पाप और मन का मैल बिना परिश्रम के धुल जाते हैं, उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। जो रामायण की 5-7 मनोहारी चौपाइयों का अर्थ समझकर हृदय में धारण कर लेते हैं, उनका 5-5 प्रकार की अविद्या का अंधकार अर्थात अज्ञान श्री राम कृपा से मिट जाता है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास ने परम शांति पाई, उन श्री राम के समान कृपालु अन्य कोई नहीं। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है, न ही आपके समान कोई दीन बंधु। ऐसा जानकर हे रघुवंश भूषण, आवागमन के मेरे भयानक दुख का हरण कीजिए। श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, कल्याणकारी, विज्ञान और भक्तिदायक है।

0: अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर के युगल स्वरों में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आज आपने सुनी कड़ी संख्या 408। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। लीजिए सुनिए चिंतन। आलेख श्री रमेश कुमार क्षत्रिय का है, वाचन शैलेंद्र जोगी का।
1: हमारे यहां कहावत है कि व्यक्ति का धन गया तो कुछ नहीं गया, क्योंकि धन तो हाथ का मैल है, वो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अगर चरित्र का हनन हुआ तो समझो सब कुछ लुट गया, क्योंकि चरित्र वो अनमोल कमाई है जिसे एक बार अगर खो दिया तो दोबारा कमाना नामुमकिन है। व्यक्ति का चरित्र उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण का हर कोई अनुसरण करता है, जो उसे साधारण से असाधारण व्यक्ति की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। पवित्र धार्मिक ग्रंथ गीता में कहा गया कि चरित्रवान और श्रेष्ठ व्यक्ति के कृतित्व, व्यक्तित्व और आचरण का संसार के आम मनुष्य अनुसरण करते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए न तो किसी तप की आवश्यकता है और न ही किसी साधना की, बल्कि अपने आचरण में कोमलता, शिष्टता और वाणी में मधुरता की आवश्यकता है। प्राचीन काल में हमारे आदर्श महान संत, ऋषि मुनि, समाज सुधारक और महापुरुष जो थे, उनका सच्चरित्र ऐसा था कि उनके द्वारा कही गई हर बात व्यक्ति को शिरोधार्य होती थी। समाज उत्थान को जीवन का लक्ष्य मानकर चलने वाले महापुरुषों का चरित्र एक मिसाल है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे तो साधारण इंसान, किंतु उनका चरित्र बल असाधारण था। उनके अहिंसावादी सिद्धांतों में न केवल देशवासियों को प्रभावित किया, बल्कि पूरे विश्व ने उनके आदर्शों को स्वीकार किया। ब्रिटिश सरकार तो उनके आदर्श चरित्र के आगे ऐसी नतमस्तक हुई कि उसे हमारे देश को आजाद करना पड़ा। गांधी जी जनहित के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे और ये उनके चरित्र बल का ही प्रभाव था कि देश ने एकजुट होकर अंग्रेजों को यहां से जाने का विवश किया। सदाचरण का अनुकरण समाज में व्याप्त कुरीतियों और रूढ़िवादिता में परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। वर्तमान में हमारी पीढ़ी जिस पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के अंधानुकरण में भटक रही है, ऐसे हालात में उसे ऐसे महापुरुषों के आदर्श और चरित्र को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है जिससे उसे सही दिशा मिल सके। हमारे यहां पूर्व से सूर्य उगता है जिसे सभी नमन करते हैं और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। कहने का तात्पर्य कि पूर्व और पश्चिम का मौलिक भेद तो रहेगा ही, सभ्यता संस्कृति में भी यही अंतर है। विकास के मामले में भी भले ही पश्चिम का अनुकरण देश हित और जनहित में उचित है, किंतु उसकी स्वच्छंद संस्कृति को अपनाकर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हम अपनी जड़ों को आप ही खोदकर अपनी सभ्यता का अस्तित्व मिटाने पर तुले हुए हैं। जब हमारी जड़ें ही न बचेंगी तब हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान मिटते देर नहीं लगेगी, क्योंकि व्यक्ति का चरित्र ही उसकी पहचान होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम श्रेष्ठ व्यक्तियों और महापुरुषों के आदर्शों को आत्मसात करके उन्हीं के अनुरूप अपने चरित्र को ढाल कर आचरण करें, जिससे समाज में अपने आप स्वस्थ वातावरण निर्मित होगा और चारों ओर शांति और सुख समृद्धि का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। व्यक्ति का चरित्र बल सफलता की असल कुंजी है।
0: शैलेंद्र जोगी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। आलेख

0: श्री रमेश कुमार क्षत्रिय का था। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: मम्मी के जन्मदिन पर आकाशवाणी से बधाई देना है, क्या करूँ?

FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। सुबह के 6:45 हुए हैं, वक्त है कार्यक्रम विवरण का।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर के बाद सुबह 6:50 पर सुनिएगा हेलो छिंदवाड़ा कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी के प्रबुद्ध श्रोता श्री ईसरी लाल वर्मा से उनके जीवन में आकाशवाणी का योगदान, उनके जीवन में आकाशवाणी की यादों और इतने वर्षों के आकाशवाणी के साथ सफर पर अमोल शिंदे की बातचीत।

सुबह 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गंगा लेकर हम हाजिर होंगे सुबह 7:35 पर। सुबह 8:30 सुनिएगा फिल्म संगीत। सुबह 9:00 से आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई से। सुबह 10:00 जिले की चिट्ठी भोपाल से अनुप्रसारित की जाएगी। सुबह 10:05 पर बहनें सुनेंगी उनका अपना कार्यक्रम शक्ति रूपा। इसमें मन की बात का विषय होगा महिलाओं के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच। साथी होगी चर्चा आलू हर रसोई का साथी इस विषय पर। साथ ही सुनिएगा आकाशवाणी के 90 साल पूर्ण होने पर आकाशवाणी छिंदवाड़ा की युवा श्रोता प्रियंका साहू से वार्ता के संपादित अंश। इसके साथ ही कार्यक्रम में शामिल होंगे नियमित क्रम। सुबह 10:35 पर सुनिएगा लोक धुनों पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। युवा श्रोताओं के लिए युववाणी प्रसारित की जाएगी शाम 5:30। इसमें आज की बात का विषय होगा पोषण में आलू का स्थान। साथी होगा ग्रम साहित्य सरिता जिसमें आज चर्चा साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी की। साथ ही कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के 90 साल पूर्ण होने पर आकाशवाणी छिंदवाड़ा की युवा श्रोता वैष्णवी

0: करने से वार्ता के संपादित अंश और होगा क्रम तरुणों की पसंद। इसके साथ ही जानेंगे आज का इतिहास, होगी अमृतवाणी और जानकारी अगले युवाणी कार्यक्रम की। शाम 6 बजे सुनिएगा लोकधुनों का कार्यक्रम माटी के स्वर। शाम 6:30 बजे आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। शाम 7:20 पर सुनिएगा किसान वाणी कार्यक्रम। इसमें आज सुनिएगा आकाशवाणी गांव में शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी एवं उनके क्रियान्वयन पर स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम। रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम मेरी पसंद। रात 8:30 बजे सुनिएगा गैर फिल्मी गजलें। रात 9 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई से। रात 9:15 बजे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे प्रोग्राम स्पॉटलाइट। पुनः जुड़िएगा देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से रात 9:30 बजे। श्रोताओं, इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा। आज इसमें आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी के प्रबुद्ध श्रोता श्री ईसरी लाल वर्मा से उनके जीवन में आकाशवाणी का योगदान, उनके जीवन में आकाशवाणी की यादों और इतने वर्षों के आकाशवाणी के साथ सफर पर अमोल शिंदे की बातचीत।
1: आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमोल शिंदे। श्रोताओं, आकाशवाणी केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं और यादों का हिस्सा रहा है। 90 वर्षों की इस ऐतिहासिक यात्रा में अनेक पीढ़ियां रेडियो के माध्यम से जुड़ी और आज भी यह रिश्ता उतनी ही आत्मीयता के साथ कायम है। इसी विशेष अवसर पर आज हमारे साथ उपस्थित है एक ऐसे श्रोता जिन्होंने लंबे समय तक आकाशवाणी को सुना और महसूस किया है। आज हमारे साथ स्टूडियोज में उपस्थित है श्री इसरीलाल वर्मा जेम जी, जो कि बहुत लंबे समय से आकाशवाणी छिंदवाड़ा के साथ जुड़े हैं। इसरीलाल वर्मा जेम जी, आपका स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में।
2: आपको भी मेरा सादर नमस्कार और आभार व्यक्त करता हूँ मेरे को स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए।
1: वर्मा जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए।
2: मेरा एक संक्षिप्त सा परिचय लीजिए। मैं छिंदवाड़ा जिले के परासिया क्षेत्र के छोटे से ग्राम भमोड़ी कालरी से बिलोंग करता हूं और मैं यहीं पर रहकर अपनी शिक्षा दीक्षा और जो भी जॉब वगैरह भी मैं भी एक रहा हूं। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में भी मैं छोटे से पद पर कार्यरत रहा हूं जी। और यहीं पर मेरा जीवन जो है समापन की ओर भी अग्रसर है
1: जी।
2: और मेरा एक शौक है, मेरा रेडियो की तरफ भी झुकाव रहा है क्योंकि रेडियो एक सस्ता साधन है हमारे भारत देश का प्रसारण का और ज्ञान जानकारियां प्राप्त करने का।
1: इसरीलाल वर्मा जेम जी, आकाशवाणी सुनना आपने कब शुरू किया और आकाशवाणी से जुड़ी आपकी यादें क्या है?
2: आकाशवाणी तो से तो मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ। सबसे पहले तो SLB से भी जुड़ा हुआ हूँ जो कोलंबो 7 हिंदी प्रसारण श्रीलंका से होता था। उसके बाद में छिंदवाड़ा से तो कुछ मैं बाद में जो मेरे एक ज्येष्ठ मित्र रहा करते थे हरि नारायण डेहरिया, और वो मेरे प्रणेता रहे हैं और प्रेरक रहे हैं
1: जी।
2: उनके माध्यम से मैं इस पर पदार्पण किया हूँ और तब से आज तक हाँ ऐसा कुछ रहा है उतार चढ़ाव के दरमियान में अवरोध में कि कभी मैं समय रहते हुए मैं सक्रिय नहीं रह पाता था। सो पत्र मेरी आपूर्ति नहीं होती थी, यहाँ तक नहीं पहुँचते थे। लेकिन जब जब भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ तब तब भी मैं आकाशवाणी छिंदवाड़ा के सानिध्य में आया हूँ और उसी प्रसय में रह रहा हूँ।
1: वर्मा जी, आपके जो अनुभव है आकाशवाणी छिंदवाड़ा के बारे में विशेष रूप से वो हम जानना चाहेंगे।
2: जी हाँ, मैं क्रमशः यदि आप अनुमति दे तो मैं साझा करने के लिए तत्पर हूँ
1: जी।
2: तो पहला अनुभव तो ये हुआ है कि पहले की आकाशवाणी प्रसारण में कई गति अवरोध आ जाया करते थे। कभी समय असमय पे ट्रांसमिशन जो है अवरुद्ध हो जाते थे, बिजलियां चली जाती थी और सरसराहट रहती थी, उतना गुणवत्ता से प्रसारण हम नहीं सुन पाते थे, उसका लाभ नहीं ले पाते थे
1: जी।
2: और इस प्रकार से जो तन्मयता रहती थी सुनने की वो थोड़ी सी भंग भी हो जाया करती थी। लेकिन आज के समय में उत्तम तकनीकी, सर्वोत्तम तकनीकी

0: और उपयांत्रिकी जो विभाग होता है
1: जी,
0: एक्सपर्ट विभाग होता है
1: जी,
0: वो आज अच्छे उन्नत और उत्थान पूर्वक कार्य कर रहा है
1: जी,
0: अपनी विशिष्टता को की सेवा दे रहा है वो, जिससे कि आज हमारा भारत में छिंदवाड़ा जो प्रसारण है उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, आदर की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि आज हमारा छिंदवाड़ा स्टेशन जो है प्रसारण सेवा केंद्र है, ये केवल किसी पर निर्भर होने वाली बात नहीं है, और जहां तक है पार्टी सपोर्ट भी करता है, सपोर्ट भी करता है और सहभागीदारी भी करता है। आज दिल्ली केंद्र को भी हम प्रायोजित करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, मुंबई केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को भी हम सपोर्ट करते हैं और उनका आधार बनते हैं। आज ये हमारा एफएम छिंदवाड़ा जो है 102.2
1: जी
0: जो है, ये एक आधार स्तंभ बन चुका है मौजूद परिस्थिति में
1: जी। बिल्कुल वर्मा जी, आपके जीवन में आकाशवाणी का क्या महत्व है?
0: हमारे जीवन में आकाशवाणी का महत्व तो मेरे जीवन के अलावा और सार्वजनिक जीवन में
1: जी,
0: सारे भारतीय नागरिकों को भी होना चाहिए, ये एक बहुत जरूरी उपखंड है। ये गीत संगीत की ही दुनिया नहीं है, ये बहुत दुर्लभ और बहुत 100% अपेक्षित रूप से मानव और जनहित की जानकारियां भी लेता है, देता
1: जी,
0: है
1: जी,
0: प्रदान करता है, बहुत जरूरी सूचनाएं भी हमें देता है। जैसे कि हमारे प्रसारण में जैसे युवावाणी के तहत
1: जी
0: हम सारे परिशिष्टों को भी देखते हैं, इसमें एक साथ सवाल आता है, ये तो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है जिसमें कि सात सवाल ऐसे सवाल होते हैं बहुत दुर्लभ होते हैं और बहुत जानकारी है जो है हमारे एकत्रित करने के लिए हमारे सामान्य ज्ञान की भी वृद्धि करता है। और आज के दिन क्या होता है, जैसे आज का इतिहास बताता है, आज की बात बताता है, आज की बात में एक ज्ञानवर्धक आप

0: हम सारे परिशिष्टों को भी देखते हैं, इसमें एक साथ सवाल आता है। ये तो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है जिसमें कि सात सवाल ऐसे सवाल होते हैं, बहुत
1: जी
0: दुर्लभ होते हैं
1: जी
0: और बहुत जानकारियां जो है हमारे एकत्रित करने के लिए हमारे सामान्य ज्ञान की भी वृद्धि करता है। और आज के दिन क्या होता है, जैसे आज का इतिहास बताता है, आज की बात बताता है, आज की बात में एक ज्ञानवर्धक आपका स्लोगन भी सुनाई देता है। ये अनिवार्य रूप से जीवन का हमारे जो है रेडियो प्रसारण जो एक अंग बन गया है, अनिवार्य बन गया है। और उस अंग को हमें अपने शरीर के जैसे अंगों के माफिक उसे स्नेह करना
1: जी
0: चाहिए, पोषण करना
1: जी
0: चाहिए।
1: बिल्कुल। श्रीलाल वर्मा जिम जी, आपके आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में सबसे पसंदीदा कार्यक्रम कौन से रहे हैं?
0: यदि सबसे पसंदीदा कार्यक्रम कहूं तो वो भावनात्मक प्रोग्राम होता है आपके मित्र और ये गीत,
1: जी
0: और ये मेरा एक निजी अनुभव बताता है और निजी आवश्यकता महसूस कराता है कि इस कार्यक्रम को, क्योंकि ये जनमानस में आज लाखों की संख्या में हमारे छिंदवाड़ा जिले के लोग इस प्रसारण को सुनते हैं, उसके अलावा करोड़ों की तादाद पर पहुंच जाता
1: जी
0: है
1: बिल्कुल
0: भारत के देश प्रादेशिक, यहाँ तक कि बताऊं पंजाब है, असम है,
1: जी
0: उड़ीसा है
1: जी
0: और अपना यूपी है, ये सारे प्रदेश को बिलोंग करता है ये
1: जी बिल्कुल
0: स्टेशन।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और यहाँ तक कि मैंने 2 सप्ताह 3 सप्ताह पहले छिंदवाड़ा का ही एक प्रवासी जो अमेरिका में जाके बसा हुआ है वहां से हेलो आकाशवाणी के लिए
1: जी
0: उसने फोन भी किया है।
1: जी
0: और दूसरा एक आता है हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी में भी रविवार के दिन ही प्रस्तुत होता है और लोग अपना अवकाश का दिन भी मनाते हैं
1: जी
0: और अपने घर पर सुनते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: वैसे तो टीवी वी का प्रसारण भी होता है लेकिन आज भी रेडियो हमारा विद्यमान है, आज भी रेडियो को लोग पसंद करते, जन जन तक ये फैला हुआ है।
1: जी
0: ये रेडियो आकाशवाणी जो है ये बिना बिजली के भी उपलब्ध रहता है,
1: बिल्कुल
0: बाकी तो हम लोग टीवी का प्रसारण बिजली के बिना तो हम संभव होता है, पानी पानी पाते हैं, लेकिन ये मोबाइल के माध्यम से इस और सेल के माध्यम से जिस माध्यम से भी होता है इंस्ट्रूमेंट से हम आकाशवाणी को जन जन तक पहुंचाते हैं और उस तक संदेश पहुंचता भी है।
1: जी वर्मा जी, आप जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे बाकी श्रोताओं से आप क्या बातें साझा करना चाहेंगे?
0: आज जिस तरीके से हम प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में हम एक दूसरे के पत्रों की भावनाओं के माध्यम से, उद्घोषकों की रीडिंग के माध्यम से हमारे जो भाव प्रदर्शित होते हैं, हम नित्य और रोज या हमेशा तो एक दूसरे से प्रत्यक्ष में रूबरू हो नहीं सकते,
1: बिल्कुल
0: और जिस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से भी हम एक दूसरे के सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं,
1: जी
0: तो ये जुड़ाव हमारा अमरत्व हासिल करे
1: जी
0: और आगे युगों युगों तक हमारा साथ चलते रहे।
1: श्रीलाल वर्मा जेम जी, आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए और बहुत सारी बातें हमसे साझा की, अपनी भावनाओं को प्रकट किया और आकाशवाणी के आपके जो अनुभव है इतने वर्षों से जुड़े उनको हमसे साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आभार आपको भी, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आपके इस फॉर्मेट में, इस मंच में मुझे आमंत्रित किया गया,
1: जी
0: आमंत्रित करने के लिए मैं हृदय से कृतज्ञ भी हूँ, आभार भी हूँ, और क्या पता इस ऋण को चुकाने के लिए मुझे अवसर फिर कब मिले या ना मिले। नमस्कार
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा। इसमें आज आपने सुना आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी के प्रबुद्ध श्रोता श्री ईसरी लाल वर्मा से उनके जीवन में आकाशवाणी का योगदान, उनके जीवन में आकाशवाणी की यादों और इतने वर्षों के आकाशवाणी के साथ सफर पर अमोल शिंदे की बातचीत। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। सुबह के 7 बजने को है, थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृहमंत्री ने ड्रोन रडार निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। सुबह के 7:05

0: मिनट हुए हैं, आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: 70 वर्षों का विश्वास, छिंदवाड़ा शहर के मध्य स्थित शिक्षा का मंदिर सेंट जोसेफ स्कूल अपनी एक और नई शाखा प्रारंभ करने जा रहा है, सेंट जेवियर ग्लोबल एकेडमी ICSE पैटर्न। तो आज ही अपने बच्चे के लिए स्थान सुरक्षित कराएं। हमारा पता है SBI मुख्य शाखा के सामने, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। प्रवेश हेतु संपर्क करें 7898091789।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी, आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। सुबह के 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
2: आकाशवाणी

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग वाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज गया पहुंचेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से होगी मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीएसएफ को नई जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वैष्णो देवी धाम के दर्शन किए। प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर बेहतर सुविधाओं के लिए व्यवस्थाओं का अध्ययन जारी। और आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। कल आरसीबी से होगा फाइनल मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग वाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार के गया पहुंचेंगे। यहां वे महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे दिल्ली पहुंचकर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वहीं सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अहम बैठक होगी, जिसमें दोनों देशों के आपसी संबंधों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को नई और अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। गुजरात के भुज में कल भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई चौकियों का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने ये बात कही। श्री शाह ने बताया कि अब सिर्फ सीमा की रखवाली नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की नई अवधारणा पर काम होगा। श्री शाह ने कहा,
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि राज्य सरकार का एक दल यहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने आया है। डॉ. यादव ने कहा कि महाकाल मंदिर, ओमकारेश्वर, भोशाला जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए देश के बड़े तीर्थस्थलों से सीख ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में राष्ट्रीय खरीफ कृषि सम्मेलन में कहा है कि इस बार खरीफ सीजन के लिए जरूरत से 11% ज्यादा बीज उपलब्ध हैं। मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए 1.74 लाख क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार भी तैयार रखा गया है। किसानों को योजनाओं का सीधा फायदा मिले इसके लिए अब तक करीब 9.76 करोड़ फार्मर आईटी भी बनाई जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि तिरुवनंतपुरम की सीमी कंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश की पहली एज एआई चिप नेत्रा A2000 तैयार कर ली है। ये चिप उन्नत 12 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित है। इसका इस्तेमाल निगरानी, ड्रोन, रोबोटिक्स और ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों में होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार के डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत ये एक बड़ी कामयाबी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है। सरकारी तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति बाधित नहीं हुई है।

0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पीएम सूर्य घर योजना प्रदेश में रंग ला रही है। प्रदेश में अब तक 1,29,000 से ज्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लग चुके हैं और 456 मेगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। लाभार्थियों को 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी भी दी जा चुकी है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के 6 लाख घरों को इस योजना से जोड़ना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104 लाख 22 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया है। सरकार की तरफ से 13 लाख से अधिक किसानों को 23,708 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया
2: कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूं खरीदी की व्यवस्था जारी रखी तो वो भी मध्य प्रदेश। सर्वाधिक गेहूं उपार्जन वाले राज्य की तरफ से देखता हूं तो गेहूं की मात्रा में भी पंजाब के बाद मध्यप्रदेश दूसरा स्थान है जिसके पास गेहूं का इतना विपुल उत्पादन के बाद उन्होंने परचेसिंग की है।
0: भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कल पति समर्थ सिंह और सास किरबाला सिंह को 5-5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। सास पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। 12 मई की रात कटारा हिल्स में ट्विशा की मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है जबकि मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ कल परिवार ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा में ट्विशा की अस्थियां विसर्जित की। केंद्र सरकार ने पेंच, कान्हा और बांधवगढ़ को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव जल्द ही यूनेस्को भेजा जाएगा। ये दर्जा मिलने के बाद पेंच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ साथ रिसर्च के लिए विदेशी फंडिंग भी मिलेगी। प्रदेश में 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा की तारीखें बदल दी गई हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने कल नई समय सारणी जारी की। पहले ये परीक्षा 1 से 6 जून के बीच होनी थी लेकिन अब ये 16 से 23 जून तक होगी। इसके बाद 24 से 28 जून के बीच कॉपियां जांची जाएंगी। उर्दू के मशहूर शायर और पद्मश्री डॉ. बशीर बद्र को कल भोपाल में श्रद्धांजलि दी गई। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी में हुई शोक सभा में बड़ी तादाद में शायर, साहित्यकार और नागरिक जमा हुए। 28 मई को उनका निधन हो गया था। भारत सरकार ने उन्हें 1999 में पद्मश्री से नवाजा था। और अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। कल ग्वालियर समेत कई जिलों में बारिश हुई और तापमान एक झटके में 10 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना, नीमच समेत 9 जिलों में ओले और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि कल से ज्यादातर जिलों में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में कल गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए लेकिन गुजरात ने लक्ष्य 18 ओवर से पहले ही हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सिर्फ 53 गेंदों पर 104 रन की धमाकेदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने। कल अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे फाइनल में गुजरात का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बड़वानी में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 2027 तक सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने का काम जारी है। शिवपुरी में कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में टीकाकरण महाअभियान की प्रगति का जायजा लिया। झाबुआ में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ने इस साल दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का लक्ष्य तय किया। आगरमालवा में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दोषी पाए गए लोगों पर अपर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। अनूपपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। ग्वालियर में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर पीएम सूर्य घर योजना के तहत बिजली बचत का काम किया जा रहा है। डिंडौरी में किसानों को खाद अब ई टोकन प्रणाली के जरिए दी जाएगी ताकि समय पर और आसानी से उर्वरक मिल सके। पन्ना में गर्मियों में पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

इंदौर के ग्राम आशापुरा में 10,000 गौ माताओं की देखभाल के लिए एक बड़ी गौशाला विकसित की जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। सुबह के 7:21 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

नमस्कार दोस्तों, आकाश के अनंत ऊंचाइयों से आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी छिंदवाड़ा की आवाज़। और आज कुछ बातें कुछ गीत के साथ हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त रुखसाना। कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत के साथ।

श्रोताओं, जिंदगी में इतनी भी बेफिक्री अच्छी नहीं कि जीवन का सुख दुख, गम और खुशी धुएं के छल्लों में उड़ जाए। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सुबह की धूप, अपनों की मुस्कान, बच्चों की हंसी और सपनों की उड़ान, लेकिन तंबाकू जैसी लत धीरे धीरे इस खूबसूरत जिंदगी को भीतर से खोखला कर देती है। इसीलिए हर वर्ष 31 मई को पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को तंबाकू के खतरों के प्रति जागरूक किया जा सके। तो आइए कुछ ज़रूरी बातें करते हैं, कुछ सच्चाइयों से रूबरू होते हैं। दोस्तों, तंबाकू केवल एक आदत नहीं, यह एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे शरीर के हर हिस्से को नुकसान पहुंचाता है। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी, जर्दा, हुक्का, ये सभी तंबाकू के ही रूप हैं। इसमें मौजूद निकोटीन इसके सेवन करने वाले व्यक्ति को लत का शिकार बना देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष दुनिया में लगभग 80 लाख लोग तंबाकू के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इनमें से करीब 13 लाख लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं तंबाकू का सेवन नहीं करते, लेकिन दूसरों के धुएं यानी पैसिव स्मोकिंग का शिकार बनते हैं। भारत की बात करें तो देश में हर साल लगभग 13 से 14 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के कारण होती है, यानी हर मिनट कई जिंदगियां इस आदत की भेंट चढ़ जाती हैं। सोचिए, एक छोटी सी आदत कितने घरों की खुशियां छीन लेती है। श्रोताओं, आज सबसे चिंताजनक बात यह है कि तंबाकू की गिरफ्त में युवा पीढ़ी तेजी से आ रही है। कभी दोस्तों का दबाव, कभी फैशन, कभी तनाव और कभी फिल्मों या सोशल मीडिया का प्रभाव युवाओं को इस ओर आकर्षित करता है। शुरुआत सिर्फ एक बार से होती है और फिर जीवन भर की लत में ये कब बदल जाती है पता ही नहीं चलता। डॉक्टर कहते हैं कि कम उम्र में तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों में कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। भारत में किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार लाखों किशोर किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, और यह केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि देश के भविष्य के लिए भी खतरा है। धुएं के छल्लों में अक्सर जिंदगी उलझ जाया करती है। जो लम्हे हंसते खेलते बीतने चाहिए थे वो अस्पतालों में सिमट जाया करते हैं। श्रोताओं, तंबाकू शरीर को बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी खत्म कर देता है। तंबाकू के सेवन से होने वाली प्रमुख बीमारियों में फेफड़ों का कैंसर, मुंह और गले का कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, अस्थमा, टीबी, ब्लड प्रेशर, दांत और मसूड़ों की बीमारियां शामिल हैं। श्रोताओं, भारत में मुंह के कैंसर के सबसे बड़े कारणों में गुटखा और खैनी शामिल हैं। डॉक्टरों के अनुसार धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक का खतरा सामान्य व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक होता है। और सबसे दुखद बात, तंबाकू केवल सेवनकर्ता को ही नहीं बल्कि उसके परिवार को भी प्रभावित करती है, क्योंकि तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों

0: और उनका इलाज आर्थिक संकट उत्पन्न करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तंबाकू के कारण दुनिया को हर साल अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या किया जाए? तो फिर हम यही कहेंगे, इसे छोड़ दीजिए, आज से, अभी से। डॉक्टर की मदद लीजिए, परिवार की मदद लीजिए, योग और ध्यान को अपनाइए और जितना हो सके तंबाकू और इसके उत्पादों से दूरी बनाइए। हर वर्ष तंबाकू निषेध दिवस पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा रैली, नुक्कड़ नाटक, शपथ, स्लोगन या अन्य माध्यमों से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, क्योंकि स्वस्थ समाज ही मजबूत राष्ट्र की पहचान है। श्रोताओं, आप अब आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हर नई सुबह एक मौका देती है पुरानी जिंदगी से बाहर आने का और जिंदगी को फिर से गले लगाने का। तो श्रोताओं, बस आखिर में आपसे यही कहना चाहेंगे, स्टाइल नहीं, स्वस्थ जीवन अपनाइए, जिंदगी से प्यार कीजिए, तंबाकू से नहीं।
1: सुनो एक तराना, नया एक फसाना, के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आज का विषय था अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस, जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 31 मई को। और अब आज के इस कार्यक्रम से रुखसाना को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर सुबह के 7:35 हुए हैं। लीजिए पेशे खिदमत है सदाबहार फिल्मी गीतों का नजराना, गीत गंगा।

0: धरती कहे पुकार के। जी हाँ, ये था फिल्म का नाम, जिसका दो गाना भी आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। मजरूह की गीत रचना थी और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये थी गीत गंगा की पहली पेशकश।
1: 70 वर्षों का विश्वास, छिंदवाड़ा शहर के मध्य स्थित शिक्षा का मंदिर सेंट जोसेफ स्कूल अपनी एक और नई शाखा प्रारंभ करने जा रहा है, सेंट जेवियर ग्लोबल एकेडमी ICSE पैटर्न। तो आज ही अपने बच्चे के लिए स्थान सुरक्षित कराएं। हमारा पता है SBI मुख्य शाखा के सामने, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। प्रवेश हेतु संपर्क करें 7898091789।

श्रोताओं, गीत गंगा की ये पेशकश है फिल्म राजकुमार से। हसरत जयपुरी की गीत रचना है और संगीत है शंकर जयकिशन का। आवाजें आप सुन रहे हैं सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की।

0: मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की ये आवाज़ें अभी आप सुन रहे थे फिल्म राजकुमार में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने।
1: छिंदवाड़ा में होने जा रहा है छिंदवाड़ा का सबसे पहला भजन जिमिंग कॉन्सर्ट, छिंदवाड़ा का अपना पहला न्यूज़पेपर, जबलपुर एक्सप्रेस अपने 35 साल पूरे होने पर लेकर आ रहा है एक ऐसा म्यूजिकल भक्ति अनुभव जो आज तक छिंदवाड़ा में कभी नहीं हुआ। 30 मई 2026 शाम 7 बजे से दशहरा मैदान पोला ग्राउंड छिंदवाड़ा। इस इवेंट में एंट्री है बिल्कुल फ्री। जबलपुर एक्सप्रेस छिंदवाड़ा का अपना न्यूज़पेपर।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा,
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी छिंदवाड़ा और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गंगा। प्रोग्राम में आइए अब सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आनंद बख्शी के बोल। तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है गोरा और काला।

गोरा और काला, जी हाँ ये था फिल्म का नाम, जिसका दो गाना भी आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी की गीत रचना थी और संगीत निर्देशन था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, सुबह 8:30 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। और अब गीत गंगा में, आइए सुनते हैं ये संदेश।

श्रोताओं, गीत गंगा की आखिरी पेशकश में लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों को। हसरत जयपुरी ने इस गीत के बोल लिखे हैं और संगीत है रामलाल का, फिल्म का नाम है सहरा।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था और धुन बनाई थी रामलाल ने। फिल्म का नाम था सहरा। श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज की गीत गंगा अब यहीं संपन्न होती है। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। सुबह के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: कि ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वह भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
4: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा

0: अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कुंकड़ी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धरमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major

आक्रमण। जी हाँ, ये था फिल्म का नाम जिसका गाना भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और अब फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए ये गाना।

आप सुन रहे हैं राजेश रोशन का संगीत। फिल्म दूसरा आदमी के लिए गीत लिखा है मजरूह ने, आवाजें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की।

मजरूह ने इस गीत के बोल लिखे थे, राजेश रोशन का संगीत था। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें आप सुन रहे थे फिल्म दूसरा आदमी में। लवर्स, जी हाँ, यह है फिल्म का नाम जिसका गाना बाप को सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में। आनंद बख्शी की गीत रचना है और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

लवर्स फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल थे और राहुल देव बर्मन का संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं बप्पी लहरी की बनाई तर्ज पर इंदिवर की शब्द रचना। आवाज़ें सुनिएगा लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है तोहफा।

तोहफा। इस फिल्म में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों को, और अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत की ये आखिरी पेशकश।

तोहफा। इस फिल्म में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों को, और अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत की ये आखिरी पेशकश।

थोड़ी सी बेवफाई। जी हाँ, ये था फिल्म का नाम, जिसका गाना भी आप सुन रहे थे अनवर और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में। नक्श लायलपुरी ने इस गीत के बोल लिखे थे, जिसकी धुन बनाई थी खयाम ने। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं ख़त्म होता है। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। सुबह के 9 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई से।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में।

चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। ये प्यारा सा गाना भी आप सुन रहे थे कदर टू फिल्म से, विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साथियों की आवाज़ें, गीतकार थे सईद कादरी और संगीतकार मिथुन। दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। इसका उद्देश्य आलू के पोषण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा में उसके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आलू विश्व की प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है, ये हर आय वर्ग के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। भारत सहित अनेक देशों में आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, ये किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है। आलू से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं जैसा कि हम लोग रोज खाते भी हैं, इसलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। आलू की खेती और उससे बनने वाले नाना प्रकार के व्यंजन आजीविका का महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराते हैं, इसीलिए इस वर्ष की थीम भी शायद यही बात कह रही है। इस वर्ष की थीम है वेयर पोटैटोज ग्रो लाइवलीहुड्स फ्लरिश। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाए और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज़ में पिंटू की पप्पी फिल्म का गाना, रमन रघुवंशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा डॉक्टर निट्स ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए रश्मि रॉकेट फिल्म का गाना। आवाजें हैं भूमि त्रिवेदी और साथियों की, कौशल मुनीर के बोल और तर्ज अमित।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए एआर रहमान और हीरल विरदिया की आवाजों में महबूब का लिखा और एआर रहमान का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम हीरोपंती 2।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश देहाती डिस्को फिल्म से दिव्या कुमार की आवाज़, प्रणव वत्स ने लिखा इसे और संगीतबद्ध किया है गणेश आचार्य ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जो सिनेमा के पर्दे पर बतौर विलेन भी नजर आए।
1: मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं? हवेली पे आ जाना, कल यहां पे हजारों लोग होंगे, पूरी फोर्स बदलवा के रख दूंगा मैं, हाहाकार मचा दूंगा।
2: क्या
1: हाहाकार?
2: तेरे बाप का राजा क्या?
3: क्वाइट विक्रम, मामा ठाकुर से गलती हुई है।
2: क्या बात कर रहे सर?
1: ये बात मैं दिल्ली तक लेकर जाऊंगा।
2: चलिए अभी दिल्ली।
0: बतौर चरित्र अभिनेता भी, बतौर कॉमेडियन भी।
4: ए खालिद भाई, मेरा नंबर है।
5: अरे यार, तू दोस्त है अपन का, मैं गया तू गई की बात
4: है? ना ना, दोस्त है तो घर पे आ।
5: क्या बात करता है, सिर्फ 50 रुपया? ये तो बहुत कम है यार, तू टेंशन मत ले यार, कोयला ले और 50 के आगे एक जीरो लिख डाल, 500 हो जाएगा, बात खत्म।
6: क्या बात सु? खालिद भाई मेरी बीवी क्या?
5: अरे सॉरी, ये तो बहुत बुरा हुआ, सॉरी।
6: एक बार ये लिखने वाला खालिद भाई मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसकी डेथ सर्टिफिकेट लिख डालूंगा, देखना।
5: मेरे को मालूम है किसने लिखा है।
0: और उन्होंने रंगमंच पर भी अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं जाने माने अभिनेता परेश रावल को।

परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार जुहू में रहता था और उनका एडमिशन वहां जुहू स्कूल में करवा दिया गया। जब वो 11-12 साल के थे तो स्कूल के मंच पर अभिनय करने लगे और जुहू स्कूल की प्रिंसिपल ने उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने नन्हे परेश से कहा कि वो अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मंच पर वो अपनी अभिनय प्रतिभा की जौहर दिखाना जारी रख सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई इसी तरह से चलती रही। रंगमंच और पढ़ाई को किसी तरह से परेश रावल ने बैलेंस किया और फिर मुंबई के नरसी मुंजी कॉलेज में पढ़ने लगे। यहां के प्रिंसिपल ने भी परेश रावल की अभिनय प्रतिभा को समझा और उनके साथ सहयोग किया, यानी उन्हें कॉलेज के लेक्चर्स छोड़ देने की अनुमति मिल गई क्योंकि वो अपने कॉलेज के लिए थिएटर किया करते थे। परेश रावल ने अपने कॉलेज को कई प्रतियोगिताओं में जिताया। उसके बाद 1973 आया जबकि परेश रावल ने पेशेवर थिएटर ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल थिएटर के बैनर तले उन्होंने अपना पहला प्ले किया जिसका नाम था वेन छे मौत। ये वो दिन थे जब परेश फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे। वो थिएटर की दुनिया में खुश थे क्योंकि यहां उन्हें अपने मन मुताबिक एक्टिंग करने मिल रही थी। लेकिन फिर उनकी नजर पड़ी नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के काम पर और तब उन्हें यह एहसास हुआ कि थिएटर के अलावा फिल्मों में भी अभिनय की दुनिया का विस्तार है। और तकरीबन 4-5 साल बाद सन 1978 से 1980 के बीच परेश रावल ने यह फैसला किया कि उन्हें फिल्मों की दुनिया में जाना है। फिल्मी दुनिया में संघर्ष करना शुरू किया। श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, कुमार साहनी जैसे कला फिल्मों के निर्देशकों से उन्होंने समय समय पर मुलाकात की और बताया कि वो फिल्मों में काम करने के इच्छुक हैं और फिलहाल थिएटर में सक्रिय हैं। लेकिन परेश रावल का काम नहीं।

अब परेश को ये समझ में आ गया था कि फिल्मों में उनके लिए फिलहाल तो जगह नहीं है। वो थिएटर में अपना पूरा ध्यान लगा रहे थे। एक दिन की बात है, मुंबई के मशहूर पृथ्वी थिएटर में परेश रावल के किसी नाटक का शो चल रहा था। जाने माने प्रोड्यूसर करीम मुरानी उस शो को देखने आए और उन्होंने नेपथ्य में जाकर परेश रावल से भी बात की और बाद में निर्देशक राहुल रवेल से परेश के नाम की सिफारिश की। राहुल रवेल उन दिनों फिल्म बना रहे थे अर्जुन, और सन 1985 में परेश रावल को फिल्म अर्जुन के लिए साइन कर लिया गया। शूटिंग का पहला दिन था, पहली बार परेश रावल कैमरे का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपना टेक इतनी अच्छी तरह से दिया कि निर्देशक राहुल रवेल ने कहा, परेश जी अब आप मेरी हर फिल्म में काम करेंगे। और इस तरह से परेश रावल थिएटर की दुनिया से होते हुए फिल्मों में चले आए।

धीरे धीरे परेश रावल ने फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमाने शुरू किए, लेकिन इन दिनों वो नाटक करते चले जा रहे थे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, सन 1976-77 का जमाना था। परेश रावल एक गुजराती नाटक कर रहे थे, ठोकर, जो पीटर श्वाफर्स के नाटक इक्वल पर आधारित था, और इन दिनों उनकी मुलाकात हुई मॉडल और अभिनेत्री स्वरूप संपत से। परेश रावल को स्वरूप संपत से प्यार हो गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि परेश रावल का ताल्लुक एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार से था और स्वरूप संपत एक अंग्रेजीदा परिवार से आई खूबसूरत मॉडल, मिस इंडिया और एक बेहद खूबसूरत नाजुक शख्सियत थी। दोनों का कहीं कोई मेल नहीं था। परेश कहते हैं कि ये उनके लिए सपनों जैसे दिन थे। आखिरकार एक दिन परेश रावल और स्वरूप संपत ने शादी कर ली।

0: फिल्मों में अभिनय के लिए अगर हिंदुस्तानी सिनेमा के कोई आदर्श हैं उनके लिए तो वो हैं बलराज साहनी, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी। परेश रावल का ये भी मानना है कि अभिनय उन्हें बड़ा ही दिलचस्प करियर लगता है, क्योंकि एक्टिंग की दुनिया में एक जीवन में कई जीवन जीने का मौका मिलता है। अर्जुन के बाद परेश रावल को फिल्मी दुनिया में अपना नाम अच्छी तरह से कमाने का मौका मिला तो वो थी महेश भट्ट की सन 1986 में आई फिल्म नाम। इसमें भी परेश रावल ने विलेन का रोल किया था। इसके बाद तो परेश रावल ने कई फिल्मों में तरह तरह के रोल किए। कभी वो बतौर विलेन नजर आए, कभी चरित्र अभिनेता के तौर पर, और कभी आपको हंसाते हुए नजर आए, कॉमेडी करते हुए।
1: विश्वजीत, हाँ बोल, ए इसमें तो कौन सी साड़ी पहननी है, है?
2: पता नहीं इनकी नाम भूलने की बीमारी कब जाएगी। इतनी सारी साड़ियाँ लेकर क्या कर रहे हो?
1: अरे भाई, कल तुमने जो 15-20 साड़ी खरीदी थी ना, है ना, तो मैं ये पूछने आया हूँ कि इसमें कौन सी साड़ी को इस्त्री मारनी है। डार्लिंग विश्वजीत,
2: परमजीत।
1: कौन परमजीत?
2: मेरा नाम परमजीत है जिससे तुमने शादी की है।
1: अभी अभी सोना बेटा, तुम्हारी बात को बोलो ना। अच्छा क्या बात, बाद में चिल्लाते रहने का है?
3: ओहो डैडी, मेरा नाम सोना नहीं मोना है।
1: ये साड़ी की उलझन में मैं इसका नाम भी भूल गया, परिमल।
4: डैडी जी, मेरा नाम परिमल नहीं, अनमोल है।
1: ए यार, तेरे को क्या हो गया? चुनीलाल?
2: मणिलाल।
1: कौन मणिलाल?
2: तोड़ा नाम मणिलाल है, मणिलाल पटेल।
1: ये नाम मैंने कब रखा?
2: बचपन से।
1: बचपन से? बचपन से मेरा ये नाम है, और मुझे अभी बताती हो तुम? ले, अभी अभी अभी मैं याद रखूंगा, मेरा नाम मेथी लाल है बस।
2: ओ जीसस।
1: जीसस, अभी तुमने बोला ना मेरा नाम मेथी लाल है, अभी जीसस।
3: गेट आउट, गेट आउट।
0: परेश रावल की सबसे मशहूर कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी। परेश मानते हैं कि हेरा फेरी की सफलता का सारा श्रेय जाता है इस फिल्म के लेखक नीरज वोरा को, जिन्होंने कॉमेडी को बड़ी अच्छी तरह से निभाया था।
5: भैया, आप गांव में घर है ना आपके?
6: नहीं है। क्यों
5: नहीं? क्योंकि अगर कल शाम ने आपको घर से निकाल दिया
6: है?
5: तो मेरा तो ठीक है, आप इस उम्र में कहां कुत्ते की तरह भटकोगे।
7: देख राजू, जबान को लगाम दे, समझा?
5: देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका।
6: सच बात बोलता तो मेरे को कोरा कागज पे अपना दस्तखत दे दे रे बाबा।
8: आपको मुझ पे भरोसा नहीं?
5: ये इसके दिल में खोट है।
7: तेरे दिल में खोट है? मैं तो किराया देके रहता हूँ, तू तो मुफ्त में रहता।
5: हाँ तो मुफ्त में रहता तो क्या हुआ, मैं दस्तखत करने को तैयार हूँ।
7: तो मैं भी दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ।
5: हाँ तो करना तू।
7: हाँ तो तू भी करना।
5: हाँ तो कागज लेके आना तू।
7: तू कागज ले।
5: अरे मैं क्यों लेके आऊं?
7: मैं क्यों?
5: तुम दोनों में तो दोनों बाहर जाओ, पेपर लेके आओ, जाओ।
6: इन दोनों के लफड़े में मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले।
5: हेलो, पेपर पे साइन किया है, इसने अभी तक नहीं किया, खोट है इसके दिल में।
7: बताओ ना, साइन कर रे बाबा, साइन कर। तू कर रे साइन, साइन कर।
9: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
8: क्या हुआ? क्या हुआ?
7: आपको गाना सुनाई दिया?
8: गाना?
5: ये सब बहानेबाजी है, मैं चैलेंज मार के बोलता हूँ ये साइन नहीं करने वाला।
8: ये तो साइन कर रहे बाबा, साइन करना, जल्दी साइन कर रहे, साइन कर।
9: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
8: आपको गाना नहीं सुना दे रहा?
5: कौन सा गाना?
8: साफ सुनाई दे रहा है।
5: ये गुरु घंटाल आदमी है, साइन नहीं करने वाला। मैं कहता हूँ इसका बोरिया पिस्तौल उठाओ, बाहर फेंक दो उसको।
8: ये तो साइन कर रहे, साइन कर रहे, गाने गाने गाने लगाए, साइन कर रहे गाने।
10: हेलो
5: हेलो, देवी प्रसाद?
10: चम्मा नहीं, देवी प्रसाद नहीं है, तुम क्या करोगे?
5: सर वो मेरी मछली का क्या हुआ?
10: वो तो मैं खा गया।
5: खा गए?
10: हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया।
0: बतौर विलेन परेश रावल अपनी दो फिल्मों को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, एक है फिल्म डकैत और दूसरी फिल्म कब्जा। आज परेश रावल 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं, और एक कलाकार के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी कुछ प्रतिनिधि फिल्मों का चुनाव करना। लेकिन अपने एक इंटरव्यू में परेश रावल ने अपनी पसंदीदा फिल्मों के बारे में बताया है। उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है केतन मेहता की फिल्म सरदार, जिसमें उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाया था। परेश रावल से जब पूछा गया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने तैयारी कैसे की, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो वो मिल नहीं सकते थे, वो इस दुनिया में नहीं है, तो परेश का जवाब था कि उन्होंने असंख्य तस्वीरें उनकी देखी और उन तस्वीरों के जरिए ये अंदाजा लगाया कि सरदार पटेल किस तरह से बोलते होंगे, किस तरह से चलते होंगे और उनका स्वभाव किस तरह का होगा। इसके अलावा उन्होंने इस अभिनय के लिए बहुत सारी रिसर्च भी की।
11: फिर वही बात, हम यहाँ पे आजादी की बात करने आए हैं, बंटवारे की नहीं। और अगर बंटवारा होना ही है तो उसका निर्णय एक आजाद देश के आजाद लोग करेंगे, अंग्रेज सरकार नहीं।
0: पूजा भट्ट की फिल्म तमन्ना को वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानते हैं क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने एक वृहन्नला का, एक हिजड़े का किरदार निभाया था। परेश ये कहते हैं कि ऐसे किरदार भी मानवीय होते हैं, उनका अपना संघर्ष, उनकी अपनी तकलीफें होती हैं और इस फिल्म के जरिए उन्होंने इस तरह के चरित्र की तकलीफों को सिनेमा के पर्दे पर जीवंत कर दिया था।

0: राजा।
1: हेरा फेरी आँखें आवारा पागल दीवाना, गरम मसाला, दीवाने हुए पागल, मालामाल वीकली, गोलमाल, हलचल, छुप छुप के, भागम भाग, शंकर दादा, भूल भुलैया, वेलकम, मेरे बाप पहले आप, दे दनादन और हंगामा जैसी ना जाने कितनी फिल्में हैं जिनके जरिए परेश रावल ने आपको हंसाया है।
2: और नाचते नाचते तुम्हारे पांव कहां पड़ रहे थे और घुंघरू किस ताल में बज रहे थे वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। अब जब तुम्हारी चोरी सामने आ गई है तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा करो, लौंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाने का बहाना बना रही हो।
3: अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे?
2: अरे नौटंकी, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या बेवकूफ समझ रखा है मुझे? इतना याद रखना, हम सब समझ गया हूँ और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और ये जो महंगी महंगी साड़ी है जो तुम्हारी इस गोल घूमट जैसे बदन को पहनाई है उसका क्या? और दिन रात जो तरह तरह के खाने जो तुमने चाट चाट के रसोई घर में खाए हैं उसका पैसा कौन देगा?
1: सन 1994 में परेश रावल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म वो छोकरी के लिए, और फिल्म सर के लिए उन्होंने जीता फिल्म फेयर पुरस्कार।
4: हम लोगों को इतना खुश देखकर आपको अजीब लग रहा है ना? मैं बताता हूँ, बात यह है कि जब यह छोटी थी ना तो खुश रहती थी, खेलती रहती थी, हाँ, लेकिन जिस दिन से इसकी माँ गई है ना, चुप हो गई है। घर एकदम शमशान हो गया था और इतने साल के बाद आपने सर पे हाथ रख दिया, मेरे घर में जान आ गई है।
1: सन 2001 में फिल्म हेरा फेरी के लिए परेश रावल चुने गए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन फिल्म फेयर की ओर से। सन 2003 में आवारा पागल दीवाना फिल्म के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता।
5: मेरा गला बैठने को आया है? तू क्या कान दुकान पे बेच के आया है? साला बेरा, इधर कचरा नहीं डालने का? ये तो तू नया है ना, इसके लिए मैं प्यार से बात करता हूँ। ये गुलाब वाला तेरा नाम क्या है?
6: लिसन जेंटलमैन,
5: ये साला कौन सा नाम है? समझ में नहीं आता, इधर कचरा नहीं डालने का।
6: I'm sorry.
5: अबे सॉरी क्या इंडिया समझा है? गुना करो, सॉरी बोलो,
7: क्या हुआ बड़ी जी?
5: अबे ये साला घन चक्कर को मैं एक कलाक से समझा भी नहीं थकी गया, इधर कचरा नहीं डालने का, इसको बोल इधर से कचरा उठावे वरना।
1: परेश रावल की एक महत्वपूर्ण फिल्म है अंदाज अपना अपना, जिसमें वो सलमान खान और आमिर खान के साथ नजर आए थे। परेश रावल रंगमंच पर भी सक्रिय हैं, उनकी कंपनी टेलीविजन के लिए सीरियल्स बनाती है और उन्होंने एक फिल्म का निर्माण भी किया है, ओ माय गॉड। ये फिल्म गुजराती के एक प्रसिद्ध नाटक पर आधारित थी।
8: किसे भेजनी है नोटिस?
9: भगवान को।
8: मिस्टर भगवान? सरनेम?
9: पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं है।
8: अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। अरे ये नोटिस किसे भेजूं?
9: हाँ, लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते हैं।
8: अच्छा है?

0: सन 2014 में भारत सरकार ने परेश रावल को पद्मश्री से सम्मानित किया था। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता परेश रावल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: सन 2014 में भारत सरकार ने परेश रावल को पद्मश्री से सम्मानित किया था। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी माने अभिनेता परेश रावल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: आप सुन रहे हैं
1: पाल केंद्र है। लीजिए सुनिए जिले की चिट्ठी। आज इसमें आप सुनेंगे हरदा जिले की चिट्ठी। आलेख लोकेश गौर का है, वाचन स्वर दीपा सिंह का।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। ये वो चिट्ठी है जिसमें दर्ज होते हैं जिले की धड़कनों के सुर, विकास की आहट, जनजीवन की हलचल और बदलते समय की तस्वीर। आज हम लेकर आए हैं हरदा जिले की चिट्ठी, जिसे भेजा है हमारे संवाददाता लोमेश कुमार कौर ने। पिछले एक महीने में जिले में क्या कुछ खास हुआ, किन उपलब्धियों ने सुर्खियां बटोरी, किन अभियानों ने लोगों का ध्यान खींचा और प्रशासन से लेकर आम जनता किन मुद्दों पर सक्रियता दिखाई गई, इन सब का लेखा जोखा हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही जानेंगे आने वाले दिनों में जिले के लिए क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, कौन सी योजनाएं आकार लेंगी, किन कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही हैं और क्या हैं वो खबरें जो हरदा के भविष्य की दिशा तय कर सकती हैं। तो आइए खोलते हैं हरदा जिले की चिट्ठी और पढ़ते हैं बीते दिनों की कहानी, आने वाले कल के जमाने। बात सबसे पहले मौसम की। प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों से इस भीषण गर्मी में अपना ख्याल रखने की अपील की है। नौतपा के चलते जिले में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कल जिले में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सुबह कुछ राहत जरूर मिली लेकिन दोपहर बाद गर्म हवाओं और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। हालात ऐसे रहे कि शाम तक सड़कें लगभग सूनी नजर आईं। वहीं हरदा जिले में जनगणना 2000

में 27 के पहले चरण का काम आज पूरा हो रहा है। 1 मई से शुरू हुए इस अभियान के तहत मकान सूचीकरण और आवास गणना का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को पहले ही विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रगणक घर घर पहुंचकर भवनों का विवरण दर्ज कर रहे हैं, आवास संबंधी जानकारी जुटा रहे हैं। जिले में ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व पूरे उल्लास, श्रद्धा और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। शहर से लेकर गाँव तक मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा कर देश में अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और सौहार्द का संदेश दिया। भीषण गर्मी और बढ़ती पेयजल समस्याओं को देखते हुए प्रशासन भी सक्रिय है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। ग्रामीण नागरिक हैंडपंप या नल जल योजना बंद होने की शिकायत 07577223212 पर दर्ज करा सकते हैं। इसी कड़ी में हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगनी ने विधायक निधि से विधानसभा क्षेत्र के 24 गांवों को फायर फाइटर पानी टैंकर उपलब्ध कराए हैं। इसका उद्देश्य गर्मी के दौरान पेयजल संकट से राहत पहुंचाना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जिले में जागरूकता गतिविधियां जारी है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोरियों को माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, महाविद्यालयों में पोस्टर मेकिंग, रैली और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किशोरियां चुप्पी तोड़ो, खुलकर बात करो का संदेश देकर सामाजिक संकोच दूर करने का प्रयास कर रही हैं। वह डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री स्वामी विवेकानंद शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय में ई ऑफिस प्रणाली का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में कर्मचारियों को दैनिक कार्यों में ई ऑफिस का बेहतर और प्रभावी उपयोग सिखाया गया। अब एक महत्वपूर्ण न्यायिक खबर। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है। वैवाहिक संपत्ति, मोटर दुर्घटना, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और श्रम संबंधी मामलों की सुनवाई राज्य, जिला और मध्यस्थता केंद्रों पर की जाएगी। जिले में कुपोषण दूर करने और स्कूलों में बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पोषण प्रहरी अभियान और विद्या आसन अभियान को समाज का व्यापक सहयोग मिलने लगा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाजसेवियों ने इन अभियानों में सक्रिय भागीदारी का भरोसा दिलाया है। किसानों के लिए भी एक अहम खबर है। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा। किसानों का पंजीयन 15 जून तक जारी रहेगा। वहीं खरीदी केंद्रों पर उपज बेचने से पहले किसानों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है ताकि योजनाओं का लाभ सही किसानों तक पहुंच सके। दूसरी तरफ पुलिस परिवारों के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए हरदा पुलिस ने कंट्रोल रूम में विशेष शिविर का आयोजन किया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, संतुलित आहार, पारिवारिक सामंजस्य और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी। और अब एक और सुखद खबर। मुख्यमंत्री दूरदर्शन योजना के तहत हरदा जिले के 196 वरिष्ठ नागरिक आगामी 3 जुलाई को माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना होंगे। यात्रा राज्य सरकार के खर्च पर कराई जाएगी। इच्छुक वरिष्ठ नागरिक 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो श्रोताओं, हरदा जिले की चिट्ठी में आज बस इतना ही। कल सुबह ठीक 10 बजे हम लेकर आएंगे पड़ोसी नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। हरदा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कर रहे थे। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम शक्ति रूपा।

स्वागत है सखियों, आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम शक्ति रूपा में। आज हम मन की बात करेंगे महिलाओं के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच।

होगी चर्चा आलू हर रसोई का साथी इस विषय पर। होगी छोटी मोटी काम की बातें, बताएंगे 100% की एक बात, और ये सब होगा मनोरंजन के साथ। सखियों, वर्तमान जीवन शैली, भागदौड़, घर परिवार की जिम्मेदारियों के चलते हम अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, जिसे समय पर जांच और उपचार न होने से गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन किसी बीमारी का प्रारंभिक अवस्था में ही पता लग जाए तो किसी रोग से पहले उसके निदान से जल्दी ठीक होकर और ज़्यादा खर्च से बचकर स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। इसके लिए जन्म के बाद से लगने वाले सभी टीकों को लगवाने और पोषण को ध्यान में रखकर नियमित स्वास्थ्य जांच की शुरुआत हमें कर देनी चाहिए। 18 वर्ष के बाद हर महिला को साल में कम से कम एक बार डॉक्टर से अपनी उम्र और आवश्यकताओं के आधार पर और 20 से 30 वर्ष की उम्र से ही वार्षिक वेल वुमेन चेकअप और मूलभूत जांचें प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि किशोर अवस्था टीन एज महिलाओं के शारीरिक और मानसिक विकास का महत्वपूर्ण चरण है। इस दौरान हार्मोनल बदलाव, मासिक धर्म की समस्याओं और पोषण की कमी जैसे एनीमिया का समय पर पता लगाकर उन्हें ठीक करने नियमित जांच और उपचार जरूरी है। सखियों, शारीरिक जांच जिसमें लंबाई, वजन और बॉडी मास इंडेक्स BMI की जांच शामिल करें, जिससे शारीरिक विकास सही तरीके से हो सके। मासिक धर्म का प्रवाह उससे जुड़े लक्षणों जैसे अत्यधिक दर्द या PCOD और हीमोग्लोबिन के स्तर की नियमित जांच, समीक्षा और इलाज से आगे आने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। इसके साथ 9 से 14 वर्ष की अवस्था में लगने वाले HPV के टीके लगवाने से महिलाओं में गर्भाशय यानी ग्रीवा कैंसर से बचाव किया जा सकता है। नियमित स्वास्थ्य जांचों में ब्लड प्रेशर हर 2 साल में और यदि उच्च रक्तचाप या कोई जोखिम हो और 35 से 40 वर्ष की उम्र के बाद हर साल करवाएं। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल जांच 20 वर्ष की आयु से शुरू करके नियमित अंतराल पर हमें लिपिड प्रोफाइल की जांच करवाना चाहिए। 18 से 35 की उम्र में हार्मोनल असंतुलन, थकान और तनाव की समस्या से बचाव के लिए संपूर्ण रक्त गणना, थायराइड और विटामिन डी और B12 के स्तर की जांचें महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार सखियों, मधुमेह से बचाव के लिए हर 3 साल में ब्लड शुगर की जांच शुरू कर दें। सर्वाइकल कैंसर की जांच 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को हर 3 से 5 साल में पेपस्मियर टेस्ट और स्तन कैंसर से बचाव के लिए 25 से 39 वर्ष की उम्र में हर 3 साल में क्लिनिकली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या स्तन जांच करवाना चाहिए। यह 40 वर्ष की आयु में मैमोग्राम हर 1 से 2 साल में करवाना चाहिए, ताकि गंभीर बीमारियों से हम बची रहें। इसलिए किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर हमें डॉक्टर से तुरंत स्वास्थ्य जांचें और इलाज करवाना चाहिए, लेकिन समस्या ना हो इसके लिए नियमित स्वास्थ्य जांच जरूरी है। इसी प्रकार गर्भावस्था के दौरान होने वाली जाँचें जैसे रक्त, मूत्र परीक्षण, टीके, अल्ट्रासाउंड और स्कैन, नियमित जाँचें और उपचार से हम अपने और आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकती हैं। लेकिन प्रसव के बाद भी नियमित रूप से हमें डॉक्टर से परामर्श और उपचार लेते रहना चाहिए, ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। बहनों, इसी के साथ 40 वर्ष के बाद विटामिन्स, हार्मोन के अलावा बोन डेंसिटी, किडनी, लीवर की जांचें भी आवश्यक हैं। 50 से 65 वर्ष की महिलाओं के लिए बोन डेंसिटी टेस्ट रजोनिवृत्ति के बाद हड्डियों को कमजोर होने से बचाने के लिए किए जाते हैं। इसके साथ उचित खानपान और अच्छी जीवन शैली रखें, नियमित योग, प्राणायाम, ध्यान करें, अपने भोजन में संतुलित आहार शामिल करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए अपनी पसंदीदा एक्टिविटी करते रहें और प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों में सभी जाँचें निःशुल्क करवा सकते हैं या अपने अनुसार चिकित्सक से आप नियमित स्वास्थ्य जांचें करवाते रहें, ताकि गंभीर बीमारियों से और उनमें लगने वाले खर्चों से बचें और हम एक स्वस्थ जीवन जी सकें। तो सखियों, ये तो थी मन की बात और जुड़ते हैं मनोरंजन से।

0: प्रियंका साहू है और मैं आज आकाशवाणी के मंच पर आप सभी के साथ अपना अनुभव साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आकाशवाणी को उसके 90 एनिवर्सरी के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आकाशवाणी केवल एक रेडियो चैनल नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं, यादों और विश्वास से जुड़ी एक आवाज है। बचपन से लेकर आज तक इसकी मधुर आवाज में मैं कहीं खो जाती हूँ। आज के समय में जहाँ लोग मोबाइल और सोशल मीडिया ये व्यस्त हो गए हैं, वहीं आकाशवाणी आज भी अपनी सादगी और सच्चाई से लोगों के दिलों में बसा हुआ है। सुबह की मधुर शुरुआत हो या देशभक्ति की गीत हो या ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, आकाशवाणी ने हर पीढ़ी को कुछ न कुछ दिया है। हमारे घर में तो रेडियो सुनने की परंपरा रही है। मैं हूँ या घर वाले सब बड़े मजे से सुनते हैं। आकाशवाणी ने केवल हमारा मनोरंजन ही नहीं किया बल्कि समाज को जागरूक भी किया है। शिक्षा, संस्कृति, कृषि, स्वास्थ्य, खेल, युवाओं से जुड़े कार्यक्रम से देश को जोड़ने का काम किया है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आकाशवाणी जानकारी और प्रेरणा का माध्यम रही है। मैं केवल अपने फ्री टाइम में ही आकाशवाणी नहीं सुनती बल्कि काम करते समय भी सुनती हूँ। आकाशवाणी के साथ मेरा बहुत ही यादें जुड़ी है। आकाशवाणी के माध्यम से प्रेरणा और ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती बल्कि आपसी समझ का भी विकास होता है। सारे ही कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि इन कार्यक्रमों में बोली भाषा बड़ी सहज एवं सरल है जिससे इसका मैसेज सीधे दिल तक पहुंचती है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि खुद के सर्वांगीण विकास के लिए आकाशवाणी का मेरे जीवन में अमूल्य स्थान है। रेडियो की आवाज मेरे जीवन को हमेशा से ही शांति और ऊर्जा से भर देती है। मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी इसी तरह प्रगति करता रहे।
1: सखियों, आप अभी सुन रही थी आकाशवाणी की युवा श्रोता से आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी वार्ता के संपादित अंश, और सुनते हैं कुछ संदेश।

0: सखियों मन की बात और प्यारे से गीत के बाद आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी के युवा श्रोता प्रियंका साहू से उनकी वार्ता के संपादित अंश।
1: नमस्कार मित्रों, मेरा नाम

सखियों इस संदेश के बाद जुड़ते हैं चर्चा से। सखियों, आज यानी हर साल 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। इसके पोषण, आर्थिक, सांस्कृतिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, वैश्विक खाद्य सुरक्षा में इसके योगदान को मान्यता देने के लिए इसे स्थापित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2023 में आधिकारिक तौर पर 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस घोषित किया था और पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई 2024 को मनाया गया, जिसका उद्देश्य छोटे पैमाने के किसानों, विशेषकर महिलाओं का समर्थन करना और आलू के माध्यम से गरीबी, भूख और कुपोषण से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देना था। और आलू कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी और पोटेशियम का एक सुलभ स्रोत है और यह हर रसोई का साथी भी है। आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है, जो किसी भी सब्जी में मिला दिया जा सकता है और यह भारतीय रसोई की सबसे बुनियादी और पसंदीदा सामग्री है। सखियों, आलू के बिना अधिकांश मसालों, सब्जियों और स्नैक्स की कल्पना अधूरी है। यह कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में मदद करता है। आलू से बनाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों और उनके स्वाद तो आप जानती ही होंगी। सब्जी, पराठा, पूरी, नाश्ता और स्नैक्स, सब कुछ आलू से बनाया जा सकता है और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा आलू के कृषि पोषण और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस स्थापित किया गया। आलू दुनिया भर में सबसे अधिक खाई और उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियों में से एक है, जो ऊर्जा और पोषण दोनों प्रदान करता है। यह एक स्वादिष्ट सब्जी ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन है और इसका वैश्विक स्तर पर बहुत अधिक महत्व है। यह व्यापक खेती, स्थायी कृषि और आर्थिक अवसरों और रोजगार को आगे बढ़ाने के साथ सतत विकास में महत्वपूर्ण है। सखियों, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस का तीसरा आयोजन 30 मई 2026 को है, जिसका विषय है जहां आलू उगते हैं वहां फलियां फूलती हैं। इसका उद्देश्य आलू की खेती और मूल्य श्रृंखला के विकास को बढ़ावा देना है। यह गरीबी को कम करना, बुनियादी ढांचे और अधिक समावेशी और स्थिर कृषि खाद्य में योगदान देना है। यह प्राकृतिक रूप से वसा रहित, कोलेस्ट्रॉल रहित और कम सोडियम वाले होते हैं, जो उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकते हैं। यह पोटेशियम, मैग्नीज, विटामिन सी और बी सिक्स से भरपूर होता है। साथ ही प्रोटीन और फाइबर की थोड़ी मात्रा भी इसमें पाई जाती है। इसके अतिरिक्त आलू में पॉलीफेनॉल और कैरोटोनाइड जैसे लाभकारी फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य और दृष्टि क्षमता के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। सखियों, इसमें कई औषधीय, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं, जो पाचन सुधारने, रक्तचाप नियंत्रित करने और त्वचा संबंधी समस्याओं के उपचार में अत्यधिक लाभकारी होते हैं। सखियों, इसमें मौजूद आयरन, फोलिक एसिड हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाकर एनीमिया से लड़ने में मदद करता है। इस प्रकार बहुत गुणकारी और फायदेमंद आलू के लिए ही आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो, जो हमारी और हर रसोई का साथी भी है। और सखियों, अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

सखियों, इस प्यारे से गीत के बाद जुड़ते हैं छोटी मोटी काम की बातों से। सखियों, गर्मियों में पुदीने के विभिन्न तरीकों से प्रयोग हमारे लिए लाभकारी हैं। औषधीय गुणों के कारण खाने पीने की चीज़ों से लेकर विभिन्न उत्पादों में इसका प्रयोग किया जाता है। इन दिनों नींबू पुदीना शरबत, जो नींबू पानी और पुदीने के रस को मिलाकर बनाया जाता है, पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। छाछ और लस्सी में पुदीने पाउडर या ताजी पत्तियां पीसकर मिलाई जाती हैं, जिसे गर्मियों में पीना लाभकारी होता है। गर्मियों में जलजीरा पानी, पुदीने की पत्तियों, काला नमक और मसालों के मिश्रण से पाचक पेय बनाए जाते हैं, जो सेहत के लिए गर्मियों में फायदेमंद है। सूखी पत्तियों को पानी में उबालकर हर्बल चाय बनाई जाती है। पुदीने की चटनी और भोजन में विभिन्न तरह से इसका प्रयोग सेहत और स्वाद दोनों के लिए अच्छा है। मुंह के छालों और मुंह की दुर्गंध दूर करने और दांतों के दर्द को कम करने पुदीने की पत्तियों को चबाने से फ़ायदा होता है। यह माउथ फ्रेशनर के रूप में भी उपयोगी है। अपच और उल्टी होने पर पुदीने की पत्तियों का रस या इसका शरबत पीने से उल्टी की समस्या नहीं होती। इसी प्रकार त्वचा और बालों की समस्या और रूसी को कम करने में पुदीना की पत्तियों का उपयोग लाभकारी है। तो सखियों, ये तो थी छोटी मोटी काम की बातें, और जुड़ते हैं 100% की एक बात से। सखियों, लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनने से और लेटेस्ट गैजेट्स रखने से कोई व्यक्ति मॉडर्न नहीं होता। मॉडर्न होने के लिए यह जरूरी होता है कि आप अपने विचारों और आदतों को अपडेट करते रहें और साथ ही साथ इनकी छटाई भी करते रहें। ये तो थी 100% की एक बात। इस पर विचार कीजिए और अब कार्यक्रम से अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी प्रीति श्रीवास को। नमस्कार।

बहनें अभी सुन रही थी उनका अपना कार्यक्रम शक्ति रूपा। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। लीजिए सुनिए लोक धुनों पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर।

नारायण सनोडिया और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे ये पारंपरिक भक्ति रचना। और अब श्रोताओं, माटी के स्वर की अगली प्रस्तुति में लीजिए सुनिए दादरा, रमेश प्रसाद विश्वकर्मा की आवाज़ में।

श्रोताओं, आकाशवाणी छिंदवाड़ा से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक धुनों पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में लीजिए सुनिए देशराज पटेरिया के स्वर में ये बुंदेली गीत।

श्रोताओं, इसी बुंदेली गीत के साथ कार्यक्रम माटी के स्वर अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। सुबह के 11 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई से।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है मन चित्रपट संगीत। अब आपको सुनवाते हैं एग्रीमेंट फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, गुलशन बावरा के बोल, संगीत है बप्पी लाहिरी का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात।

0: तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं चंबल की कसम। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत को लिखा साहिल लुधियानवी ने, संगीत तैयार किया खय्याम ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: दोस्तों नमस्कार, आज के मैटिनी शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व तंबाकू दिवस पर आइए सुनते हैं BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के मैटिनी शो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं 31 मई ये जो दिन है, इस दिन मनाया जाता है विश्व तंबाकू विरोधी दिवस। और तंबाकू विरोध क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए, सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल जी को। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू।
2: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो लत है तंबाकू की, ये जो नशा होता है, ये लत के अलावा भी तंबाकू का कोई इस्तेमाल होता है, वो किस तरह से होता है?
3: जी एक्चुअली ह्यूमन ने तंबाकू का जो सेवन करने से पहले उसको कोई अलग तरीके से यूज करते थे। जैसे कि हमारा देश खेती प्रधान देश है
2: जी, जी।
3: तो वहाँ पे खेती हमारा पूरा डिपेंडेंसी रहता है। तो खेती को जो दो तीन चीजें से जो खतरा है, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स या बड़े जानवर वगैरह, इनसे खतरा रहता था, तो उनके खेती के जो बॉर्डर पे ये तंबाकू के प्लांट्स लगाए जाते थे।
2: अच्छा।
3: और उनकी वो स्मेल से जो वाइल्ड एनिमल्स वो दूर चले जाते थे। दूसरा था कि खेती को दूसरा जो प्रॉब्लम था वो चूहे से, तो चूहे खेती खराब कर देते थे। तो अभी आज भी की तारीख में भी जो तंबाकू के जो लीव्स रहते हैं
2: जी जी,
3: वो जो बड़े रहते थे वो सूखने के बाद उसको गर्म करके,
2: अच्छा गर्म करके
3: उसको आग लगा के उसको चूहे के जो अंडरग्राउंड जो उनके
2: बिल होते हैं,
3: बिल होते हैं, उसमें डाल देते, चूहे भाग जाते या मर जाते थे। आज की तारीख में भी हमारे जो गाड़ी
2: है, ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है,
3: इवन सिटी में भी,
2: सिटी में
3: जो ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन चूहे गाड़ी के जो वायर
2: को उतर जाते हैं,
3: तो उसको रोकने के लिए भी तंबाकू डाल देते थे उससे। तो उसके अलावा जो तंबाकू का जो पान रहते हैं उसको सूखने के बाद उसका पाउडर करते, उसको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड करके भी यूज होता था।
2: हाँ,
3: जैसे इंसेक्ट्स है जो खेत को या धान को खराब न कर।

0: जी जी जी
1: सो ये कुछ तरीके थे जो अदर देन
0: हाँ
1: सेवन हम इंसान इसको यूज करते थे। तो ये मुझे यहाँ पे ये कहना है कि तंबाकू से किसी को भी सेफ नहीं है, सब खतरे में है।
0: हाँ
1: अगर वो जीव छोटा है तो जल्दी मरेगा, अगर बड़ा है स्लोली स्लोली लेकिन मरेगा जरूर। तो
0: जी
1: तंबाकू के लिए कहा जाता है कि तंबाकू के जो सेवन करने वाले में से 50% लोग को तंबाकू मार ही डालता है। तो ये मैं श्रोताओं को मैं चाहता हूँ कि बात ध्यान से सुने और अपने दिमाग में उसको हमेशा के लिए स्थापित कर
0: जी
1: दे।
0: जी जी ये तो बस एक पेस्टिसाइड की तरह इसको जो इस्तेमाल किया जाता है वो केवल उतनी बात अच्छी है तंबाकू की, ये कह सकते हैं बस,
1: बाकी
0: बाकी कुछ
1: यूज
0: नहीं। चलिए एक और आपसे बात जाननी थी कि आप BST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और 2014 से आपने एक मुहिम चलाई थी तंबाकू विरोधी, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लाइन में जितने लोग काम करते हैं, खासतौर से जो ड्राइवर्स होते हैं बस के और ट्रकों के ड्राइवर्स होते हैं, इन लोगों में ज़्यादा लत होती है तंबाकू की। तो आपने जो मुहिम चलाई है इसके विरोध में, तो उसके 12 साल हो गए, क्या फ़ायदे आपको नज़र आए?
1: या तो मैं श्रोताओं को बताऊं कि तंबाकू में 7,000 अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रहते हैं,
0: ओह, सात
1: रसायन,
0: हजार
1: 7,000।
0: रसायन ओ
1: जब कोई भी उसको कंज्यूम करता है तो वो शरीर में जाके अलग अलग बीमारियां करते हैं, जैसे कि सिंपल हार्ट बीट्स बढ़ जाती है,
0: जी
1: ब्लड प्रेशर बढ़ता है,
0: हाँ
1: हार्ट अटैक
0: हाँ
1: आ सकता है, देन लकवा मार सकता है, अपने जो बोन्स है वो वीक
0: जी
1: हो जाते हैं, और
0: ओहो
1: तंबाकू खाने वाले लोगों को बैक पेन या शोल्डर पेन या फ्रैक्चर के भी प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा तंबाकू की वजह से TB शरीर की बीमारियाँ होती है, और
0: ओ
1: सबसे डेंजर जैसे कि कैंसर,
0: कैंसर
1: पर्टिकुलरली मुंह का कैंसर। तो ये सब बीमारी की वजह से हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज़ जो कर्मचारी उसकी लत के वजह से पीड़ित थे, और
0: जी
1: उसके वजह से हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन भी कम हो रहा था, बिकॉज बीमारी की वजह से वो काम पे नहीं आ सकते थे। तो हमने ये सब चीज़ को देख के हमने 2014 में तंबाकू मुक्त बेस्ट ये अभियान शुरू किया, और
0: तंबाकू
1: हमने
0: मुक्त बेस्ट,
1: बेस्ट
0: अच्छा
1: और आज तक उसको हमने कंटिन्यू किया है। तो 12 साल के आज ये अभियान को हो गए,
0: जी
1: तो
0: जी
1: मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये 12 साल में 5,000 हमारे कर्मचारी ने तंबाकू की व्यसन परमानेंटली छोड़ दिया है।
0: वाह
1: उसके अलावा एक जो सर्वे है उसको हम गेट्स बोलते हैं, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे,
0: अच्छा
1: उसके मुताबिक कि सरकार अगर 100 रुपीज़ टैक्स लेती है तंबाकू के ऊपर, तो सामने 816 रुपये का हमें अतिरिक्त भार हमें भुगतना पड़ता है। और
0: ओहो
1: जो भार है मेनली तंबाकू की वजह से जो बीमारियां होती है उसके
0: जी
1: ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरा जो बीमारी की वजह से लोग काम पे नहीं जाते या प्रोडक्टिविटी लॉस के हिसाब से
0: जी
1: ये नुकसान। तो 12 साल में हमने देखा है कि बीमारियां कम हो गई, उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा कम हो गया, बीमारियां कम हो गई इसलिए सिकनेस एब्सेंटिज्म भी हमारे कम हो गया, और इसके
0: अच्छा
1: वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और रेवेन्यू भी बढ़ गया, और साथ साथ में बीमारियां कम हुई है तो जो उसकी वजह से मॉर्टेलिटी थी
0: जी
1: जो डेथ वो भी हमारे इधर कम हो गई है, कैंसर के प्रमाण हमारे उधर कम हो गए। तो लोगों में एक अच्छी भावनाएं तैयार हुई है तंबाकू के विरुद्ध में। तो ये बीमारियां कम होने से ये जो लोग ठीक हो रहे हैं या जो बीमार बीमार कम पड़ रहे हैं,
0: जी
1: तो ये नोटिफाई किया गया और हमारी जो अभियान को नेशनली और इंटरनेशनल भी रिकग्निशन मिला है, एक्नोलेज किया गया, अवार्ड भी मिला है।
0: क्या बात है,
1: तो ये तो मैं चाहता हूँ कि पूरी भारत में ऐसे अभियान अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में
0: चलाए जाएं,
1: चलाया जाए जो
0: क्या बात है।
1: लोग अच्छे हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े
0: निश्चित रूप
1: हमारी।
0: से आप सभी, आप और आपकी पूरी टीम जो ये मुहिम चला रही है, अभियान चला रहे हैं, आप इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं,
1: यस थैंक यू
0: पुरस्कार भी आपको मिल चुका है
1: यस
0: और काफी उपलब्धियां रही इस
1: यस
0: अभियान के। बेसिक एक बहुत ही सवाल ये है कि लोग क्यों खाते हैं तंबाकू, क्या होता होगा, ये नशे की शुरुआत कैसी होती है, और वो खाने के बाद क्या उन्हें महसूस होता होगा कि वो फिर वो बार बार उसे खाने लग जाते हैं?
1: बेसिकली वो तंबाकू खुद से तो कोई खाता नहीं है,
0: जी
1: मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि पीयर प्रेशर, स्कूल कॉलेज के ज़माने से दोस्त खा रहा है,
0: अच्छा
1: कलीग खा रहे हैं, ले लेना ले
0: अच्छा
1: लेना, तो छोटी
0: ओहो
1: छोटी शुरुआत छोटे से होती है। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक रीज़न ऐसा है, जब तंबाकू का सेवन किया जाता है
0: जी
1: आइदर स्मोक से या स्मोकलेस से, तो अपने ब्रेन में एक केमिकल्स जो है
0: जी
1: वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, वो केमिकल का नाम है डोपामिन।
0: ओके
1: और डोपामिन जो कहते हैं इसको हैप्पीनेस
0: हाँ
1: हार्मोन भी
0: हाँ
1: बोलते हैं,
0: जी
1: वो जब डोपामिन का लेवल ब्रेन में बढ़ता है तो लोग स्ट्रेस फ्री महसूस फील करते हैं,
0: हाँ हाँ
1: उसको खुशी महसूस करते हैं, और सिंपल भाषा में बोले तो

0: किक आती है उनको,
1: ओ
0: और किक के वजह से
1: हाँ
0: लोग, ये पर्टिकुलर ड्राइवर्स, ये
1: हाँ
0: किक के वजह से ये तंबाकू का सेवन करते हैं। तो ये जो देन शुरुआत में बहुत कम मात्रा में तंबाकू की सेवन, बहुत कम मात्रा में डोपामिन लेवल बढ़ता है,
1: अच्छा
0: लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे आगे ये लत बढ़ती है, तब वो डोपामिन लेवल बढ़ता है, तब तंबाकू का लेवल, कंजम्पशन की मात्रा भी बढ़ जाती है।
1: अच्छा
0: उसको कहते हैं कि निकोटीन रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर्स,
1: हाँ
0: वो जो है
1: हाँ
0: वो रजिस्ट हो जाते हैं, तब थोड़ा भी डोपामिन बढ़ने के लिए ज़्यादा मात्रा तंबाकू की कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है। तो ये विशेष साइकिल तैयार होती है।
1: यानी पहले 1 ग्राम खाने पर भी जो खुशी मिलती थी वो
0: हाँ,
1: 10 ग्राम खाने के बाद भी नहीं
0: नहीं
1: मिलती अब,
0: मिलती है
1: और
0: आगे
1: फिर वो
0: जाके
1: मात्रा बढ़ती जाती है।
0: मरते बाद, इसलिए वो उसकी लत लगती जाती है और पेशेंट
1: ओहो
0: उसके पूरी अधीन हो जाता है, उसकी पूरे डिपेंडेंस तैयार हो जाती है, और देन वो बीमारियाँ शुरू होती
1: अच्छा, फिर वही मैं जानना चाह रहा हूँ
0: है।
1: कि एक बार लत लग जाए तो फिर वो कौन कौन सी बीमारियां, बहुत लंबी लिस्ट है वो
0: यस,
1: बीमारियों
0: बहुत
1: की।
0: बड़ी लिस्ट है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि कैंसर, कैंसर ठीक है, होता है, 100%
1: हाँ
0: होता है
1: हाँ
0: वो, लेकिन उसको टाइम लगता है। लेकिन
1: जी
0: उससे पहले जो होते हैं कि
1: हाँ
0: मैंने पहले बताया कि पहला तो जब तंबाकू खाते हैं तो पहला
1: जी
0: हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, और कोई वो नोटिस नहीं करता है,
1: हाँ
0: हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, देन ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। देन ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है, देन डेफिनेटली वो हार्ट पे उसकी असर होने लगती है, तो देन हार्ट अटैक आने के रिस्क बढ़ जाती है। देन जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पैरालिसिस,
1: पैरालिसिस होता
0: उसके
1: है।
0: भी जब तंबाकू कंज्यूम करते हैं तो हमारे जो खाने की जो पाचन शक्ति है वो पुअर हो जाती है, और उसके
1: अच्छा
0: वजह से लोग, उनको अपाचन समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की दिक्कत होती है। जब ये अपाचन होता है तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट विटामिन्स या
1: हाँ
0: कैल्शियम, मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होने चाहिए वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और उसके वजह से पर्टिकुलरली कैल्शियम जो बोलते हैं,
1: डॉक्टर साहब, आप तो बता रहे हैं तंबाकू खाने का ये असर है,
0: ये
1: मगर
0: लेकिन ये
1: कई
0: साइड
1: लोगों को
0: ये,
1: देखा गया है
0: हाँ
1: कि वो जब तक वो तंबाकू नहीं खा लेते सुबह सुबह चाय पीने के बाद,
0: हाँ
1: या सिगरेट नहीं पी लेते,
0: हाँ
1: तब तक उन्हें हाजत नहीं आती और वो टॉयलेट नहीं जाते।
0: या वो एक मिथ है, वो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ मिथ, इट्स अ मिथ जस्ट। अपाचन होता है तो कैल्शियम, सबसे बड़ा कैल्शियम का प्रॉब्लम शुरू होता है, और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, इसलिए वजह से बेसिकली हड्डियाँ और मसल्स में कैल्शियम की बहुत नीड रहती है, ज़रूरत रहती है,
1: बिल्कुल,
0: तो ये मसल्स एंड हड्डियाँ भी वीक हो जाती है, और ऐसे
1: बोन
0: लोग
1: डेंसिटी कम हो जाती
0: बोन
1: है।
0: डेंसिटी कम हो जाए, तो ऐसे
1: अच्छा
0: ऐसे जो तंबाकू जो खाने वाले लोगों में बैक पेन, मसल्स पेन और फ्रैक्चर की मात्रा भी ज़्यादा रहती है। देन
1: अच्छा
0: तंबाकू खाने की वजह से हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इम्यूनिटी बोलते हैं,
1: जी
0: वो
1: जी
0: कम हो जाती है। और उससे अलावा लोग ड्यूटी पे रहते हैं तो लंच या डिनर या स्किप करने के लिए भी लोग तंबाकू
1: अच्छा
0: खाते,
1: ओ
0: तो ये सब की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसके वजह से जैसे कि जो क्षय रोग या टीबी शरीर की बीमारी का उनको ज़्यादा खतरा रहता है,
1: जी
0: और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द एंड या नॉट द लीस्ट, ये कैंसर की बीमारी।
1: जी जी
0: अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि तंबाकू को सबसे ज़्यादा मुंह का कैंसर होता है, और भारत देश पूरे विश्व में
1: जी
0: तंबाकू की वजह से होने वाले मुंह
1: कैंसर के नंबर,
0: के कैंसर के प्रथम नंबर पे आता है,
1: ओहो
0: और ये कलेक्टिवली जो भी मैंने बीमारियाँ बोली उसके वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोग की मृत्यु होती है। तो ये श्रोताओं को जानना बहुत ज़रूरी है,
1: ये बहुत दर्दनाक
0: दर्दनाक चीज़ है। मैं
1: मगर
0: तो,
1: सत्य है
0: लेकिन ये
1: अभी।
0: सत्य है,
1: जी
0: और
1: जी
0: ये
1: जी
0: मैं नहीं बोल रहा हूँ,
1: हाँ
0: ये ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के रिपोर्ट में लिखा है ये।
1: जी जी जी हमने ये भी सुना है डॉक्टर साहब कि तंबाकू खाने से डायबिटीज होता है, मधुमेह।
0: यस, इस पे थोड़ा बाहर दूंगा
1: जी जी
0: कि पहला तो हम समझ लेते कि पूरी दुनिया भर में
1: हाँ
0: दो देश में सबसे ज़्यादा तंबाकू प्रोडक्शन होता है, उसका कंज्यूम भी होता है,
1: हाँ
0: वो है, एक है चीन और दूसरा नंबर पे हमारा भारत देश है,
1: अच्छा
0: और दोनों देश में ही सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, मधुमेह के पेशेंट हैं।
1: ओ
0: तो ये
1: अच्छा
0: इनडायरेक्टली कोरिलेशन है
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: तंबाकू वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। आज की तारीख में देखें तो पूरी दुनिया में डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा मरीज़ भारत में पाए जाते हैं, पहले
1: जी
0: 2 साल पहले चाइना में था, अभी भारत में हो गया, और दोनों में ज़्यादा ही कंजम्पशन होता है। जैसे मैंने बताया कि तंबाकू में 7,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स रहते हैं, वो कंज्यूम करने के बाद हमारा जो डायबिटीज़ का जो मेन जो कंट्रोल मैकेनिज्म है इंसुलिन,
1: जी
0: ये जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को और इंसुलिन के फंक्शन को ये तंबाकू ऑल्टर करता है,
1: अच्छा
0: और बहुत सारे रीजंस हैं, और इसके वजह से शुगर कंट्रोल मैकेनिज्म हमारी बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है। अगर
1: अच्छा
0: आप WHO की साइट पे जाओगे और डायबिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो
1: जी
0: उसके
1: जी
0: जो 5 प्रमुख कारण है उसमें पांचवा कारण है तंबाकू का व्यसन।
1: अच्छा
0: तो लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि

0: तंबाकू वजह से डायबिटीज भी होती है।
1: ओहो, मगर जरूरी नहीं कि डायबिटीज है तो उसको तंबाकू की लत होगी,
0: नॉट नेसेसरी, बट तंबाकू खाने वालों को रिस्क ज्यादा रहती
1: इसकी
0: है।
1: रिस्क है, तो डायबिटीज हो सकता है
0: यस
1: उसे।
0: हो सकता है, और वो डायबिटीज मतलब वो बहुत कड़वी बीमारी है।
1: जी, तंबाकू अगर कोई किसी को अगर उसका नशा है, लत है और वो छोड़ना चाहे तो निश्चित रूप से बहुत उसके फायदे उसको मिलेंगे,
0: यस यस
1: मगर उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी होते होंगे।
0: यस
1: तो हमें दोनों बातें बताइए,
0: या
1: छोड़ने के बाद में विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं,
0: यस
1: कैसे होते
0: यस
1: हैं, और
0: यस
1: एक बार वो छोड़ दे, निश्चय कर ले, अपना निर्धार पक्का हो जाए उसका कि छोड़ना है, तो उसके क्या-क्या फायदे उसे
0: यस
1: होने वाले हैं।
0: तो पहला हम उसके फायदे के बारे में बोलेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जब तंबाकू अगर सपोज वो सिर्फ हर 1 घंटे में खाता है
1: जी।
0: या किसी बहुत बार तो वो जब नींद से सुबह में उठता है तो अब कितने समय में उसको तंबाकू की जरूरत पड़ती है, वो एक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फैक्टर है
1: अच्छा,
0: उसकी उसकी लत के बारे में हमें मालूम पड़ता है कि
1: हाँ
0: उठने के बाद कितने समय के बाद उसको तंबाकू खाने की जरूरत पड़ती है। तो जब तंबाकू उस समय पर नहीं खाया तो पहला तो उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहती है,
1: अच्छा,
0: वो बहुत ज़रूरी है
1: बहुत
0: हार्ट हेल्थ
1: जरूरी,
0: के लिए,
1: बेशक, बहुत
0: हृदय
1: जरूरी,
0: की स्वास्थ्य के लिए उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है।
1: हाँ
0: तो वो नॉर्मल रहने लगती है,
1: जी,
0: देन उसके बाद ब्लड प्रेशर, जो इसलिए अब हम जब भी एज अ डॉक्टर हम जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं
1: हाँ
0: तो हम उसको पूछते हैं अगर तंबाकू आप एडिक्ट हो तो आधे घंटे के बाद ही हम आपका बीपी चेक करेगा अगर आपने, क्योंकि हमें मालूम है वो ज़्यादा ही दिखाने वाला है। तो
1: अच्छा,
0: इसलिए तो इनडायरेक्टली जब तंबाकू का लत या एडिक्शन छोड़ते हो तो
1: हाँ,
0: बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है।
1: अरे वाह,
0: तो ये दोनों हार्ट बीट्स और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता हो तो 100 का हार्ट अटैक के रिस्क भी कम हो जाते
1: कम हो
0: हैं।
1: जाती है, जी,
0: देन मैंने बताया कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने लगती है, हमारी जो पाचन शक्ति है वो
1: वो
0: इम्प्रूव हो
1: सुधरने
0: जाती
1: लगती
0: है,
1: है। हाँ
0: हमारे हड्डियाँ हमारे मसल्स वो स्ट्रांग होने लगते हैं।
1: वाह,
0: देन आगे जाके 100 तंबाकू के जो खाने वाले जो सबसे डेंजर प्रॉब्लम है वो है हाँ कैंसर, उसकी भी
1: जी,
0: रिस्क कम हो
1: उसके
0: जाती
1: रिस्क
0: है।
1: कम हो जाते हैं। हाँ
0: देन डायबिटीज़ में हमारे पास लोग हैं जिन्हें
1: जी,
0: तंबाकू छोड़ दी है
1: हाँ
0: उनकी डायबिटीज़ की गोले भी बंद हो गई क्योंकि शुगर भी नॉर्मल होने लगी है अभी उसकी।
1: अच्छा,
0: ऐसे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट हैं
1: हाँ हाँ
0: कि
1: हाँ
0: तंबाकू की लत छोड़ने के बाद उनकी डायबिटीज़ की गोलियाँ भी बंद हो गई है।
1: क्या बात है।
0: तो ये सब उसके फ़ायदे हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसके क्या फ़ायदे हैं छोड़ने के बाद।
1: जी बिल्कुल,
0: तब यस ये ज़रूरी है कि जब तंबाकू में जो 7,000 केमिकल है उसमें से एक केमिकल का नाम है निकोटीन,
1: जी
0: और
1: जी
0: निकोटीन की वजह से हमारे ब्रेन में डोपामिन बढ़ता है और उसकी वजह से उसकी लत लगती है।
1: अच्छा,
0: तो जब तंबाकू सडनली आप छोड़ देते हो, लोग कहते हैं कि हम आज मैं अगर 5 बार खाता हूँ तो कल 4 बार खाऊंगा, तीन तीन,
1: हाँ,
0: तो ऐसा कभी नहीं होता, उसको झटके से ही छोड़ना है
1: अच्छा,
0: तो ही फायदा होगा, तो ही उसकी लत छूटेगी। तो जब झटके से छोड़ते हो तब आपको निकोटीन का विड्रोल सिम्टम 100% महसूस होएगा।
1: शरीर जो है अपनी प्रतिक्रिया देता
0: यस
1: है।
0: वो महसूस होगा ही,
1: हाँ
0: वो जो विड्रोल सिम्टम जैसे कि वो वीकनेस आ जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा, पर्टिकुलर
1: अच्छा,
0: ड्राइवर कंडक्टर को ये बहुत होता था हमारे
1: हाँ
0: पास।
1: हाँ हाँ
0: तो ये लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है कितना टाइम तक ये विड्रोल सिम्टम रहता है,
1: अच्छा,
0: वो 2 दिन से ज़्यादा 2 हफ्ते चलता है, उसके बाद अपनी बॉडी खुद को
1: नॉर्मल
0: एडजस्ट
1: है।
0: करने लगती है,
1: जी,
0: उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है,
1: तो पूरा शरीर अपने जो है सामान्य स्थिति में आ
0: वो
1: जाता
0: आ
1: है
0: जाता है, बस
1: जैसा तंबाकू खाने से पहले
0: पहले
1: था।
0: था वैसा,
1: वाह,
0: बस थोड़े दिन के लिए अपने को सहन करना है और वो समय अगर निकाल डाला तो वापस कभी तंबाकू खाता
1: देखिए,
0: नहीं
1: ये
0: है।
1: कितनी जरूरी बात है
0: यस
1: हमारे श्रोताओं को, उनमें से किसी को अगर ये लत है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो छोड़ना चाहते हैं तो तुरंत छोड़ दें,
0: झटके से छोड़ना है,
1: झटके से एक
0: बस
1: साथ,
0: बस
1: और उसके बाद
0: दो दिन से
1: तंबाकू के
0: दो
1: बारे में सोचना
0: हफ्ते
1: ही नहीं। 2 हफ्ते,
0: बस
1: ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते
0: ज्यादा से ज्यादा दो
1: ये
0: हफ्ते
1: लक्षण रहेंगे,
0: बस विड्रॉल सिम्टम ज्यादा,
1: विड्रॉल सिम्टम्स,
0: यस
1: और उसके बाद वो सामान्य स्थिति
0: सामान्य
1: में
0: हो
1: आ जाएगा।
0: जाएगा,
1: क्या
0: अपनी
1: बात
0: बॉडी
1: है,
0: अपने आप को रिकवर करती है।
1: वाह वाह। तो फायदे हमने जान लिए। हम तंबाकू की बातें जब होती हैं तो एक एक्ट है, एक ऐसा नियम है, कुछ वो कानून है, कॉप्टा एक्ट कुछ ऐसा कहते हैं,
0: यस
1: ये क्या होता है, क्या कॉप्टा एक्ट क्या है?
0: सी जैसे तंबाकू की वजह से हमारे पास जैसे सबसे ज़्यादा मौतें होती है, खर्चा होता है,
1: जी,
0: 100 रुपये के टैक्स के सामने 816 रुपये का हमें खर्चा हो रहा है। तो ये उसको और कम करने के लिए कुछ कानून बनाया है, उसको
1: अच्छा
0: कोटपा एक्ट बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट,
1: अच्छा कंजम्पशन ऑफ
0: ऑफ
1: टोबैको
0: टोबैको
1: प्रोडक्ट
0: प्रोडक्ट
1: एक्ट,
0: एक्ट,
1: कॉटपा एक्ट।
0: कोटपा एक्ट,
1: अच्छा,
0: उसके अंतर्गत आपको पब्लिक प्लेस में तंबाकू का कोई भी प्रकार का सेवन प्रतिबंध है, इज अ
1: प्रतिबंधित है।
0: पनिशेबल ऑफेंस,
1: जी,
0: देन वो खाके पब्लिक प्लेस में थूकना भी इज अ पनिशेबल ऑफेंस, देन उसके एडवर्टाइजमेंट
1: जी,
0: जो होती है वो
1: हाँ
0: भी अलाउड नहीं है आपको कोई भी प्रकार के। सो

0: भी एक एक्ट इसलिए लाया है कि लोग एक दूसरे को देख के जो खाते हैं वो ना खाए
1: जी जी
0: और उसकी लत और उसको कम करते जाए हम लोग।
1: जी
0: उसका फायदा हुआ है, कम हुई है,
1: हाँ
0: जो लोग खाने वाले परसेंटेज कम हुआ है,
1: जी
0: लेकिन जो उसे और हमें आगे लेके जाना है उसको एक्ट को, और अभी कुछ सरकार ने उसको कड़क किया है कि उसके अंतर्गत वो सरोगेसी ऐड बोलते हैं उसको
1: अच्छा
0: भी बैन किया है कि
1: हाँ
0: कुछ नाम सेम रखते हैं लेकिन कुछ अलग प्रोडक्ट रहता है। एक्स
1: हाँ
0: तंबाकू का जो प्रोडक्ट था पहले
1: जी
0: उसको
1: जी
0: खाली नाम सेम रखते और प्रोडक्ट कुछ अलग रहते
1: होता
0: हैं,
1: तंबाकू ही है मगर उसको कुछ एक
0: वो
1: नया
0: अलग,
1: नाम और नया रूप दे देते हैं।
0: या तो फिर उसका प्रोडक्ट अलग कर देते हैं
1: अच्छा
0: कि
1: अच्छा
0: तब जो पहले वो नाम तंबाकू
1: हाँ
0: के वजह से के लिए यूज होता था, अभी वो
1: हाँ
0: तंबाकू की वजह से नहीं होते, कुछ अलग प्रोडक्ट जो नॉर्मली लोग
1: अच्छा अच्छा
0: खाते
1: अच्छा
0: पीते उसके लिए, तो सरोगो
1: हाँ
0: ऐड बोलते हैं उसको भी बैन किया है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये इसका उद्देश्य यही है कि तंबाकू का कंजम्पशन कम हो जाए, उसके वजह से जो बीमारियां है कम हो जाए और खर्चे भी
1: जी
0: कम हो जाए।
1: तंबाकू तो नहीं मगर तंबाकू जैसे और तंबाकू इस्तेमाल करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इसी की अभी बात कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि लोग सीधे सीधे तंबाकू तो नहीं खाते मगर ऐसे प्रोडक्ट ज़रूर इस्तेमाल
0: इनडायरेक्ट
1: करते हैं इनडायरेक्टली जिससे
0: वे
1: तंबाकू उनके शरीर में
0: यस
1: जाता है।
0: यस, जैसे अभी बहुत कुछ आ गया है, वो इनहेलेशन आ गया है,
1: हाँ
0: वो भले सिगरेट नहीं पीते लेकिन कुछ इनहेलेशन
1: ई
0: तरीका है,
1: सिगरेट कर
0: ई
1: ई
0: सिगरेट आ
1: सिगरेट
0: गई
1: पी
0: है,
1: हाँ
0: उसको भी अलाउ नहीं है, वो भी हानिकारक है,
1: जी जी जी
0: उसमें हानिकारक है वो
1: हाँ
0: भी,
1: हाँ तो ये जो तंबाकू ना खाके अगर ये ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उन्हें
0: उसे
1: भी उतना ही धोखा है
0: यस यस
1: उतना ही
0: यस
1: रिस्क
0: यस
1: है।
0: यस
1: जो व्यक्ति तंबाकू नहीं खाता वो गलती से उसके शरीर में तंबाकू चला जाए तो पहला रिएक्शन बॉडी का तो ये होता है कि जैसे कभी पान खाते हुए पान में किसी ने हल्का सा
0: हाँ,
1: तंबाकू डाल
0: तो
1: दिया और वो हमने खा लिया
0: दिक्कत
1: तो
0: होती,
1: तुरंत उल्टियां होने लगती
0: यस यस यस। और बहुत बार तो जैसे
1: हैं,
0: कि
1: और लेकिन जिनको लत लगती है उनको पहली बार ऐसा नहीं होता।
0: उनको नहीं होता, ये जो आपने बताया
1: हाँ
0: वो सबसे
1: हाँ
0: ज्यादा अफेक्ट करता है, पेसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको, कि
1: हाँ
0: अगर हस्बैंड स्मोक करता है,
1: जी जी
0: उसके वाइफ है या उसके बच्चे है, तो
1: हाँ
0: उसमें भी वो धुआं जाता है ना,
1: बिल्कुल
0: वो
1: हाँ
0: धुआं जाता है, देन या घर में कोई तंबाकू खाता है तो
1: हाँ
0: उसको देख के बच्चे भी उसके खाने लगते हैं,
1: अच्छा
0: तो ये बहुत जरूरी है। तो पेसिव स्मोकिंग के वजह से इट हैज बीन एस्टेब्लिश कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, जैसे
1: जी
0: कोई एक फैमिली में एक हस्बैंड स्मोक करता है
1: जी
0: और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उसके वो धुआं उसको जाए तो उसके बच्चे को भी खतरा है,
1: जी
0: जो अभी तक दुनिया में आए नहीं है उसको भी खतरा है,
1: उस पर
0: तो
1: भी असर हो रहा है
0: बहुत खतरा है उसके लिए, सबसे ज्यादा खतरा है उसको, तो
1: जी।
0: द पेसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको।
1: हाँ
0: ये सब चीज़ें लोगों को आई डोंट नो मालूम है या उसको इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते, आई
1: हाँ
0: डोंट नो, बट लोगों को मालूम होना ज़रूरी है ये बातें।
1: अच्छा हमने सुना है कि कुछ दवाइयों के तरीके में कुछ तरह के मेडिसिंस है उसमें तंबाकू का इस्तेमाल भी होता है।
0: नहीं, आई डोंट थिंक सो,
1: अच्छा
0: आई डोंट थिंक सो, आई
1: या कुछ
0: डोंट
1: लोगों ने कहा कि हमें तो फलां डॉक्टर साहब ने कहा है कि पान में थोड़ा तंबाकू खा लिया करो ताकि आपका पेट अच्छा रहे
0: नहीं,
1: आपकी
0: ये
1: पाचन
0: सब,
1: संस्था।
0: ये सब मिथ्स है, मिथ्स है, ये
1: अच्छा
0: मिथ्स है सर।
1: ऐसा कुछ भी
0: सी
1: नहीं
0: तंबाकू इतनी क्वांटिटी इज नॉट, इज हार्मफुल फॉर द बॉडी,
1: बस
0: बस
1: वो
0: उसको छोड़ना ही है ना, उसको नज़दीक जाना ही नहीं उसके, बस
1: हाँ
0: बस।
1: हाँ
0: जैसे मैं शुरुआत में बताया,
1: जी
0: छोटा जीव है तो जल्दी मरेगा, बड़ा है तो बाद में मरेगा
1: हाँ मरेगा जरूर।
0: मरेगा जरूर,
1: ओह तो इस कठोर
0: उससे
1: सत्य
0: दूर
1: को इस कटु सत्य को जो है हमें
0: कुछ
1: जान लेना
0: जाओ
1: चाहिए
0: ना,
1: और
0: एक्सेप्ट करना है हमें,
1: एक्सेप्ट करना है।
0: बड़ा
1: कोई जादुई मिक्स आपने बनाया है
0: यस, उसको हमने
1: ये कैसे हुआ कब
0: यस
1: हुआ
0: या
1: और इसका क्या आपको परिणाम कैसा देखने को मिला?
0: उसको हमने नाम दिया मैजिक मिक्स या
1: अच्छा
0: मैजिक
1: मैजिक
0: चूरन,
1: मिक्स जादुई चूर्ण
0: जादुई चूरन।
1: वाह
0: जैसे अभी तंबाकू की जो एडिक्ट लोगों में दो प्रकार की एडिक्शन है, एक है साइकोलॉजिकल एडिक्शन जो 90% लोगों में, 10% लोग में ही फिजिकल डिपेंडेंसी है,
1: अच्छा
0: तो 90% लोग बस उसको वो कलर का चूरन मांगता है और उसको हाथों में घसना है और खाना है, और उसका जो कैनिस्टर है या डब्बी बोले जो महाराष्ट्र में मिलते हैं, तो
1: हाँ
0: वो उसको दिख गई तो उसको लगता है मैंने तंबाकू खा लिया। तो
1: अच्छा
0: हमने वो बेस को ध्यान में रखते
1: हाँ
0: हमने चूर्ण बनाया है जिसमें दालचीनी, अजवाइन, जीरा, बड़ी शोभ
1: वाह
0: और लवंग का इस्तेमाल किया है। जब उसको आप ग्राइंड करोगे
1: हाँ
0: तो हूबहू तंबाकू सरीका ही लगेगा,
1: अच्छा
0: और जो चूने की जगह पे हमने राइस पाउडर यूज करते हैं उसमें,
1: अच्छा
0: तो जब आप उसको हाथ में लेके घिसोगे तो फील सेम ही आएगा कि आप
1: हाँ हाँ
0: तंबाकू को घिस रहे
1: जो
0: हो,
1: लोग तंबाकू मल के खाते
0: हाँ,
1: हैं
0: तो उसको कलर भी वैसा ही है उसका
1: हाँ
0: ना।
1: हाँ
0: उसमें साइंस ऐसा है कि
1: जी
0: जो दालचीनी है
1: हाँ
0: इसकी प्रॉपर्टी है कि जो निकोटीन के विड्रोल को और कम करती है,
1: अरे वाह
0: तो साइंस भी है उसके पीछे,
1: क्या बात है
0: तो इसके वजह से हमने चूर्ण बनाया, उसका नाम रखा है मैजिक मिक्स,
1: मैजिक मिक्स
0: मैजिक मिक्स।
1: वाह वाह वाह
0: और वो मैजिक ने सच में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैजिक किया है, और वो
1: हाँ
0: खा के बहुत सारे लोगों ने तंबाकू छोड़ दिया है,
1: वाह वाह
0: तो मैं लोगों को बोलूंगा कि उसकी लिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब में,
1: अच्छा
0: मैजिक मिक्स मेरा नाम डाल के।

0: आपको मिल जाए कैसे बनाना है।
1: हाँ
0: हमने उसको कॉपीराइट किया है, आप कोई भी घर पे बना सकता है
1: अच्छा,
0: और उसको यूज करे और अपनी जब भी तलब लगे
1: हाँ
0: तम्बाकू की जगह उसको खाए।
1: मतलब ये मैजिक मिक्स कोई कमर्शियल प्रोडक्ट
0: नो,
1: नहीं
0: इट
1: है,
0: इज नॉट कमर्शियल प्रोडक्ट,
1: ये सबके लिए है, सबके फायदे के
0: सबके
1: लिए
0: फायदे
1: है।
0: के लिए। हमने उस खाली कॉपीराइट किया है कि उसको कमर्शियल यूज कोई ना करे उसको।
1: अच्छा हाँ,
0: आपके लिए ये, आप खाओ, खुद बनाओ,
1: सबके लिए ये मुफ्त है, फ्री है।
0: खुद बनाइए घर पर, खाइए
1: तो ये
0: उसको,
1: फॉर्मूला जो है वो यूट्यूब पे देख करके
0: ये
1: बनाया जा
0: बनाए।
1: सकता है।
0: और मेन बात उसको खा के थूकना भी नहीं है।
1: हाँ
0: तो स्वच्छ भारत अभियान को भी हम प्रमोट कर रहे हैं उससे।
1: क्या बात है, वाह वाह,
0: उसके खाने के बाद वो निगलना ही है, क्योंकि वो
1: हाँ
0: निगलने के बाद बहुत सारे बेनिफिट देता है
1: बिल्कुल
0: सब।
1: बिल्कुल,
0: ये अपने गर्म मसाले फायदेकारक ही हमने बॉडी को।
1: हमारे सुनने वालों के बेनिफिट के लिए
0: यस
1: हम इस मैजिक मिक्स का जो फॉर्मूला है उसे एक बार दोहराते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आपने डाली हैं?
0: हाँ। दालचीनी,
1: दालचीनी,
0: अजवाइन,
1: अजवाइन,
0: जीरा,
1: जीरा,
0: बड़ी सौंफ, सौंफ
1: सौंफ,
0: सौंफ
1: सौंफ, हाँ,
0: और एक आध
1: लौंग।
0: लौंग,
1: अच्छा
0: उसको मिक्स करके,
1: लौंग तो एक ही ले
0: एक
1: रहे हैं,
0: ही
1: मगर
0: लेना,
1: बाकी जितनी
0: बाकी
1: चीज़ें
0: इक्वल
1: हैं
0: क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी,
1: इक्वल क्वांटिटी।
0: इक्वल वन,
1: अच्छा
0: उसको ग्राइंड करना है मिक्सचर में। मिक्सचर होगा वो हबू तम्बाकू सरीका लगेगा,
1: अच्छा
0: लेकिन उसमें तम्बाकू नहीं है।
1: हाँ हाँ
0: चूने की जगह पे
1: हाँ
0: राइस पाउडर यूज करने का, वो भी
1: चावल
0: घर
1: का
0: चावल
1: आटा,
0: चावल का आटा।
1: अच्छा,
0: तो ये आप करके उसको सेम
1: तो
0: कनिस्टर में
1: जिसे
0: यूज
1: तंबाकू
0: करें,
1: मलने की आदत है
0: वैसे
1: वो
0: ही
1: उसे
0: मल
1: हाथ
0: के
1: में लेके मल के जो है अपना
0: खाओ।
1: पूरा एक्शन कंप्लीट
0: पूरा
1: करे,
0: एक्शन
1: और उसके
0: कम्प्लीट,
1: बाद चाहे तो उसको होठों में दबा ले थोड़ी देर के लिए,
0: गया दबा लो
1: उसका जो जूस निकलेगा
0: वो
1: वो
0: घाल
1: आपके
0: पिए,
1: शरीर के लिए फायदेमंद है।
0: फायदेकारक
1: वाह
0: है,
1: वाह
0: उसको
1: वाह,
0: थूकना भी नहीं
1: क्या बात
0: है।
1: है। बहुत ही जादुई बात है ये तंबाकू के बारे में, इस लत को छोड़ने के लिए जो है कारगर सिद्ध होगी। तो डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम के आखिर में कुछ तंबाकू छोड़ने के बारे में कुछ पते की बात हो जाए, आप क्या बताना चाहेंगे इस मौके पे?
0: मैं भारत के वासियों को बताना चाहता हूँ कि तंबाकू कभी भी हमें फ़ायदा नहीं करता है, उससे सिर्फ नुकसान नुकसान नुकसान ही होता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक भी नुकसान होता है,
1: जी जी
0: वो
1: जी
0: लोगों को मालूम नहीं है। ऐसा सर्वे हुआ है कि अगर आपने तंबाकू की लत छोड़ दी तो
1: जी
0: आपका जो एक इंडिविजुअल घर की जो आर्थिक परिस्थिति 10% इम्प्रूव हो जाती है।
1: क्या बात है। मुझे एक और बात याद आई कि
0: जी
1: मेरे कॉलेज के दिनों में मेरा एक दोस्त था, और
0: हाँ
1: वो कृषि बैकग्राउंड से था,
0: हाँ
1: उसके घर वाले जो है खेती करते थे। तो वो कहता है वो तंबाकू खाया करता था बहुत नियमित रूप से, और वो कहता है मुझे सांप ने अगर काट लिया तो मुझे जहर नहीं चढ़ेगा।
0: हाँ
1: तो ये कितना बड़ा मिथ है आप जरा
0: मिथ,
1: बताइए,
0: मिथ वो गलत, मिथ्स ही है, सब सब मिथ्स ही है,
1: बहुत
0: सब
1: बड़ी
0: बहुत
1: गलतफहमी है।
0: गलतफहमी है। ये तंबाकू छोड़ना बहुत जरूरी है,
1: जी
0: वो सिर्फ वो इंडिविजुअल को नहीं खाता है, पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है वो। जैसे हमने देखे है, आप किसी को अगर अगर देखना है तो टाटा हॉस्पिटल में जाके एक बार चक्कर मार के आए, बस खाली
1: हाँ
0: समझ जाएंगे ये तंबाकू से क्या गड़बड़ होती है।
1: जी,
0: लोगों को जिंदा है लेकिन मुंह में खाना नहीं खा सकते, नाक में नलीड से खाना खाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने फैमिली को, अपने देश को स्ट्रांग करने के लिए,
1: जी
0: उसको मजबूत करने के लिए, शारीरिक और मानसिक और आर्थिक मजबूत करने के लिए, हमें तंबाकू की लत को छोड़ना ही है।
1: और कोई भी फॉर्म हो तंबाकू का,
0: कुछ भी, कोई भी
1: या
0: फॉर्म,
1: तो कच्चा तंबाकू है, या वो उसकी पाउडर नसवार होती
0: नसवाली
1: है,
0: है, स्मोकिंग
1: या
0: है,
1: स्मोकिंग है,
0: कोई भी प्रकार का
1: किसी भी तरह
0: तंबाकू,
1: से,
0: बस उसको छोड़ दो, बस खत्म करो, अपनी फैमिली और अपने देश के लिए उसको छोड़ दो।
1: बहुत ही अच्छी बातें आज तंबाकू विरोध जो है इसके बारे में आपने बताई, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी,
0: थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। तंबाकू की वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोगों की मृत्यु होती है। तंबाकू की वजह से मनुष्य, उसकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ जाती है, और उसके वजह से उनकी फैमिली बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। तो मैं आज तंबाकू विरुद्ध दिवस के निमित्त श्रोताओं को अपील करूँगा कि तंबाकू की व्यसन को पूरी तरह छोड़ दे, और झटके से छोड़ दे, और अपने फैमिली को और हमारे देश को मजबूत बनाए। धन्यवाद।
2: देखा।

विश्व तंबाकू दिवस पर अभी आप सुन रहे थे VEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत। आज का मैटिनी शो बस यहीं तक, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

विश्व तंबाकू दिवस पर अभी आप सुन रहे थे VEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत। आज का मैटिनी शो बस यहीं तक, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा

0: दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस पहुंची अहमदाबाद में खेला जाएगा मैच। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेता परेश रावल का जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं हम उन्हें और उनकी फिल्मों के गाने आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। भागम भाग इस फिल्म का गाना रेमो फर्नांडिस और सुजीन की आवाज़ों में, समीर के बोल संगीत प्रीतम का।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आंखें फिल्म का गाना, नितिन रायकवार आदेश और अरुण बख्शी की आवाज़ों में, नितिन रायकवार के बोल, संगीत है जतिन ललित का।

अगला गीत सुनते हैं कार्यक्रम का, ओ माई गॉड, इस फिल्म का गाना है, कैलाश खेर, मीत ब्रदर्स और अनजान की आवाजें, कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये है राजा फिल्म का गाना, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये हंगामा फिल्म का गाना शान और साधना सरगम की आवाजों में। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का।

सुना रे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना गोलमाल, इस फिल्म का गाना शेखर और स्नेहा पंत की आवाजों में, विशाल दादलानी और कुमार का लिखा हुआ गाना, संगीत है विशाल शेखर का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अतिथि तुम कब जाओगे। इस फिल्म का गाना अनुपम आमोद की आवाज़, इरशाद कामिल के बोल, संगीत है प्रीतम का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफ़र कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ मंजू द्विवेदी। दोस्तों, आज जो इबारत या जो टेक्स्ट हमने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है, तो उसको आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं कि एक हसीन शाम को मन किया कि ठंडे ठंडे पानी से नहा लूँ, ये सोचते हुए कि ऐ दिल तू किस पे आ गया है। मन में उथल पुथल थी कि पीते पीते कभी कभी यूँ अंडे का फंडा भी समझ लेना चाहिए, इसलिए मैंने कहा सूरज जरा आ पासा। तो उसने कहा आला बर्फ़ी वाला। मैंने कहा जब तक समोसे में आलू रहेगा, इश्के दी चाशनी का बोलबाला रहेगा। इसके बाद मन सोचने लगा हाय रे वो दिन क्यों ना आए। ये आज की इबारत है। एक हमारे साथी लिखते हैं कि इबारत हो या शरारत हो, हमारी ये इनायत है, चलेंगे साथ सफ़र में चाहे कहीं कयामत हो। एक साथी लिख रहे हैं कि शाम तो नहीं, हमारा तो दिन सुबह से ही हसीन बन पड़ा है। सुबह से मौसम अटकेलियां कर रहा है, कभी धूप कभी छांव, कभी तेज़ हवा हल्की सी बूंदाबांदी। इस मौसम का क्या वर्णन करूं, मन सुबह से झूम उठा, ये मौसम का जादू है मितवा, अब दिल पर काबू है मितवा। दोस्तों, आज जो इबारत हमने पोस्ट की उसमें कुछ जो गाने हैं वो खाने पीने की चीज़ों को लेकर है। आपको बता दें कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम एक सब्ज़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे स्नैक्स या बनाने में या फिर जो छोटा मोटा नाश्ता शाम के समय का होता है उसमें आलू का बहुत महत्व होता है। हम सभी को पसंद होता है, चाहे वो समोसा हो, आलू बड़ा हो, या फिर एक कोई सैंडविच हो जिसमें आलू डाला जाता हो, इस तरह के बहुत सारे नाश्ते बनाए जाते हैं आलू से। तो आलू हमारे जीवन में या हमारे रसोई घर में क्या महत्व रखता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, या इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हमें मिल सके, इस बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे जब शाम के नाश्ते

की बात होती है तो सबसे पहले हमारा मन करता है कि आलू के पकोड़े खा लिया जाए या आलू से बनी हो ऐसे ही किसी नाश्ते की हमें याद आ जाती है। वैसे सबका सबकी पसंद जो है वो अपनी अपनी अलग होती है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर हम थोड़ी आलू की बातें करेंगे और इसके अलावा कुछ और भी गीत हम सुनेंगे। सबसे पहले जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो है दुल्हन एक रात की, इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, राजा मेहंदी अली खां के बोल हैं। संगीत किसका है ये आप हमें बताइए। धर्मेंद्र और नूतन पर फिल्माया गया ये गाना है।

उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। जी हाँ, शाम का वक्त हो और अगर आपको पता चले कि आपकी पसंद का आलू का बना हुआ कोई बहुत ही मज़ेदार नाश्ता आपके सामने आया है तो आप भी यही कहेंगे ना कि उनको देखा तो दिल उस पर आ गया है। मदन मोहन का इसमें संगीत है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों का राजा है और वो हर किसी के साथ मिलकर बनाया जा सकता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बेफिक्र और रूमानी शाम की याद दिलाती है आज की इबारत। इसे पढ़कर मन में एक चुलबुली और हास्य से भरी तस्वीर उभर रही है जिसमें खुद से बातें करते करते अचानक से शायरी और फिर खाने पीने की चीज़ों जैसे कि ठंडे पानी, समोसे, बर्फ़ी पर आ जाते हैं। ये बोलचाल की भाषा का एक बहुत ही प्यारा और अनूठा मिश्रण है जो कह रहा है कि जीवन की उलझनों को भी हंसी मजाक के चाशनी में डुबोकर आसान बनाया जा सकता है। जिंदगी में चाहे जितनी समस्याएं हो, हंसी मजाक का स्वाद कभी कम नहीं होना चाहिए।

0: अंत में गुजरे हुए उन सुनहरे दिनों की याद इस पूरी इबारत को एक बहुत ही भावुक और प्यारा सा मोड़ दे देती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हर रोज़ हसीन शाम को इतने लू वाली गर्मी है, शाम को ऑफिस से आने के बाद ठंडे ठंडे पानी से दोबारा शावर में नहाना ही पड़ता है, उसके बाद ही आगे की दिनचर्या शुरू हो पाती है और हम थोड़े से रिलैक्स हो पाते हैं। तो चलिए आपके दिल दिमाग को हम थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और ठंडे पानी से नहाने का इसमें जो मज़ा है वो तो और भी है ही। पति पत्नी और वो इस फिल्म का गाना, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, रविंद्र जैन का संगीत।
1: ओ, ठंडे ठंडे

कह दो के आ रहे हैं साहब नहा रहे हैं।

आलू से बना हुआ कोई स्वादिष्ट नाश्ता जब आपके घर में बन रहा हो तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, और जब वो सुगंध फैलती है तो ऐसा भी कभी होता होगा ना कि आसपास में आपके कोई पड़ोसी, आपके कोई नाते रिश्तेदार, आपके कोई दोस्त आपका दरवाज़ा खटखटाते होंगे और पूछते होंगे, भाई आज क्या बन रहा है। एक साथी लिख रहे हैं, आलू वो सादगी है जो हर स्वाद में रंग भर देता है, इसलिए हर घर की रसोई में उसकी खास जगह होती है। हर सब्जी उसका साथ पाकर और भी स्वादिष्ट हो जाती है। आलू सच में रसोई का राजा है। आलू न दिखावे में

है न नाम में, लेकिन काम में सबसे बड़ा है। यही उसकी असली पहचान है, जो हर मौसम, हर सब्जी और हर थाली में फिट हो जाए, वही असली राजा कहलाता है। आलू, आलू की कहानी सादगी की जीत है, कम में भी सबसे ज्यादा स्वाद देने की कला है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज मैं आलू की टिक्की बना रही हूँ। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे बटाटा वड़ा और फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। और एक हमारे साथी जो है उन्होंने हमें अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की शुभकामनाएं दी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की खोज दक्षिण अमेरिका में हुई थी और आलू की कहानी वहीं से शुरू हुई थी। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बात चल रही है तो आलू के पराठे, समोसे, पकौड़े से लेकर चिप्स, पापड़ तक सभी का स्वाद निराला है। सुबह सुबह आलू के पराठे मिल जाए, दोपहर में आलू की सब्जी और पूरी मिल जाए और शाम को समोसे मिल जाए तो कहना ही क्या। ये सिर्फ आलू ही नहीं, ये हमें सिखाता है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे आलू हर सब्जी में मिलकर इसका स्वाद बढ़ा देता है, वैसे ही हमें जीवन में होना चाहिए, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए ताकि हमारा महत्व हमेशा बना रहे। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के बिना भारतीय रसोई अधूरी है। यद्यपि आज आलू भारतीय रसोई का एक अभिन्न अंग बन गया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारतीय मूल की सामग्री नहीं है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू महज एक सब्जी नहीं, ये एक एहसास है। ये वो निश्चल साथी है जो हर दूसरी सब्जी के साथ अपनी पहचान मिटाकर घुल मिल जाता है। कभी वह गोभी के साथ जुगलबंदी करता है तो कभी मटर के साथ मिलकर एक नया स्वाद रचता है। वह किसी राजा के थाल का हिस्सा भी है और एक गरीब की झोपड़ी में तसल्ली का निवाला भी है। और एक साथी लिख रही है कि मुझे तो पता ही नहीं आज आलू दिवस है, आज अजीब संयोग बना है, आज हमारी श्रीमती जी ने आलू के पराठे बनाए हैं, दही के साथ सेवन कर रहे हैं हम। बहुत धन्यवाद आपका। एक साथी लिख रहे हैं कि बेहद खूबसूरत गीत के साथ शुरुआत की है। वैसे आलू दिवस पर हमारे यहाँ आलू पालक टमाटर की सब्जी बनी है, मुझे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी रेसिपी पर सबसे ज़्यादा आता है, कौन सी रेसिपी है जब आप ये कहते हैं कि ये दिल मुझे बता दे कि क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। भाई भाई फिल्म का गाना, गीता दत्त की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत, अशोक कुमार और श्यामा पर फिल्माया गया गाना।

तो बताया क्या आपने कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी चीज़ पर आ गया है? बहुत सारे श्रोताओं ने इतनी सारी बातें लिखी है, लिखते हैं कि लाल टमाटर हरे मटर में मंडी चलने की ठानी, आलू भी तैयार हो गया, साथ चली गोभी रानी। मुझे आलू इसलिए पसंद है कि वो सभी के साथ बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए सबको आलू भाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज भी लंच में दही वाले आलू बनाए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि उदयपुर ज़िले में फतेह स्कूल के पास में एक जगह है जहाँ के आलू बड़े बहुत फेमस है, मैं कल परीक्षा देने जा रहा हूँ, ज़रूर वहाँ के स्वादिष्ट आलू बड़ों का आनंद लूँगा। और एक साथी लिख रहे हैं कि इबारत कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आपने, आज आलू दिवस पर गीतों का मज़ा मिलेगा। और लिखा है कि आलू दुनिया के हर कोने में मिलते हैं, आलू बिना कोई रसोई बन नहीं सकती, ये सभी सब्जियों में मिक्स हो जाता है, चिप्स और पराठा तो आलू के ही स्वादिष्ट होते हैं, खिचड़ी और तहरी में मिलाकर उसका टेस्ट भी बदल दिया जाता है जो सबको पसंद आता है, अब तो मिठाइयों में भी आलू का प्रयोग होने लगा है, समोसा तो बिना आलू के बन ही नहीं सकता, आलू की पकौड़ी तो चटनी के साथ गर्मा गर्म खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, आलू पौधे का भूमिगत तना होता है, जड़ नहीं होता है। एक साथी ये लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों के राजा है, पर मैं तो कहूँगी रसोई की रानी है, एक माँ जानती है कि बच्चों को कैसे सब्जी खिलाना पड़ती है, आलू के साथ कुछ मिला दो तो खा लेते हैं, और हमारा जो बिहारी खाना है वो तो बिना आलू के पूरा ही नहीं बनता है, दाल भात चोखा लिट्टी चोखा, और अगर आलू नहीं है तो ये व्यंजन अधूरा है, संक्रांति में दही चूड़ा, उसके साथ आलू दम, सफ़र में जाना है पूरी के साथ आलू की भुजिया, बरसात के दिनों के लिए आलू का सूखोता, अतिथियों के लिए आलू के चिप्स, सर्दियों में आलू के अचार, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आलू सब सब्जियों के साथ घुल मिल जाता है, और अपने यहाँ आलू का रायता बहुत किया जाता है जो दही के साथ बनाया जाता है। और एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि अगर ठंडे ठंडे पानी से ही नहाना था तो सूरज को और पास क्यों बुलाना था। बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर इस गाने में अगर आप गौर करेंगे तो एक लाइन आती है कि आलू टमाटर का साग, जी हाँ, जब बहुत भूख लगी हो तो आलू टमाटर का जो साग होता है ना, वो हमारे मन को कितना ललचाता है, ये इसमें दिखाया गया है, इसीलिए हमने इस गाने को चुना है, तो सुनिएगा आप ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू साधारण सा दिखता है लेकिन हर रसोई की जान है, हर मसाले और हर सब्जी के साथ मिलकर स्वाद दो गुना कर देता है, इसलिए उसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। जिस थाली में आलू हो वो थाली अधूरी नहीं लगती, वो हर स्वाद को पूरा करने की ताकत रखता है। आलू की खासियत यही है कि वो खुद में सादा होकर भी हर व्यंजन को खास बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हम और बैराग फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। ऐसा कभी होता होगा ना कि आपने फरमाइश की

है कि मुझे आलू से बना हुआ समोसा खाना है, लेकिन बन कुछ और जाता है, आलू के पकोड़े बन जाते हैं या आलू की टिकिया बन जाती है, तो आपके दिल में यही आता होगा ना कि अरे मैंने तो ये बनाने के लिए कहा था पर आज तो ये बन गया है, कुछ अलग ही हो गया है। चलिए ऐसा ही कुछ गाना है, सुनते हैं बैराग फिल्म से।

रेसिपी कौन सी बनने वाली होती है और क्या बन जाती है। हम कोशिश करते हैं एक नई चीज़ कुछ बनाने की और कुछ और बनाने का सोचते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाता, कुछ और ही बन जाता है। हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा स्वादिष्ट, और कभी कभी वो स्वाद जिसकी हम उम्मीद रखते हैं वो कभी नहीं आता है, तो भी मन बड़ा खिन्न हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू को ध्यान से खाओ, क्योंकि आलू बाहर से ठंडा होता है लेकिन अंदर से गर्म होता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू ज़्यादा खाओगे तो आलू जैसे हो जाओगे, और लौकी खाओगे तो लौकी जैसे बनोगे। एक साथी लिख रहे हैं कि आज सचमुच संयोग है, मैंने आज आलू के पराठे ही बनाए, पति देव को बहुत पसंद है, मक्खन और अचार के साथ। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की लौंज एक प्रकार की मिठाई है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सर्दियों में नए आलू को मिट्टी के हांडी में जिसमें आग तपती है उसमें रख देते हैं, उस पके आलू खाने का अलग ही आनंद और स्वाद है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आप सभी को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई इसके भी दिन बहुरे हैं और वो भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के भल्ले भी बड़े स्वादिष्ट होते हैं, दही भल्ले की तरह ही। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू और दाल की बड़ी की चटपटी भाजी बहुत पसंद है, और तो और मैंने आपका कार्यक्रम सुनकर श्रीमती जी से वही भाजी का आग्रह किया, और उन्होंने भोजन बन जाने के बाद भी मेरी फरमाइश के अनुरूप मुझे भाजी बनाकर वो दे रही है। एक साथी लिख रहे हैं कि किसी पड़ोसी ने तो दरवाजा नहीं खटखटाया, पर हाँ कई बार हमारी बेटी और उसकी सहेलियों ने जरूर कहा कि बाहर से अंदर आते ही कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आलू बेसन की, क्योंकि हम जब सैंडविच के लिए मसाला तैयार करते हैं तो उसमें अहम भूमिका तो आलू की होती है, पर उस पर और भी कई चीजें डाली जाती है, सबसे तेल, फिर उसमें थोड़ा जीरा, सौंफ और खड़ा धनिया, और फिर थोड़ा सा बेसन डालकर भुनना, फिर अमचूर या नींबू डालकर उसमें उबले आलू को डालना, और फिर कहीं जाकर इस मसाले को ब्रेड में डालकर सेकना, तब जाकर सबको खिलाना, और फिर उसके बाद सबकी तारीफ पाना। एक साथी लिख रहे हैं कि बंगाल का आलू, बिहार और मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें आलू से बनाई जाती है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल थोड़ा मौसम का मिजाज ठंडा है, बारिश हो जाने से प्याज की पकौड़ी, समोसे और कुछ गर्म नाश्ता खाने का मन करता है, मौसम के साथ जुबान का मिजाज भी बदल जाता है तो अच्छा खाने का मन करता है, चाहे जितनी भी गर्मी हो, पर बाजारों में चाट के ठेलों पर खूब भीड़ होती है, आलू की टिक्की समोसे बहुत खाए जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आलू का जो आकार होता है गोल गोल होता है, लेकिन एक लंबे आकार की भी चीज़ होती है, और उसके बारे में भी बहुत सारी बातें इस गाने में कही गई है, तो उसे भी हम सुन लेते हैं। जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का गाना है, प्रतीक जोसेफ की आवाज़ है, इन्हीं का लिखा हुआ गाना है, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत हिमेश रेशमिया का, और बड़े दिलचस्प अंदाज में इन्होंने जो है जीवन का फलसफा वो सिखाने की कोशिश की गई है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू की टिक्की के साथ चटपटी इमली की चटनी ऊपर दही से डाल दे फिर खाने में स्वाद आ जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि व्रत में तो आलू बहुत इस्तेमाल किया जाता है, उबला आलू और दही का रायता फ्राई में फिंगर चिप्स, हर हाल में आलू बहुत अच्छा लगता है, समोसे तो आलू के बगैर बन ही नहीं सकते। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि आज ही मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि आलू टमाटर की रसीली सब्जी बनाना, कहते हैं कि डायबिटीज वालों को लाल आलू खाना चाहिए और उबले हुए आलू को 12 घंटे फ्रिज में रखने के बाद खाना चाहिए, जिसमें से आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि कटक का आलू दम दही बड़ा जिस किसी ने खाया उसे कटक घूमने आने का मज़ा आया, विश्व प्रसिद्ध आलू दम दही बड़ा के स्वाद सभी मुसाफिर के पेट भरने के लिए ये याद किया जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो उनकी फरमाइश होती थी कि फिंगर आलू बनाने हैं, तो सच कह रहे हैं हम बनाते बनाते थक जाते पर वो सब खाते जाते थे, और तो और एक दो दोस्त भी आ जाते, वो दिन भी क्या दिन थे। आजकल तो मम्मी आलू ज़्यादा नहीं खाने चाहिए ऐसा कहती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू तो हम लोगों के यहाँ पहले भी बोया जाता था और वो अगस्त सितंबर तक सब्जी का पूरा काम करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसके कम हो गया है। ये एक साथी लिख रहे हैं कि आलू भारतीय रसोई की रीढ़ है, इससे यदि इसे सही और संतुलित तरीके से जैसे कि उबाल कर या बेक करके पकाया जाए तो ये सेहत और स्वाद दोनों के लिए बेहतरीन है। आलू भारतीय रसोई का राजा है जिसके बिना हर घर का भोजन अधूरा माना जाता है। स्वाद पोषण और उपयोगिता के मामले में भारतीय व्यंजनों में आलू का स्थान सबसे ऊपर है। आलू वाकई स्नैक्स का राजा है, ये इतना वर्सेटाइल है कि इसमें कोई भी लाजवाब डिश मिनटों में बनाई जा सकती है। तो फिलहाल अगला जो हम गीत सुनवा रहे हैं उसमें तो केवल आलू टमाटर का जो साग होता है उसे ही कितने इस तरीके से इसमें हम सुनेंगे इस गाने में कि भूख होती है तब तो वो चीज़ हमें और भी ललचाती है, लेकिन नहीं भी भूख हो तो बोलने का जो अंदाज़ है इस

के बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ, आलू टमाटर का साग खा लिया जाए। संगीत किसका है बताइए हमें।

जो सब्जी या कुछ चीज़ बना के ले, वो आलू की होती है, आलू की सब्जी और पूरियाँ, या फिर मसाले वाली पूरियाँ, या फिर आलू के पराठे, या इस तरह की चीज़ें हम बना करके ले जाते हैं। या यहाँ तक कि हम जब सफ़र में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो भी सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी आपको दिखाई पड़ेगी वो आलू की सब्ज़ी ही होगी। एक साथी लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का फरुखाबाद शहर के जो आलू होते हैं वो भारत में नंबर 1 तरह के आलू होते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने ज़माने और आज तक आलू बैंगन की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा गुजरात के घरों में खाई जाती है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि ज़्यादा खाओगे तो एसिडिटी करेगा। जी हाँ, कोई भी चीज़ हो उसे अति किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि छोटे छोटे आलू को जाड़े के दिनों में हर घर में तापने के लिए जो अलाव जलाते हैं उसमें भून कर बच्चे अक्सर कटोरी में नमक उसमें डाल करके खाते हैं। गरम गरम बड़ा टेस्टी होता है। पहले गन्ने की पेराई होती थी तो खोलते कढ़ाई में जब राब तैयार होने को होती थी तो छोटे छोटे आलू को धागे में गूंथ कर कढ़ाई में डाल देते थे। कितना मीठा और टेस्टी वो आलू के लिए जो है हम झगड़ा करते थे। अब तो गाँवों में गन्ने की पेराई बंद हो गई है तो मीठा आलू भी अब नहीं मिलता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल लाल आलू बहुत मिल रहे हैं जिनमें कम मात्रा में स्टार्च होता है और भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की भाजी, बैंगन का भरता, बोले जी बोलो तो क्या खाओगे, ये एक इस गाने के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सबसे सस्ता आलू है, जो सभी सब्जियों के भाव ज़्यादा हो जाते हैं तो केवल आलू, धनिया डालकर रसदार सब्जी, चावल और रोटी के साथ खाने का जो मज़ा है वो बड़ा आता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बातें सुनकर हमारी बेटी ने भी फरमाइश कर दी कि अभी तो खाना बन गया है तो डिनर में आज मस्त आलू की रसेदार सब्जी, जिसमें डाली हो थोड़ी सी केरी और उसके साथ हो जाए थोड़े से जीरा राइस, ऐसा इन्होंने लिखा। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की बात हो रही तो मुझे चूल्हे की आँच में सेक कर आलू बहुत पसंद आते हैं। जब कभी लंबी यात्रा पर जाता हूँ तो मम्मी हमेशा ही आलू के पराठे और आलू की चटनी ही रखती है जो सूखी रहती है और आसानी से हम ले जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आलू की बातें तो हम कर रहे हैं, उससे चटपटे व्यंजन भी, लेकिन हो सकता है कि हमारे कई साथी हो जिन्हें कुछ मीठी चीज़ें भी पसंद हो, जैसे बर्फ़ी वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी तो उन्हें पसंद आती है। या फिर आलू से भी हम आलू की बर्फ़ी भी बना सकते हैं। कई साथियों ने हमारे लिखा है कि आलू का हलवा बनाया जाता है, आलू की बर्फ़ी भी बनती है। तो चलिए एक गाना सुन लेते हैं, बर्फ़ी फिल्म का, स्वानंद किरकिरे के बोल, प्रीतम का संगीत है, आवाज़ किसकी है।

मोहित चौहान की आवाज़ में ये गाना आपने सुना। हमारे एक साथी की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम सब्जियों का राजा कह सकते हैं, एक ऐसी सब्जी जिसके सहारे हम कोई भी उत्सव मना सकते हैं, कोई भी त्यौहार की शान बढ़ा सकते हैं। सब्जियों को खाने में मुंह बिगाड़ने वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। गोभी आलू, मटर आलू, परवल आलू, कटहल आलू, टमाटर आलू, किसी भी कॉम्बिनेशन में सुपर हिट है आलू। समोसे में आलू, पराठे में आलू, पकौड़े में आलू। और एक साथी ने हमारी ये लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने आलू के महत्व को समझाने के लिए हर साल 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। इस साल की थीम है, जहां आलू उगते हैं वहां आजीविका फलती फूलती है। और ये थीम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों को सहारा देने में आलू की भूमिका को रेखांकित करती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि माँ के हाथ के बने आलू के पराठों का स्वाद अब कहाँ मिलेगा, आज आपने माँ की याद दिला दी। और एक साथी लिख रहे हैं कि भंडारे में आलू पूड़ी खाने का स्वाद तो खाने वाला ही जानता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मेरी बेटी पूना के एक घर में रहकर पढ़ रही थी, मैं कभी कभार 10-15 दिन के लिए जाती थी। उसकी सहेलियों को बहुत आलू के भरवा पराठे और दही का रायता बनाकर खिलाया था, आए दिन यही फरमाइश उनकी होती थी। चलिए धन्यवाद आपका। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, और देव कोहली के बोल हैं, अनु मलिक का इसमें संगीत है।

मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म का ये गाना हमने सुना, और सचमुच जब समोसे की बात आती है तो ज़्यादातर उसमें आलू ही डाल करके बनाया जाता है। आलू के बगैर समोसे का मज़ा हमें तो नहीं आता है, हो सकता है बहुत सारे साथी हमारी इस बात से इत्तेफाक रखते हों। एक साथी हमारे लिख रहे हैं, उन्होंने आलू बोने का सबसे अच्छा तरीका जो है उसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण लिखा है, पूरा तो हम आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो ये बात आपके काम की हो सकती है कि उन्होंने लिखा है कि सबसे अच्छा तरीका यह कि खेत में 3-4 बार गहरी जुताई करके और मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना ले, बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक जैसे कि कार्बेंडाजिम से उपचारित करें और बीज को मेड़ों पर 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में रोपे, जहां लाइन से लाइन की दूरी सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी इतने सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण इन्होंने लिखा है जो हो सकता है कि आपके काम का हो। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक ही इबारत रहती है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं। किसी को इसमें बहुत कुछ अच्छा नज़र आता है और किसी को इसमें कुछ बिल्कुल नहीं भाता है, तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि अब गिलास पानी से आधा भरा है, इसे आधा भरा कहें या आधा खाली कहें, ये हमारी सोच पर है। वैसे सबसे जो अच्छी बात यह है कि इससे हमें बहुत सारे गानों के बारे में जानकारी मिलती। चलिए अब बात ऐसी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने जीवन में वो चीज़ें खाई होती है और हमें अच्छी लगती है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब हमें कोई बीमारी हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आपको आलू नहीं खाना है या मीठा नहीं खाना है या तला हुआ नहीं खाना है, और तब हमारे दिल में एक ही बात आती है कि हाय रे वो दिन क्यों ना आए कि जब आलू की इतनी स्वादिष्ट रेसिपी बनती। चलिए अनुराधा फिल्म का गाना सुनते हैं।

और अब एक बड़ी सुंदर बात, आलू का रस चेहरे पर लगाने से ग्लो आता है, ऑलराउंडर है आलू, ये हमारी एक साथी ने बात लिखी है। और इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लोफर फिल्म के गाए आशा भोसले के गीत से, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना लोफर फिल्म का गीत शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म दो रास्ते से। आवाज़ लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में भी आपने सुना दो रास्ते फिल्म का गीत। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन का गतिरोध एक हफ्ते में दूर कर लिया गया है।
2: G7 और G13 का लोकार्पण हुआ है। वॉच टावर से लेकर, कनेक्टिंग रोड से लेकर, पीने से पानी से लेकर मेडिकल सुविधाएं, रहने की व्यवस्थाएं और नई फेंसिंग इंट्रोड्यूस करना, हर दृष्टि से एक लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हमने कार्य योजना बनाई थी और 2 साल में हमारा एक वल्नरेबल दिखता हुआ क्षेत्र दुश्मन की बुरी नजर से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने 2 दिनी जम्मू कश्मीर के दौरे के अंतिम दिन आज श्रीनगर में हैं। वे यहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और लोक भवन श्रीनगर का दौरा भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रबंधन का अध्ययन कर वे मध्य प्रदेश को धार्मिक पर्यटन का मॉडल स्टेट बनाएंगे। CM डॉक्टर यादव आज शाम को भोपाल वापस आ जाएंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। सेना प्रमुख पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। इस बार रक्षा अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी ये डिग्री प्रदान की गई है। छतरपुर में ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए जिला प्रधान न्यायाधीश रविन्द्र सिंह और कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश राजेश देवालिया आज साइकिल से अदालत पहुंचे। न्यायाधीश ने बताया कि अब प्रत्येक शनिवार सभी न्यायिक अधिकारी साइकिल से ही न्यायालय आएंगे ताकि आमजन को ईंधन बचत और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित किया जा सके। ऐसा करना दरअसल पर्यावरण के लिए अनुकूल है और हम अपने देश हित के लिए भी काम कर सकेंगे। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के आंकड़े दर्शाए गए हैं। मंत्रालय ने यह सर्वेक्षण 2023-24 में संचालित किया था। और अब बात मौसम की करते हैं। मध्य प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है। प्रदेश का आधा हिस्सा जहां भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, वहीं बाकी आधे हिस्से में तेज आंधी और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड और मंदसौर सहित प्रदेश के 9 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 8 जिलों में लू की भी चेतावनी है। हाल ही में हुई बारिश के कारण प्रदेश के ग्वालियर और दतिया जैसे शहरों के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट आई है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में स्कूल चले हम अभियान के तहत शिक्षा पुंज पॉइंट 2 नवाचार जारी है। कलेक्टर के निर्देश पर अक्षर साथी घर घर जाकर ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शाला से जोड़ रहे हैं। आगरमालवा जिले में महावारी स्वच्छता दिवस पर ग्राम खेरिया और कानड़ स्वास्थ्य केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। किशोरियों को इस दौरान स्वच्छता

0: एनीमिया से बचाव और पौष्टिक आहार की जानकारी दी गई। भोपाल जनजाति संग्रहालय में कल संभावना कार्यक्रम होगा। इसमें राजगढ़ का मालवी गायन, नर्मदापुरम का कबीर गायन और डिंडोरी का गुदुम बाजा नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा और रतलाम जिले में गुलाब चक्कर पर साहित्यिक संगम कविताई शब्दों की शान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें नए रचनाकारों ने देशभक्ति, मातृप्रेम और नारी शक्ति पर मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुति दी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
3: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
4: म्यांमा के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी

0: एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मीन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ओमी नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
2: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। AICC महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन

0: ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बुद्धि खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार 7:00 से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन 5

0: दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज, दोपहर बाद बेंगलुरु में नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आशिक फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे।

0: माने जी के संग हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अपना बना के देखो ये फिल्म का नाम है। आशा भोंसले और साथियों की आवाजें, SH बिहारी की बोल, संगीत है रवि का।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफ़ेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीज़ें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आजाद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बाजे घुंघरू फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी, सबिता बनर्जी, सीता और साथियों की आवाज़ों में, शिवराज श्रीवास्तव का लिखा हुआ गाना, धनी राम का संगीत। अगला गाना बात एक रात की, इस फिल्म का गाना हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है SD बर्मन का।
1: लगता है कुछ ऐसा

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं, बगदाद की रातें। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, संगीत है डी दिलीप का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बनारसी ठग इस फिल्म का ये गाना है। लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

कि हमें उस गाने को सुनने की फरमाइश भेजी है। तो पहला जो गीत है ये दिल फिल्म का गाना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में समीर का लिखा हुआ गाना आनंद मिलिंद का संगीत है। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है शमसुद्दीन की बाड़ी पूरा बीकानेर राजस्थान से। ये पत्र आया है हमारे पास मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अनजान, सैफ अली, कमाल खान, मरियम बानो और मोहम्मद अली। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये अपराध फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम हीवरखेड़ तहसील तेल्हारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारस पायल श्वेता और उर्वी बेन अड़िया ने।

0: जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अदवंत। आपने जिस गाने की फरमाइश की है वो है मर्यादा फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।

0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्म दिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला जो गीत है ये खानदान फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में है, राजेंद्र कृष्ण के बोल है, संगीत रवि का। ये गीत सुनना चाहते हैं रामलीला मैदान सचेंडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु मनी मीत शिवांश, अनूप सिंह और अभिजीत सिंह। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का गाना। 1999 की फिल्म है ये कच्चे धागे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ें, आनंद।

बख्शी का लिखा हुआ गाना नुसरत फ़तेह अली ख़ान का संगीत है। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने लिख भेजी है वो हैं गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, गोलू, नीलू, विशाल राज और वंश राज। आपकी पसंद का कच्चे धागे फिल्म का ये गाना।

मनचाहे गीत कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं की पसंद पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं वो हैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सुनना चाहते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना मुकेश और कंचन की आवाज़ों में, इंदिवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना।

प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस, रूपांतरकार पी जी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: हेलो
1: जी।
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है आप कौन हैं?
1: आप कौन हैं?
0: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ।
1: और मैं जेल में सड़ने आई हूँ।
0: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
1: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
0: मैं एक नाटककार हूँ। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ।
1: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
0: कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: मेरा नाम डेजी है।
0: डेजी?
1: क्या हुआ?
0: मुझे कुछ याद आ रहा है।
1: क्या?
0: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना?
1: हाँ।
0: आपने हाई कोर्ट में अपील नहीं की?
1: अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।
0: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
1: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
0: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
1: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
0: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप?
1: हाँ, मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा, बड़ किया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थे, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के 2-3 अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।

0: Oh, Dr. Ramdas. Good morning, doctor.
1: Good morning, Benny. Good morning.
2: कौवी तबीयत कैसी है?
0: बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।
1: चिंता की कोई बात नहीं, अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
0: क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर?
1: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
0: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
1: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अरे ये क्या, गिटार? गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या?
0: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूं।
1: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है।
0: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
1: अच्छा,
0: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
1: तब तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों?
3: नमस्ते डॉक्टर।
1: ओ नमस्ते,
0: कहाँ गई थी तुम?
3: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं।
0: अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
1: मेरी पत्नी जो ठहरी, उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई?
0: हम दोनों के लिए।
3: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
0: इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना।
1: अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ, फिर मिलेंगे।
0: अच्छा,
3: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं, हम ऐसे हम वैसे?
0: इसमें हर्ज क्या है, सच तो यही है ना?
3: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
0: इसमें शर्म का है कि क्या? मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है। देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
3: अच्छा जी, तब तो एक काम करें, इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें, इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: डेजी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है?
1: क्या?
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: हाँ, ख्याल है।
0: मुझे याद है, ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं?
1: हाँ शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छे हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी,
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊँ?
1: हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी।
0: ए, इधर आओ ना।
1: बेनी, ये अस्पताल है।
0: तो क्या हुआ? आओ ना।
1: बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, क्या हुआ?
0: कुछ दर्द सा हो रहा है।
1: अरे, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। तुम लेट जाओ बेनी, लेट जाओ ना तुम। अरे, तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है।
0: नहीं नहीं नहीं, फिक्र मत करो, जरा सी गिरीना से चिंता की कोई बात नहीं।
1: नहीं नहीं, नहीं मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ।
0: ठीक जी।
1: बेनी, एक बात बताओ।
0: पूछो।
1: तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं?
0: बताऊं? दोनों।
1: मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है?
0: तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में।
2: तो आप कलाकार भी हैं?
0: कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ। आप
1: डॉक्टर लॉरेंस है ना?
2: जी हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ। तुम बेनी हो ना?
0: हाँ डॉक्टर, तुम लॉरेंस हो ना?

0: नाम है लॉरेंस भाई।
1: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
0: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
1: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका
0: लॉरेंस। मैं ही तुम्हें कहां पहचान पाया बेनी।
1: कुछ भी हो, तुम यहां अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे।
0: तो क्या मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं?
1: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
0: यही कोई 14 या 15 साल।
1: और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खासतौर पर इस हालत में।
0: Exactly.
1: गजब की याददाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी।
2: नमस्ते।
0: नमस्ते, तो मैं देखते ही समझ गया था
2: आप आ गए हैं, तो लगता है जैसे।
0: सब वो बातें रहने दीजिए आप। बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
1: चेस्ट में पेन है।
0: हाँ हाँ।
1: दिल की तरफ भी पेन है।
0: वैसे
1: सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
2: ये ठीक से नहीं बताते। बस यही कह देते हैं इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
0: हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेज़ी
2: जी,
0: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा।
2: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
1: डेज़ी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेज़ी के सुपुर्द कर दिया है।
0: बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
1: हाँ, हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
0: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर, जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
1: बाय।
2: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया।
1: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
2: अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा। मैं अभी जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या?
1: अरे गिरिजा, तुम?
2: आप यहाँ?
1: हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है।
2: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
1: जरा शिष्टता से बात करो।
2: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
1: जरा आहिस्ता बोलो।
2: मुझे पहचान लिया आपने?
1: हाँ, पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
2: अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष।
1: तुम ऐसा सोचती हो?
2: सोचती नहीं, बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
1: हाँ, ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
2: हाँ, आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी। इस कदर गिर तो नहीं गई हूँ?
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
2: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती।
1: क्या?
2: आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
1: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
2: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक टेरर थे। टेरर?
1: मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है?
2: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
1: तमीज से बात करो। मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
2: अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए, लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
1: देखो, मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज आज चुप हो जाओ।
2: हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा।
1: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो।
2: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रही। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। 2 तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा होना।

0: उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती, मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे।
1: मुझे कुछ नहीं कहना है।
2: लेकिन मुझे तो कहना है। कल जहां बात रुक गई थी, मैं वहीं से शुरू करता हूं।
1: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
2: तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझा कर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो ये मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
1: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं?
2: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
1: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
2: हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया। बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
1: अच्छा।
2: हाँ अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
1: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
2: कितने रुपए खर्च हुए?
1: करीब 600। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
2: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो तो अब भी पता लगा सकते हो। डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
1: क्या?
2: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों ही कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
1: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
2: माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरिजा। मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है।
0: गिरिजा चली गई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया, कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात?
3: वो बेनी कहाँ है?
0: चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
3: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
0: कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर।
3: डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल्व में गड़बड़ है। वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा इसी हफ्ते में। हाँ डेजी प्लीज, बेनी से कुछ नहीं कहना। मेजर ऑपरेशन है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा।
0: डॉक्टर, डॉक्टर किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर, उनके बिना।
3: अरे भाई, अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
0: मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर।
3: डेजी, इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी।
0: नहीं, मुझ में ये सुनने का साहस नहीं है डॉक्टर।
3: डेजी धीरज रखो, डेजी धीरज रखो। बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। अरे लो बेनी आ रहे हैं।
4: आइए आइए, कहाँ पे जाना?
5: ओ डॉक्टर
4: भाई, जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है पेशेंट बेड पर

0: मिलता। हाँ,
1: इस पैकेट में क्या
2: है? बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोस किया है?
0: मेरी रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
2: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
0: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूँ, आई विल डू माई बेस्ट।
2: लॉरेंस, ये बात इस डेजी से कह दो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी, अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
0: और हाँ बेनी, एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है, आई डोंट लाइक इट। अच्छा तो मैं चलता हूं अब, सी यू अगेन, बाय।
3: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहां से उठा लाए?
2: तुम्हारे लिए एक चीज है।
3: अच्छा, देखो तो।
2: लो, देख लो।
3: ये अब काहे को, और यहाँ
2: मेरी ओर से प्रेजेंट।
3: प्रेजेंट?
2: हाँ, तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो, मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। ए, तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो ये रख लो।
3: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो? बेनी, हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
2: हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है, तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर, साड़ी पसंद आई?
3: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
2: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो बड़ी ना समझो, तुम अगर ऐसे ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देखकर रोने लगी? नहीं नहीं नहीं, रो मत। देखो, अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो, रूठ जाऊं? नहीं नहीं ना। अच्छा तो फिर हंस दो। देखो ये ऐसे ऐसे।
3: अरे क्या क्या हुआ आपको? यहाँ लेट आइए, कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा, लेकिन मेरा सुख क्षण भंगुर था। सहसा सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से धर गया।
4: ओह नो!
3: सदा के लिए मुझसे बिछड़ गया।
4: आखिर ये हुआ कैसे?
3: ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा, सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी, और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। पांव बाद मुझे होश आया, मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे,

0: मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई।
1: डेजी, ये सब क्या है? छोटे बच्चों की तरह?
2: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरजा।
1: दुख तो मुझे भी है डेजी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया था।
2: मैं अब क्यों जीवित हूँ गिरजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई, मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
1: ना डेजी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो, हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो, देखो इससे पेड़ी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
2: गिरजा
1: डेजी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम देर तक बैठकर बातें करेंगे।
0: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे। और एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर हम, मैं और लॉरेंस, विवाह सूत्र में बंध गए।
3: अच्छा,
0: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
4: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
5: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
6: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
5: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
7: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
5: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
7: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
5: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
8: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
9: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
8: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
10: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
2: जोगी जी प्रेम
1: इनसे बातचीत कर रही है विधि जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं। और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां, बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओं चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चूहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है। और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है। हाँ। कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है। और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली, बदमाश
0: जी,
1: प्रैंक करने वाली हूँ वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
0: समझदारी,
1: सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है।
0: हाँ।
1: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
0: हाँ।
1: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ,
0: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची।
1: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ, घर में भी।
0: हाँ।
1: बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
0: अच्छा।
1: और कुछ चीजें थी जो मेरी थी
0: जी,
1: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी। जैसे कलर लगाया उसको सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो और जो मिर्च खिलाई, अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम।
0: यानी साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही हैं। और गुंजा सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी। और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया,

0: मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
1: हाँ नहीं, उतर ही गई थी क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं
0: अच्छा
1: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ।
0: जी
1: उन्होंने बस एक ही चीज़ बोली, तुम जैसी हो वैसे ही रहना, ठीक है।
0: अच्छा
1: और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ एक्टिंग, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग ख़त्म हो गई, मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई
0: अच्छा
1: आपने, तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है।
0: जी
1: लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन
0: जी
1: ऑब्जर्व किया,
0: जी
1: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
0: अरे वाह,
1: हाँ
0: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी? आप अभिनेत्री, आपने अभी बोला कि आपको पता नहीं था कि आप
1: हाँ
0: अभिनेत्री बनेंगी,
1: हाँ
0: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
1: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था,
0: अच्छा
1: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे। कानपुर में मैं थी
0: जी
1: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी, और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ साधना को, और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो
0: जी
1: इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी
0: अरे
1: स्कूल
0: वाह
1: में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
0: अच्छा
1: हाँ तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
0: तो अच्छी बात है। लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि साधना
1: हाँ
0: गाओ, लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
1: देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3 साढ़े 3 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है।
0: ओहो
1: वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए,
0: आह, क्या
1: है ना।
0: खूबसूरत गीत है।
1: तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उससे वक्त आवाज़ अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी।
0: उतनी बुलंद आवाज
1: हाँ
0: थी
1: बुलंद आवाज़ थी।
0: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब
1: हाँ
0: छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध भारती
1: हाँ
0: परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल, थैंक यू।

0: अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थीं, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो भला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूँ कि आपने मंच में नृत्य, अभिनय, बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद
1: हाँ,
0: किए हों।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया,
0: अच्छा
1: वो मेरी बहन करती थी, तो
0: अच्छा
1: मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ,
0: अच्छा
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए।
0: अच्छा
1: अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
0: बहुत
1: तो
0: दुखद घटना है जी।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी, तो मैं तो स्कूल में गाना गाती थी और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्य की हैं उस जगीरा में, हमने देखा
1: जोगीरा
0: बड़ा
1: में मार
0: सुंदर
1: खा के की हूँ
0: वो किस्सा भी जरा बता
1: नहीं,
0: दें
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी।
1: हमारे डांस डायरेक्टर,
0: जी
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ,
0: हाँ
1: और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी,
0: अच्छा
1: तो मैं तो
0: हाँ
1: नहीं थी, तो उसमें एक स्टेप है ना, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम,
0: जी
1: और घूम के आना था,
0: जी
1: मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये, तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है, तो एक बार आएगा आज तुमको डांस आएगा देखना, लेकिन डंडा मारा पैर में
0: अच्छा
1: एकदम ठीक कर दिया मैंने
0: एक
1: आपको
0: डंडे में डांस हो
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते हैं
0: लाठी के भूत
1: लाठी के भूत, मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी इसे
0: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक
1: और
0: पहुंचाया।
1: क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी,
0: हाँ
1: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक मटक के डांस किया उसने, फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं, कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं, तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे, इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो मैं वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप 1 सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए, वो
1: हाँ,
0: किरदार किया कैसे आप?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी, अगर वो सीखी होती तो मैं बंध जाती किसी भी चीज में,
0: अच्छा
1: वो बह गया, बह रहा था जैसे, तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी, छोटे छोटे मूवमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ, तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया, कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो,
0: अच्छा
1: हाँ ये है ये फ्रेम है, ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता, पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर कैमरे की, तो यही सच। और दूसरा वो उसके जो डीओपी,
0: डीओपी
1: हाँ
0: रहते
1: उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो सीधे नहीं, इतना सा बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ, तो
0: अच्छा
1: 2-3 चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है,
0: हाँ
1: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती थी, तो वो नेचुरली था अंदर तो आ गया,
0: जी।
1: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
0: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
1: मुझे लगता है कि पहली बात एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स

0: सर होने चाहिए, तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया, कम हो गया, पर जो चीज है ही नहीं आपके अंदर, और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम, मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके, तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को। हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं।
1: जी, तो थोड़ा सा खुद को परख के आए, ऐसा आपका कहना है।
0: हाँ
1: और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में,
0: बिल्कुल
1: अभिनय भी जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो
0: हाँ
1: मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ।
0: हाँ ऐसा
1: एक
0: तो कुछ
1: ये
0: नहीं
1: ईगो
0: है।
1: भी सामान्यतः लोगों में
0: हाँ
1: होता है
0: होता
1: कि
0: है।
1: हमने किया है,
0: हाँ
1: तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
0: नहीं कुछ तैयार
1: नेचुरली?
0: नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना
1: हाँ
0: वो भी एक्टिंग ही चाहता
1: जी
0: है ना, हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी,
1: जी
0: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता। नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होकर प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं, क्योंकि हमको पता है वो अपनी समझ
1: जी
0: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव कुछ आवाज़ नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूँ।
1: जी
0: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है,
1: अच्छा, एक्टिंग नहीं
0: नहीं
1: करना ही
0: करना है।
1: एक्टिंग है।
0: हाँ तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ, ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ
1: हाँ
0: कि
1: जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी, और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो साधना जी, हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं, तो मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी
0: सुनाइए।
1: पसंद सुन ली जाए
0: अच्छा ऐसा।
1: जी। तो कोई गीत बता दीजिए जो।
0: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं,
1: जी
0: तो कुछ दिल ने कहा, और ऐसी भी बातें होती हैं,
1: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत
0: खूबसूरत
1: है।
0: और
1: जी जी
0: बहुत
1: जी
0: मीठा संगीत है।
1: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।

0: और गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं और उसी उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30। ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा, तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं। तो
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो हॉस्पिटलाइज थे, तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी, तो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा।
1: उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना, तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी, और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं।
0: हाँ,
1: तो ह्यूमन टच नहीं रह गया है।
0: जी, जी जी
1: तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में। और बाकी तो छोटा सा अच्छा सा रोल था। और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है
0: जी,
1: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है
0: जी,
1: तो इसलिए मैंने कभी उनपे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा ये सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा।
0: जी,
1: लेकिन हाँ अच्छा लगा, प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत प्रोडक्शन में,
0: जी जी
1: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है।
0: हाँ।
1: बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
0: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे?
1: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था।
0: अच्छा।
1: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं
0: जी।
1: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत
0: आदत अनुसार आप लड़कियों से घिरी रहती थी।
1: हाँ, तो टाइम निकल जाता है। बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी
0: जी।
1: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है। तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहां पे। हाँ।
0: नहीं वैसे आप बहुत हॉट है, शॉल की जरूरत नहीं। तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के बाद। जी,
1: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने
0: जी,
1: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकराभरणम फिल्म आई थी
0: जी,
1: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकराभरणम। तो जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में
0: जी,
1: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धरता थे आबिद रिजवी, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, तमिल

0: मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब टाइटल
1: नीचे का जी।
0: लेकिन वो ले गए
1: जी
0: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई। मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम। मैं कहा ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन 2 मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं,
1: वही सेम फिल्म।
0: हाँ सेम फिल्म, लेकिन आपको जो गुरु हैं उनकी बेटी का रोल। मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूँगी, जुड़ना ऐसी फिल्म
1: जी,
0: से
1: जी।
0: तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहाँ पे
1: जी,
0: साउथ में सरगम ये सब उन्होंने बनाई। तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन
1: बोलती आंखें,
0: हाँ तो इनको इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए
1: जी,
0: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, दो बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के बाढ़ के बाद ससुराल थी ना शायद,
1: जी जी उसके बाद ही।
0: हाँ तो मस्ती में की बस और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं
1: जी,
0: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी।
1: अच्छा,
0: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं
1: जी,
0: मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। तो वो फिल्म की उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के दादी बन के चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी।
1: हाँ।
0: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी फिर बच्चों को देखना ये सब
1: जी, जी।
0: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो ये पिछले 5 सालों की जुगनी
1: जी, जुगनी
0: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म
1: बहुत अच्छी
0: है।
1: फिल्म,
0: तो ये नए नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब, तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है। तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी। तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण
1: जी।
0: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है स्थल।
1: अच्छा।
0: हाँ तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके। दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है ना, सब मिलके काम कर रहे हैं,
1: मिलके काम कर रहे हैं, पारिवारिक तरीके से काम कर रहे हैं।
0: फिर मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से, तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यहाँ है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ। तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत।
1: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर वो जब साथ में है तो आपको क्या अलग लगा पहले का? और
0: मुझे लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था।
1: अच्छा।
0: हाँ भी बोलते हैं, हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे।
1: हाँ।
0: कि ऐसा ही करना है। और कई कई जगह तो आए पैर वैर छुए, बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी
1: जी। हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको ले जाएगा।
0: पति का नाम राजकुमार
1: ही नहीं, राजकुमार आ गए। वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
0: अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
1: अच्छा, मैं हम जानना चाहते हैं वो किस्सा।
0: वो किस्सा मैंने बताया, मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है। तो मैंने कहा अब नहीं करूंगी। तो ये बिहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है। तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम।
1: हाँ।
0: और मिलने आए तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ। और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने
1: जी।
0: तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने। इनकार में जानबूझ के मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उसलिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू

0: 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर,
1: हाँ
0: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। फिर
1: अच्छा,
0: मेरी
1: वही लड़की हीरोइन चाहिए थी लेकिन
0: हाँ
1: उसके साथ शादी नहीं करानी
0: होता है ना दिमाग में, शादी फिल्म लाइन की लड़की है,
1: हाँ
0: ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने। फिर
1: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
0: ये रात भीगी भीगी,

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं यूपी की भोजपुरी फिल्म है उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की
0: वो
1: है,
0: वाली की है ना, गंगा मैया तो है।
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी।
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे
0: जी।
1: सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए।
0: हाँ।
1: तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो
0: जी
1: जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो ही पियरी चढ़ाई वो,
0: जी
1: जो कि ब्लॉकबस्टर
0: जी
1: आज
0: अभी
1: भी ब्लॉकबस्टर है।
0: जी जी
1: तो उसको मेरे फादर ने को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से,
0: जी
1: गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार। तो
0: अच्छा
1: उसमें मैंने काम किया
0: जी
1: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको
0: इतना लाइटली तो नहीं लिया होगा।
1: बहुत अच्छी फिल्म बनी
0: जी,
1: लेकिन
0: बहुत प्यारी है।
1: हाँ वो
0: बहुत अच्छी फिल्म
1: हाँ
0: जी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन लाइक जो वहाँ की भाषा है उस भाषा में आ जाती, ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी।
1: बिल्कुल भी नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
0: अच्छा
1: हमें अपनी जो बाइयाँ आती थी उन सबसे तो
0: मतलब आप वो चाट और लस्सी खाते
1: वो खाते पीते
0: बढ़िया
1: हाँ
0: जी
1: क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं। सिर्फ
0: अच्छा
1: मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने,
0: अच्छा
1: कि मुझे आनी चाहिए क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे, तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे
0: सरदार
1: हाँ।
0: खड़े हैं और
1: तो हमारे
0: भोजपुरी बोल रहे
1: पंजाबी
0: हैं।
1: एक्सेंट है ही नहीं।
0: अच्छा
1: हाँ हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी,
0: जी
1: हाँ ये काफ़ी फर्क है।
0: जी
1: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है, अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि

0: भोजपुरी फिल्म हो गई क्या?
1: अच्छा,
0: ऐसा था।
1: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ, जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, गुंजा को, कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है, वो गीत हम सुनाना चाहेंगे।
0: देखिए, कौन दिशा में तो सब गाते हैं
1: जी,
0: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे, चंदन चंदन, तो एक वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी, और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था, चंदन चंदन ऐसा
1: बहुत,
0: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है गाना।
1: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इसकी?
0: हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
1: रविंद्र जैन वहां पे उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे, गाया जा रहा होगा। हाँ। कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते?
0: बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा। अगर आप
1: जी, बहुत खूबसूरत गीत है,
0: और मैं करने वाली हूँ, तो वो भी एक्साइटमेंट था। और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे
1: जी,
0: और आज तक मैं बहुत बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हूँ।
1: तो जब आप इसे पसंद करती हैं, तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है,
1: हाँ
0: तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई
1: हाँ
0: होंगी शायद?
1: हाँ बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि, और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक, क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी,
0: जी
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में
0: एक साथ
1: एक साथ,
0: बहुत बड़े कमरे में,
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था,
0: अच्छा फेमस स्टूडियो
1: बट
0: में।
1: जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा, तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह
1: ओहो
0: विराजमान होंगे।
1: भैया मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ, कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था,
0: हाँ,
1: उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
0: 30 गाने, 30 धुनें।
1: गाने में, और सुना रही थी पसंद है नहीं है अच्छा, और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो
0: जी
1: बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़ी छोड़ी नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी यू नो,
0: जी
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी, इतना गुणी, माई गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे
0: शब्द भी
1: और
0: लिख
1: शब्द भी लिख लेते थे,
0: लेते।
1: एक सेकंड में,
0: 30 गाने एक समय
1: हाँ
0: पे बना
1: 32
0: के
1: होंगे
0: सुनाना
1: 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का, दादा कह
0: लगातार।
1: रहे हैं नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा, ये वर्ड्स इधर डाल शुरू कर दिया, तो
0: और
1: उनसे,
0: कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है,
1: हाँ उसके बाद
0: अद्भुत।
1: फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए,
0: हाँ
1: जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए, तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवाता,
0: ये रविंद्र जी ने कहा
1: हाँ
0: आपसे? जी
1: क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे, और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार,
0: जी और
1: दादू
0: जब टूर
1: दादू,
0: करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो
1: हाँ
0: आनंद ही अलग आता
1: हाँ
0: होगा
1: वो
0: देख
1: तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है,
0: के। अच्छा
1: तो आई थिंक वो अक्खड़पन में सब कुछ सीख गई,
0: हाँ,
1: अल्लड़पन कहते ना कि,
0: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई
1: हाँ ये
0: बचपन से।
1: बात है, मेरे दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो,
0: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार
1: दे
0: रहना,
1: हाँ
0: लगेगी तो
1: लगे,
0: संभाल लेना।
1: हाँ
0: बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतना इतनी रोचक जानकारियां मिल रही हैं। और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे घूमते
1: नहीं
0: फिरते?
1: नहीं बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, क्योंकि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अभी शूटिंग भी करेगी, तो ये
0: हाँ,
1: चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था,
0: अच्छा
1: नॉट फ्रॉम माई हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें, लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फ़ोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो,
0: अरे वाह,
1: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी, तो इन
0: हाँ
1: लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया, बाबा ने
0: एक
1: बोल
0: बार में
1: दिया
0: बोल दिया
1: तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो,
0: यानी
1: तो
0: आपको
1: हाँ
0: मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला,
1: हाँ
0: दोनों
1: मेरी
0: जगह
1: सास
0: बढ़िया।
1: ससुर तो बहुत अच्छे थे,
0: जी
1: तो जहाँ भी हैं बस खुश रहें।
0: जी बिल्कुल। साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का, जो आपकी बदमाशियों से परेशान है, पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है?
1: नहीं नहीं, मेरे बेटा तो बहुत दूर है।
0: अच्छा,
1: उसको फेमस नहीं होना है। वो बिल्कुल ही अलग सोचता है
0: जी।
1: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की हैं
0: जी।
1: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने
0: जी,
1: अनुपम जी ने,
0: बहुत बढ़िया।
1: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
0: हाँ, तो उस समय वो चल,
1: फिर वो उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है, तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
0: मतलब तो, उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता?
1: नहीं, मैं करती भी नहीं, क्योंकि
0: मेहनत करो अपनी,
1: हाँ, अपनी मेहनत करो,
0: ये बहुत अच्छी बात है।
1: क्योंकि मैंने अपने लिए कभी किसी को बोला नहीं, बच्चे के लिए क्या बोलूंगी
0: जी। लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है, तो क्या आप करेंगी?
1: बिल्कुल करूँगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना, ये सुपर 30
0: जी,
1: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग। मुझे जब बुलाना कॉमेडी कोई, अच्छा तो बोले 100%।
0: हाँ,
1: अब देखते हैं क्या होता है।
0: जी बिल्कुल होगा, आपने कह दिया, सोच लिया।
1: हाँ,
0: और विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं।
1: हाँ,
0: ऐसा हम मान के चलते हैं। बिल्कुल, ये जगह बड़ी बड़े पवित्र लोग यहाँ पर आए हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर अभी आप तस्वीरें देखते हुए आ रहे थे, तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है यहाँ की।
1: हाँ, लेकिन एक चीज बता रही हूँ मैं
0: जी,
1: कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ सिर्फ मतलब बेड ऑफ रोजेस बोलते हैं ना। बहुत बहुत तकलीफें आई और बहुत ऊंच नीच भी हुई और ट्रॉमाज हुए लाइफ के, बहुत सारी चीजें हुई हैं। बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ,
0: ऊर्जा सकारात्मक।
1: हाँ, वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि मुझे लगता है क्राइम है खुद को दुख देना, दे के रहना या अपने पे तरस खा के रहना, क्योंकि आप सबको सब होता है मुझे और औरतों की तरह, ऐसा नहीं है।
0: हाँ,
1: लेकिन मैं सबको बताती भी नहीं हूँ जो उस दौर में हैं, या मुझे फोन करके अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में कि मुझे लगा मैं जीऊँ या मर जाऊँ।
0: अरे
1: हाँ, मतलब इतनी सीवियरिटी वाली चीज़ें हुई कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीना मतलब नहीं है इस टाइम, नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटर कि मेरी सांस ही ना आए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे लोग ऐसा देखेंगे, क्या मुझे जानते हैं मेरी हंसी के लिए, मेरी खुशी के लिए, तो मैं कुछ तो अच्छा करके जाऊं। और फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था,
0: क्या बात है।
1: और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूं, खुश दिखूं, खुश बोलूं, और एटमॉस्फेयर अपने आप ठीक होगा, तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा।
0: बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई

0: या पूरी कर दें हमारा एक गाना जो है, तो क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा लेते, तो हम भी चाहते हैं, विविध भारती में आई हैं तो कुछ गाने हम भी
1: मैं
0: सुन
1: एक
0: लें।
1: कोशिश करती हूँ। चलिए मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफ़ी साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ।
0: आह
1: वो मतलब मेरे लिए भगवान भी हैं, सब कुछ है।
0: जी
1: मुझे लगता है मैंने रोमांस, दर्द, दुख जो भी है उनकी आवाज़ से सीखा है।
0: जी
1: उनका ही गाना गा देती हूँ।
0: जी

गली गली प्यार की रसिक छा जीत के रसिक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं गली गली प्यार की रसिक छा जीत की बस एक निगाह प्यार की पुकारता।

0: अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो।
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो, उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं।
0: जी
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम
0: ध्यान
1: ये
0: होता है।
1: ख्याल होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए,
0: और बचता कभी नहीं।
1: बचता भी नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती है माए।
0: जी
1: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें। 50 में औरतें सोचती हैं लोग तो जिंदगी खत्म हो गई,
0: जी
1: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि आप
0: हाँ
1: सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन उसको एहसास नहीं है।
0: हाँ
1: तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहने। पहनने से मुझे याद आया, मैंने ब्रांड भी शुरू किया है,
0: अच्छा
1: हाँ, एक कच्चे धागे करके, और
0: अच्छा
1: साड़ियाँ, वीव्स वगैरह,

0: चाहती हूँ सब खुश अच्छे से सच दर्ज के रहें। औरतों का काम है ये, ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए और अच्छी फिल्में देखें, तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी है पहेली
1: जी,
0: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की। बहुत सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है,
1: अरे वाह,
0: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब देखें।
1: फिल्म है कैसी है पहेली,
0: कैसी है पहले
1: जरूर से हम सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है। और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आए, आप वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी। सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
0: अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है, विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
1: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा लगता है विविध भारती में जब आप आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है, तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद,
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से सफर छाया गीत का कुछ ही पलों के इंतजार के बाद

छाया गीत के सफर में आज बातें अफसानों की। ये वो मोहब्बत के अफसाने हैं जिनमें कभी सुकून मिलता है तो कभी मिलती है तड़प, कभी मिलन है तो कभी जुदाई। कभी ये अफसाने खुशी के गीत बनकर झूमने लगते हैं तो कभी देते हैं दर्द की पुकार। पर जो भी है, हर दिल का एक अफसाना होता है, या यूं कहें कि हर दिल एक अफसाना लिखता है अपनी मोहब्बत का, अपनी चाहत का, जिसे कभी दिल खुद तो कभी पूरी की पूरी दुनिया गुनगुनाती है।

हम चल रहे थे राह जिंदगी पर अकेले और खामोश। तुम क्या मिले राह बनकर कि जिंदगी को एक नया अफसाना मिल गया। इस अफसाने में है दीवानगी, इसमें है दरिया की रवानगी। कोरे कागज जैसी जिंदगी पर जो अफसाना तूने लिख डाला, अब उसे ही तो ताउम्र पढ़ते जाना है हमें।

हमारे सामने आते ही शब्द खो से जाते हैं, जुबां रुक सी जाते हैं कहीं। जब तुम ही बसे हो इन निगाहों में, तो क्यों ना इन नजरों से ही मोहब्बत का अफसाना लिखा जाए। चाहत की ये दास्तां आखिर क्यों सुने कोई और, ये राज़े मोहब्बत तो बस दो दिलों के दरमियां ही महफूज रहे।

हमेशा आंख में दिल रहता है दिलदार का। नजर ने कह दिया अफसाना मेरे प्यार का। हमेशा

जिंदगी की राहों पर साथ चलते हुए बढ़ता जाता है मोहब्बत का अफसाना। इस अफसाने में कभी मौसम और कभी महकती रातों की बातें, तो कभी बिखरी जुल्फों और काली घटाओं की बातें होती है। यही अफसाना कभी गलियों का दिल बनकर धड़कता है, तो कभी क्षमा पर परवाने की प्रीत झूमने लगती है, गाने लगती है।

मोहब्बत के अफसाने में बस प्यार की ही बातें हो, ऐसा तो नहीं होता। इन अफसानों में तो झगड़े भी होते ही रहते हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर बार नायिका ही रूठे और नायक उसे मनाए। कई अफसाने तो ऐसे भी बने हैं जिसमें नायिका ही अपने नायक को मनाने में लगी है। पर जो भी हो, हर अफसाने के अंजाम में सारी शिकायतें दूर हो ही जाती है, और तब दिल गा उठता है कोई प्यार भरा गीत।

बिना बात के वो रोटना, वो मनाना, वो साथ साथ कविताएं पढ़ना, सावन के वो झूले, गर्मी की वो रातें, और हम अपनी छत से करते थे एक दूसरे को इशारे। इन हसीन यादों से ही तो बनता है हमारा ये छोटा सा प्यार भरा अफसाना।

अफसाना आज का नहीं है दोस्तों, ये अफसाना बहुत पुराना है। इस अफसाने में है बचपन की शरारतें, इसमें है बचपन की दोस्ती जिस पर आगे चलकर मोहब्बत का रंग

ये दिल लिखता तो चला जाता है जिंदगी के अफसाने, पर ये काम इतना आसान कहाँ। अफसाने के किरदार ही इसे रातों को जगाते हैं। इन तमाम अफसानों में एक है मोहब्बत का अफसाना, जिसके होते हुए जमाने का कोई भी अफसाना भला कौन पढ़ना चाहेगा। और इन किरदारों में है एक ऐसा चेहरा जो हम सफर है इस अफसाने का। जब साथ हो इसका तो भला दुनिया से क्यों डरा जाए। जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी राहों से गुजर कर अपनी मंजिल पा ही लेता है मोहब्बत का ये प्यारा सा अफसाना, जो धड़कता है हर दिल में।

अफसानों की ये बातें आप सुन रहे थे छाया गीत के सफर में, अपनी हम सफर ज्योति के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हमने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। और मैं हूं आपके साथ आज के युववाणी कार्यक्रम की प्रस्तोता और आपकी अपनी रेडियो मित्र पूनम वर्मा। आइए दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रम आज की बात से, जिसमें हमारी आज की चर्चा का विषय है पोषण में आलू का स्थान और उपयोग। दोस्तों, आज इस विषय को चुनने का कारण है आज की खास तारीख। जी हाँ दोस्तों, आज 30 मई है और पूरा विश्व मना रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो। हाँ दोस्तों, एक पूरा दिन आलू के नाम। साथियों, इस दिवस को मना

की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 में की गई थी। दोस्तों, इस दिवस का उद्देश्य दुनिया को यह बताना है कि आलू केवल स्वाद का ही नहीं बल्कि पोषण, खाद्य सुरक्षा, किसानों की समृद्धि और सतत कृषि का भी एक महत्वपूर्ण आधार है। मित्रों, इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम वर्ष 2026 में भी अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मना रहे हैं और इस वर्ष की थीम है जहाँ आलू उगते हैं वहां आजीविकाएं फलती फूलती हैं। साथियों, यह थीम हमें बताती है कि आलू केवल एक फसल नहीं बल्कि लाखों किसानों और उनके परिवारों की आय, रोजगार, पोषण और बेहतर जीवन यापन का आधार भी है। लेकिन समस्या, या कहें तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि आलू को दुनिया पोषण से भरपूर और खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ तो मानती है, लेकिन उसी आलू को लेकर हमारे समाज में कई गलत फहमियां भी फैला दी गई हैं। आजकल बहुत से लोग आलू को मोटापे का एक बड़ा कारण मानकर अपने भोजन से हटा देते हैं। अब मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि आपने भी अपने आसपास कम से कम एक ऐसा व्यक्ति जरूर देखा होगा जो आलू का नाम सुनते ही कहता है, अरे भाई, इससे तो वजन बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, यह सच नहीं है। क्या आप जानते हैं कि एक मध्यम आकार का उबला हुआ आलू हमें लगभग 110 कैलोरी, एक साथ ही फाइबर, विटामिन सी, विटामिन B6, पोटेशियम और आयरन जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में प्रदान करता है, जबकि इसमें वसा ना के बराबर होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आलू में मौजूद विटामिन सी और कुछ प्राकृतिक एंजाइम हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायक माने जाते हैं। मतलब आलू पोषण के साथ साथ हमारी त्वचा को प्राकृतिक सुंदरता भी प्रदान कर सकता है। लेकिन आइए आज हम आलू को पोषण के लिहाज से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आलू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एक बेहतर सोर्स होती है। इसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखते हैं और पोटेशियम इतना होता है कि एक आलू हमें एक केले से भी ज्यादा पोटेशियम प्रदान कर सकता है। अब अगर विटामिन सी की बात करें तो एक, हाँ हाँ, केवल एक आलू हमारी रोज की विटामिन सी की आवश्यकता का लगभग 30% पूरा कर सकता है। दोस्तों, और हम सभी जानते हैं कि विटामिन सी न केवल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है बल्कि हमारे शरीर में आयरन के अवशोषण में भी मदद करता है। हाँ दोस्तों, वही आयरन जिसकी कमी से हमारा हीमोग्लोबिन भी हमसे खफा हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। दोस्तों, आलू एक ऐसी फसल है जो कम जमीन, कम लागत, कम समय में तैयार हो जाती है और आसानी से हर वर्ग के लोगों तक पहुंच भी जाती है। यानी आलू बच्चों के टिफिन से लेकर किसानों की आजीविका तक लगभग हर स्तर के लोगों का सहारा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आलू केवल सब्जियों का राजा ही नहीं बल्कि स्वाद और पोषण का बादशाह भी है। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है पूनम, लेकिन फिर वो मोटापे वाली बातें? तो साथियों, जरा ध्यान दीजिए। आलू के पराठे हो या गर्मा गर्म समोसे, आलू टिक्का हो या पानी पूरी, मसाला डोसा से लेकर वेज बिरयानी तक, आलू के बिना हमें स्वाद आता है क्या? मतलब अगर आलू ना हो तो लगभग स्वाद की हड़ताल ही हो जाएगी, है ना? बस यहीं पर हम बड़ी गलती कर बैठते हैं। स्वाद के चक्कर में अक्सर हम आलू को अधिक तेल या घी के साथ पकाकर खाते हैं और खाते वक्त मात्रा का भी ध्यान नहीं रखते। ऐसे में हमें समझना होगा कि समस्या आलू से नहीं बल्कि उसे पकाने के तरीके और अधिक मात्रा में खाने से उत्पन्न होती है। इसलिए जरूरत आलू को छोड़ने की नहीं, उसे सही तरीके से अपने भोजन में शामिल करने की है। और वह सही तरीका क्या है? आलू को कम तेल मसालों के साथ पकाएं, डीप फ्राई से बचें। इसे दाल, दही, हरी सब्जियों के साथ संतुलित भोजन का हिस्सा बनाएं। संभव हो तो उबले हुए आलू का उपयोग करें। साथ ही सब्जियों को धोकर काटें, काट कर धोने से बचें जिससे उसके पोषक तत्व अधिक सुरक्षित रहें। साथियों, FAO यानी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य संगठन की माने तो आलू दुनिया की विश्व खाद्य सुरक्षा में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पोषण से भरपूर तो है ही। दोस्तों, आज हमने इस कार्यक्रम में आलू से जुड़े मिथ को दूर किया और साथ ही इसके लाज

0: अलावा फायदों के बारे में जाना। तो अगली बार जब माँ आलू बनाए तो क्या करना है? तो करना ये है कि थोड़ा हंसे, हाँ हाँ भाई, थोड़ा मुस्कुराए और इस सुपर फूड का लुत्फ उठाए, लेकिन संतुलित मात्रा और सही तरीके का भी ध्यान रखें। श्रोताओं, इसी के साथ क्रम आज की बात को यहीं पर देते हैं विराम। अब सुनिए आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी छिंदवाड़ा की युवा श्रोता वैष्णवी आड़े की वार्ता।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैष्णवी आड़े है। आज मैं एक युवा श्रोता के रूप में उस आवाज के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसने पिछले 90 वर्षों से पूरे भारत को एक सूत्र में बांध कर रखा है। आकाशवाणी, हमारी पीढ़ी को अक्सर डिजिटल जनरेशन कहा जाता है। हमारे पास स्मार्टफोन्स है, सोशल मीडिया है और हर जानकारी कुछ ही सेकंड्स में मिल जाती है, लेकिन फिर भी कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जिनकी सादगी, सच्चाई और अपनापन आज भी दिल को छू जाता है, और आकाशवाणी उन्हीं में से एक है। बहुत जल्द आकाशवाणी अपने 90 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा पूरी करने जा रही है। ये केवल एक ब्रॉडकास्ट सर्विस नहीं बल्कि भारत की भावनाओं, संस्कृति, विश्वास और एकता की पहचान है। जब मैं आकाशवाणी के बारे में सोचती हूँ तो मेरे मन में बचपन की छोटी छोटी यादें भी ताज़ा हो जाती है। मुझे याद है बचपन में घर के किसी कोने में रखा रेडियो सुबह सुबह बजता था। उस समय शायद हम उसके महत्व को समझ नहीं पाते थे, लेकिन उसकी आवाज़ घर के वातावरण में एक अलग ही अपनापन भर देती थी। कभी समाचार सुनाई देते थे, कभी पुराने मधुर गीत, तो कभी प्रेरणादायक कार्यक्रम। दूर से आती वो शांत और सदी हुई आवाज़ आज भी एक अलग सुकून का एहसास कराती है। आज जब सब कुछ मोबाइल स्क्रीन्स तक सीमित होता जा रहा है, तब एहसास होता है कि आकाशवाणी केवल सूचना का माध्यम नहीं था कि परिवारों और भावनाओं को जोड़ने वाली एक खूबसूरत कड़ी भी था। जब मैं आकाशवाणी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि ये सिर्फ पुराने समय की याद नहीं है बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि जहाँ आज कई प्लेटफॉर्म्स केवल तेज इन्फॉर्मेशन देते हैं, वहाँ आकाशवाणी जानकारी के साथ भरोसा भी देती है। सन 1936 में शुरू हुई आकाशवाणी ने भारत के इतिहास को बहुत करीब से देखा है। आज़ादी का दौर हो, युद्ध का समय हो, राष्ट्रीय उत्सव हो या देश के महत्वपूर्ण संदेश, हर परिस्थिति में आकाशवाणी लोगों की आवाज़ बनी रही। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसने केवल खबरें नहीं सुनाई बल्कि लोगों को जोड़ने का काम किया। भाषाएं अलग थी, संस्कृतियां अलग थी, लेकिन आकाशवाणी ने पूरे देश को एक परिवार की तरह जोड़ कर रखा। एक युवा होने के नाते मुझे लगता है कि आकाशवाणी ने हमेशा युवाओं को सही संदेश देने का प्रयास किया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है युववाणी। ये कार्यक्रम युवाओं के विचारों, सपनों और प्रतिभाओं को मंच देता है। इसमें करियर गाइडेंस, एजुकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पोइट्री, म्यूजिक और सोशल इश्यूज जैसे विषयों पर चर्चा होती है। आज जब कई युवा कन्फ्यूजन, प्रेशर और नेगेटिविटी से गुजरते हैं, तब ऐसे कार्यक्रम उन्हें मोटिवेशन, पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास देते हैं। इसके अलावा आकाशवाणी के समाचार कार्यक्रम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए करंट अफेयर्स और सही जानकारी ये एक भरोसेमंद माध्यम है। मुझे ये बात बहुत खास लगती है आकाशवाणी की कि इसने हमेशा नॉलेज और कल्चर को दोनों को साथ लेकर चला है। यहाँ संगीत है, साहित्य है, कविता है, लोक संगीत है और भारत की असली पहचान है। आज भी जब इसकी सिग्नेचर ट्यून सुनाई देती है तो एक अलग ही शांति और अपनापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे भारत की आत्मा बोल रही हो। डिजिटल युग में आकाशवाणी ने खुद को समय के साथ बदला है। अब इसके कार्यक्रम FM, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है, यानी आज की युवा पीढ़ी भी इससे आसानी से जुड़ सकती है। मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक रेडियो सर्विस नहीं है, ये एक इमोशन है, एक ऐसी आवाज़ जिसने पीढ़ियों को जोड़ा है, जो बिना देखे भी लोगों के दिलों तक पहुंचती है। 90 वर्ष की ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि बदलते समय में भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है। आज जब हम आकाशवाणी के 90 वर्षों का उत्सव मनाने जा रहे हैं, तब हमें ये याद रखना चाहिए कि ये केवल एक संस्था की सफलता नहीं बल्कि भारत की सामूहिक चेतना की सफलता है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, तकनीक बदल सकती है, माध्यम बदल सकते हैं, लेकिन वो आवाज़ जो लोगों के दिलों तक पहुँचे वो हमेशा अमर रहती है, और आकाशवाणी एक ऐसी ही आवाज़ है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा सादर नमन, धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी छिंदवाड़ा की युवा श्रोता वैष्णवी आड़े की वार्ता। आइए अब जुड़ते हैं अपने श्रोताओं के पसंदीदा क्रम तरुणों की पसंद से, और आज का पहला खत हमें प्राप्त हुआ है कुकड़ा जगत छिंदवाड़ा से, जिसे भेजा है शीतल परतेती।

बचनी पड़ती थी मोनिका उइके, गीता और सीमा ने। इसके साथ ही शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव ने। इनकी मिलीजुली फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म छुपा रुस्तम का ये गीत, जिसमें आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की, बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

0: छिंदवाड़ा में होने जा रहा है छिंदवाड़ा का सबसे पहला भजन जिमिंग कॉन्सर्ट, छिंदवाड़ा का अपना पहला न्यूज़पेपर, जबलपुर एक्सप्रेस अपने 35 साल पूरे होने पर लेकर आ रहा है एक ऐसा म्यूजिकल भक्ति अनुभव जो आज तक छिंदवाड़ा में कभी नहीं हुआ। 30 मई 2026 शाम 7 बजे से दशहरा मैदान पोला ग्राउंड छिंदवाड़ा। इस इवेंट में एंट्री है बिल्कुल फ्री। जबलपुर एक्सप्रेस छिंदवाड़ा का अपना न्यूज़पेपर।
1: दोस्तों, क्रम तरुणों की पसंद यूं ही जारी रहेगा, लेकिन आइए अभी जुड़ते हैं क्रम साहित्य सरिता से, जिसमें आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महान लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। दोस्तों, अगर आज हम हिंदी में समाचार पढ़ते हैं, विज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं और अपनी मातृभाषा हिंदी को शासन, प्रशासन तथा ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में देखते हैं, तो इसके पीछे एक महान व्यक्तित्व यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ही हाथ है। साथियों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 15 मई सन 1864 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। उनके पिता राम सहाय द्विवेदी जी संस्कृत के विद्वान और ज्योतिषी थे। आर्थिक परिस्थिति के कारण महावीर जी ने रेलवे में नौकरी की और झांसी में तार बाबू के रूप में कार्य किया, लेकिन उनका वास्तविक प्रेम तो साहित्य से ही था। इसलिए दिन में नौकरी और रात में अध्ययन और लेखन, यही उनकी दिनचर्या बन गई। उन्होंने हिंदी, संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी के अतिरिक्त कई अन्य भाषाओं का अध्ययन किया। वर्ष 1903 में जब उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला, तब हिंदी साहित्य के इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ, जिसे हम आज द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। साथियों, महावीर प्रसाद जी ने हिंदी भाषा को सरल, शुद्ध, व्याकरण सम्मत और जनमानस के लिए सुगम बनाया। उन्होंने अनेक नए लेखकों को दिशा दी। प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त और सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने निबंध, आलोचना, अनुवाद और संपादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान रहा हिंदी को राष्ट्र निर्माण और जन जागरण का माध्यम बनाना। महावीर जी का मानना था कि भाषा वही सफल है जिसे सामान्य व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि नियति से कोई बच नहीं सका। नियति ने एक बार फिर अपना असर दिखाया और 21 दिसंबर सन 1938 को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस दुनिया से, मतलब इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनके विचार और उनका योगदान आज भी जीवित है। साथ ही जीवित हैं वे हमारे दिलों में। आज भी जब कोई विद्यार्थी शुद्ध हिंदी लिखता है या जब कोई लेखक भाषा को सरल, प्रभावी बनाने का प्रयास करता है, तब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की वही परंपरा आगे बढ़ती दिखाई देती है और उनके अद्भुत योगदान की कहानी जागृत हो उठती है। दोस्तों, अंत में कुछ पंक्तियाँ ऐसे ही महान साहित्यकारों को समर्पित। शब्दों से जिसने राष्ट्र की चेतना को जगाया, कलम की रोशनी से जिन्होंने अंधियारों को मिटाया, हिंदी के उन साहित्य साधकों को सत सत नमन जिन्होंने अपनी कलम से भारत का मान बढ़ाया। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ क्रम साहित्य सरिता को यहीं पर देते हैं विराम और पुनः जुड़ते हैं क्रम तरुणों की पसंद से, जिसमें अगला खत हम शामिल कर रहे हैं सहडोल विश्वविद्यालय से, जिसे भेजा है मास्टर आशीष वर्मा, सपना, अबीर, आकांक्षा, सरमन सिंह, जीते

इंद्र सिंह, गोपाल तिवारी, शुभ सोनी, सोनिया चौधरी, शानिया चौधरी, जयवीर पटेल, देवेंद्र और तुम्बिका बेसराम ने इन्होंने फरमाइश की है फिल्म दिल का रिश्ता के इस गीत को सुनने की, जिसमें आवाजें हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की। बोल हैं समीर के, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है।

0: 70 वर्षों का विश्वास, छिंदवाड़ा शहर के मध्य स्थित शिक्षा का मंदिर सेंट जोसेफ स्कूल अपनी एक और नई शाखा प्रारंभ करने जा रहा है, सेंट जेवियर ग्लोबल एकेडमी ICSE पैटर्न। तो आज ही अपने बच्चे के लिए स्थान सुरक्षित कराएं। हमारा पता है SBI मुख्य शाखा के सामने, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। प्रवेश हेतु संपर्क करें 7898091789।
1: श्रोताओं, समय बीत रहा है, आइए समय को ध्यान में रखते हुए जान लेते हैं आज का इतिहास। श्रोताओं, सन 1919 में आज ही के दिन महान कवि और साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड उपाधि का त्याग किया था। आइए इसी के साथ जान लेते हैं कल के आकर्षण। कल के युववाणी कार्यक्रम में क्रम आज की बात का विषय होगा तंबाकू छोड़ने के उपाय और सहायता सेवाएं। होगा क्रम गुलदस्ता, आज का इतिहास, कल के आकर्षण और अमृतवाणी। आइए इसी के साथ जान लेते हैं आज की अमृतवाणी। मानव जीवन में ज्ञान ही असली शक्ति है जो जीवन के हर अंधेरे को मिटाती है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। श्रोताओं, ये तो थी आज की अमृतवाणी। आइए अब सुनवाते हैं आपको आज का अगला गीत, जिसे सुनने की फरमाइश की है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल। श्रोताओं, समय के आगे बेबस आपकी अपनी रेडियो मित्र पूनम वर्मा। सुनवाना तो हम चाहते हैं अपने श्रोताओं को ढेर सारे गीत, और खुद भी सुनना चाहते हैं उनकी पसंद के सारे गीत, लेकिन वही घड़ी का इशारा, बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं। अब इजाज़त दीजिए आपकी अपनी रेडियो मित्र पूनम वर्मा को। आज का सफ़र बस इतना ही, नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजे हैं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं लोक धुनों पर सजा कार्यक्रम माटी के स्वर।

0: कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में आपने सुना राजेंद्र विश्वकर्मा और शकुंतला यादव की आवाजों में ये लोकगीत।
1: छिंदवाड़ा में होने जा रहा है छिंदवाड़ा का सबसे पहला भजन जिमिंग कॉन्सर्ट, छिंदवाड़ा का अपना पहला न्यूज़पेपर, जबलपुर एक्सप्रेस अपने 35 साल पूरे होने पर लेकर आ रहा है एक ऐसा म्यूजिकल भक्ति अनुभव जो आज तक छिंदवाड़ा में कभी नहीं हुआ। 30 मई 2026 शाम 7 बजे से दशहरा मैदान पोला ग्राउंड छिंदवाड़ा। इस इवेंट में एंट्री है बिल्कुल फ्री। जबलपुर एक्सप्रेस छिंदवाड़ा का अपना न्यूज़पेपर।

0: श्रोताओ, इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र और सुन रहे हैं कार्यक्रम माटी के स्वर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में

0: अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: कार्यक्रम माटी के स्वर में लीजिए अब सुनिए श्रीमती समीक्षा दुबे और साथियों की आवाजों में ये गौणी गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र और सुन रहे हैं कार्यक्रम माटी के स्वर। हम आपको बता दें, शाम 6:45 पर हम आपको सुनवाएंगे सब्जी मंडी गोरैया जिला छिंदवाड़ा में प्राकृतिक जैविक हाट बाजार के 25 सप्ताह पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।

AIR at 90. कार्यक्रम माटी के स्वर में चलिए अब आपको सुनवाते हैं रामचरण अहिरवार की आवाज में बुंदेली गीत।

0: Akashwadi at 90.
1: कार्यक्रम माटी के स्वर की अंतिम प्रस्तुति में चलिए अब आपको सुनवाते हैं हास्य गीत। आवाज है मुन्ना लाल अहिरवार की।

श्रोताओं, इसी के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम माटी के स्वर। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आप सुन रहे थे मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत। संगीत था कल्याण जी, आनंद जी का, वो लिखे थे अनजान ने।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में काली चरण फिल्म का गीत। संगीत कल्याण जी आनंद जी का, बोल हैं इंद्रजीत सिंह तुलसी के।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज में, बोल है साहिर की, संगीत है जयदेव का।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही संपन्न होता है फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सब्जी मंडी गुरैया जिला छिंदवाड़ा में प्राकृतिक जैविक हाट बाजार के 25 सप्ताह पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।

0: सभी श्रोताओं को रजनीश शर्मा का नमस्कार। प्रस्तुत है आज ग्राम गुरैया मार्ग पर स्थित सब्जी मंडी जिला छिंदवाड़ा में जिला प्रशासन छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित जैविक प्राकृतिक हाट बाजार के सफलतापूर्वक 25 सप्ताह पूर्ण होने पर आयोजित हुए कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। आज प्रातः 11 बजे गुरैया मार्ग पर स्थित थोक सब्जी मंडी जिला छिंदवाड़ा में जिला प्रशासन छिंदवाड़ा द्वारा साप्ताहिक जैविक प्राकृतिक हाट बाजार के 25 सप्ताह पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के कृषि अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। किसान भाइयों ने भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस जैविक एवं प्राकृतिक हाट बाजार में किसान भाइयों ने अपने अपने जैविक और प्राकृतिक उत्पादों की दुकान लगाकर इसका सफलतापूर्वक विक्रय भी किया और उपभोक्ताओं ने बड़ी संख्या में इन उत्पादों की खरीदी की। उपभोक्ताओं में इन जैविक उत्पादों की खरीदी को लेकर काफी उत्साह देखा गया। उप संचालक कृषि जिला छिंदवाड़ा श्री जितेंद्र सिंह ने इस आयोजन पर आकाशवाणी छिंदवाड़ा से बात करते हुए कहा,
1: मैं अपने छिंदवाड़ा जिले में जो हमारा शासन के निर्देशानुसार साप्ताहिक जैविक प्राकृतिक हाट बाजार चालू हुआ है गुरैया सब्जी मंडी में, जो प्रत्येक सप्ताह शनिवार को लगता है, सुबह 9 बजे से लेके पूरे दिन रहता है। आज 25वां सप्ताह पूरा हुआ है और इस उपलक्ष्य में पूरी कृषि विभाग की और एपीसी ग्रुप की, उद्यान की, पशुपालन और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक पूरी टीम यहाँ आई है। हम पूरे किसान भाइयों को जो यहाँ पर हैं, लगभग 30 किसान हमारे रेगुलर आ रहे हैं 25 सप्ताह से, तो उसकी

0: बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मेरी एक शुभकामना सारे शहरवासियों के लिए है कि पहली बार जिले में शुद्ध अनाज, शुद्ध सब्जी, शुद्ध फल और शुद्ध समस्त प्रकार के खाने योग्य उत्पाद यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त कर रहे हैं। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, माननीय प्रभारी मंत्री जी ने इसको शुभारम्भ किया था और तब से लेके अब तक ये लगातार इसमें किस लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है और ये शहरवासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही हमारे जो प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं उनके लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा, उन्हें अच्छी खासी लाभ प्राप्त हो रही है।
1: उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग छिंदवाड़ा डॉक्टर HGS पक्षवान ने इस आयोजन पर अपने विचार रखे।
2: सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर पक्षवार, उप संचालक पशुपालन डेयरी विभाग। जैसा कि प्राकृतिक खेती की चर्चा अपन करें तो बगैर पशुपालन के प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती, तो मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि दो दो साहिवाल या गिर नस्ल की गाय जरूर पालें। हम देख रहे हैं आज सब्जी मंडी में यहाँ पे मतलब मठा, दही और यहाँ पे दूध लेके मतलब ए टू मिल्क, घी, ये सब लेके आए हैं यहाँ पे, जब सब लोग बेच रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती बगैर पशुपालन संभव नहीं है, तो मैं अनुरोध करूंगा सभी किसानों से कि दो गाय अपने साहिवाल और अपने गिर जरूर पालें, जिससे कि प्राकृतिक खेती की जाए। और हमको जितनी भी जो सब्जियां हैं यहाँ पे, जो प्राकृतिक सब्जियां हैं यहाँ पे, माननीय प्रभारी मंत्री जी ने यहाँ पे इसका ओपनिंग की थी और ये बहुत अच्छा चल रहा है। मैं भी हर सैटरडे को आता हूँ और यहाँ से मतलब जो प्राकृतिक सब्जियां लेके जाता हूँ, तो सब्जियों में जो किसान भाई हैं वो स्प्रे ज़्यादा करते हैं, तो स्प्रे ना करें, उसके लिए गाय के जो गोबर है और उससे जो मूत्र है उससे दवाइयाँ बनाएं और उसको फसल पे स्प्रे करें, तो इससे क्या होगा कि मतलब जो सब्जियाँ जो उत्पाद होगा वो प्राकृतिक सब्जी उत्पाद होगी और उसमें जो खाने में कोई नुकसान नहीं होगा। अभी प्राय देखने में आ रहा है कि जैसे गोभी चीसने वाली दवाई है, टमाटर चीसने वाली दवाई है, जब उसमें इल्ली मर जाती है तो वो सब्जी फिर अपन कितनी बॉयल कर लें लेकिन उसको खाने में नुकसान होता है, तो उससे लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जैसे डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, किडनी फेल्यूर है, बहुत सारी दवाइयां हैं, नुकसान होते हैं किसानों को। तो मैं पशुपालन विभाग की ओर से यही सभी पशुपालकों से और किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो देसी नस्ल की गाय पालें और उससे जो है दवाइयाँ बनाएं और उसको पूरे जो यहाँ पे जैसे ये अपने अपने साइड में खड़े हुए हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मतलब यहाँ पे सब्जी भाजी है, पूरी प्राकृतिक सब्जी है और यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई और मतलब यहाँ पे व्यापारी लोग आए हुए हैं और सब्जियाँ खरीद रहे हैं और एक अच्छी मतलब प्राकृतिक सब्जी यहाँ पे मिल रही है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने छिंदवाड़ा जिले के लिए। जैविक हाट बाजार में यहाँ 25 सप्ताह हो गए हैं और इसमें जो है जो सब्जी विक्रेता है उनका सम्मान किया जाता है, अच्छे मतलब सब्जी विक्रेता है उनका सम्मान भी यहाँ पे किया जा रहा है और हमारे साथ सभी विभाग के लोग उपस्थित हैं, DDA साहब एग्रीकल्चर, DD हॉर्टिकल्चर वीके साहब और वेटनरी फिशरी और अभी DIG साहब भी आए थे, तो हर अधिकारी यहाँ पे सब्जी लेके जाते हैं और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सैटरडे को यहाँ पे आएं और जो गुरैया सब्जी मंडी में जो है यहाँ से सब्जियाँ ले जाएं जो प्राकृतिक सब्जी।
1: उप संचालक उद्यान की जिला छिंदवाड़ा ML उइके, उन्होंने आकाशवाणी छिंदवाड़ा से चर्चा करते हुए कहा।
3: नमस्कार किसान भाइयों, मैं ML उइके उप संचालक उद्यान छिंदवाड़ा पानूना। आज जो जैविक हाट बाजार सब्जी मंडी गोरैया में जो लगती है वो 25वें सप्ताह में है, इसके माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और आज के समय में जैविक उत्पाद सब्जी भाजी की आवश्यकता है क्योंकि तरह तरह के रोग बीमारियां हो रही हैं। इससे मैं आप सभी से आग्रह है कि जैविक और प्राकृतिक खेती के उत्पादों का उपयोग करें और स्वस्थ रहें। आज जो 25वें सप्ताह में यहां पे जैविक हाट में आने वाले उद्यमियों को जैविक उत्पाद के उत्पाद से संबंधित यहाँ पर सर्टिफिकेट वितरण किया गया है ताकि उनको भविष्य में प्रोत्साहन मिलता रहे और जैविक खेती को बढ़ावा मिलता रहे, इसके उद्देश्य से आज यहाँ पे एक सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम भी रखा गया था जिसमें एग्रीकल्चर से अलाइट संबंधित सभी विभाग, एग्रीकल्चर, उद्यान की, पशुपालन, सभी सम्मिलित रूप से उपस्थित हुए और जिले के सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि अपने जैविक उत्पाद को यहाँ पर लाके और अच्छे आमदनी और अच्छे रेट पे आप अपना सब्जी उत्पाद, अनाज, गुड़, सभी प्रकार के उत्पाद यहाँ पे विक्रय किए जा रहे हैं और आप अधिक से अधिक यहाँ पे भाग लेकर के आप अपने उत्पाद को यहाँ विक्रय कर सकते हैं।
1: प्राकृतिक एवं जैविक हाट बाजार के सफलतापूर्वक 25 सप्ताह पूरे होने पर वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा डॉक्टर RK झाड़े ने आकाशवाणी छिंदवाड़ा से बात करते हुए कहा।
4: आप सभी को नमस्कार, ये बहुत ही एक बढ़िया अवसर है जिसमें आज यहाँ पर 25 सप्ताह पूरे हो चुके हैं जिसमें जैविक एवं प्राकृतिक हाट बाजार यहाँ पर लगाया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है।

0: छोटे किसान भाइयों के लिए जो प्राकृतिक एवं जैविक खेती कर रहे हैं और उससे अपना उत्पाद उत्पादित कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये किसान भाई अपने उत्पाद को यहाँ पर बेच सकते हैं। सभी जो छिंदवाड़ा जिले की जनता, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आज के समय में जब कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल और रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करके जो उत्पाद आपके पास में आ रहा है, उससे ये अच्छा होगा कि आज के समय में ये प्राकृतिक और जैविक हाट बाजार जो लगा हुआ है, यहाँ पर शुद्ध और देशी सब्जियाँ जो जैविक और प्राकृतिक पद्धति से हमारे किसान भाई उगा रहे हैं, इनको आप खरीदें और इससे इनका भी मनोबल बढ़ेगा और भी हमारे किसान भाई जो इनको देख करके ये प्रेरित होंगे कि हमको जैविक एवं प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है।
1: प्राकृतिक एवं जैविक हाट बाजार में अपने उत्पादों का विक्रय करने आई एक महिला से हमने बात की।
2: जी, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम अनुराधा गाटरे है सर। मैं ग्राम पालाखेड़ से हूँ, ब्लॉक मोखेड़ से, जिला छिंदवाड़ा।
2: आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कि साप्ताहिक जो हाट बाजार लगा है प्राकृतिक और जैविक उत्पादों का, ये जो बाजार है, तो आप कब से इसमें दुकान लगा रही हैं अपनी?
3: सर ये मेरा 25वां बाजार है
2: जी।
3: इसमें सर हम कंटिन्यू आए हैं। इसमें हम लोगों के राजा भोज एक FPO है, उसके तहत हमारे यहाँ सारी चीज, पापड़, चिप्स, चुकंदर पाउडर, इसकी सारी चीजों की, चावल की पैकिंग होती है। और हमारे यहाँ बाकी के जो किसान हैं उनके यहाँ हम जैविक प्राकृतिक खेती करवाते हैं। उससे हमारे यहाँ लौकी, गमार फल्ली, भट्टे, टमाटर, ये सारी चीज़ें हम उनके यहाँ से और हमारे खुद के यहाँ से ये सारी चीज़ें मार्केट में लेके आते हैं।
2: और ये जो कुछ पैकिंग के उत्पाद दिख रहे हैं, ये कौन कौन से हैं?
3: सर ये चावल के पापड़ है और मक्के के पापड़ है, चुकंदर की चिप्स है, चुकंदर का पाउडर है, चावल है।
2: अच्छा, सफलतापूर्वक आपको काम में अपने अच्छा लग रहा है?
3: बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमें जो रेट नहीं मिल पाता था गाँव में, वो रेट हमें यहाँ एक मंच मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा एक जरिया भी बन गया है सर जीने का, हमारी इनकम भी चालू है और हमें यहाँ मंचों पे बहुत अच्छा लग रहा है। ये योजना बहुत अच्छी है और ये DDA सर के माध्यम से हमारे यहाँ आई है। हमारा इसमें हमेशा सपोर्ट रहेगा और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि यहाँ कंटिन्यू मार्केट लगे और हमें मिले।
1: जैविक एवं प्राकृतिक हाट बाजार में अपनी वस्तुओं और उत्पादों का विक्रय करने आए इन किसान भाइयों से भी हमने चर्चा की।
2: भैया, क्या नाम है आपका?
4: विरन लाल यादव।
2: जो जैविक और प्राकृतिक हाट बाजार हमारे छिंदवाड़ा की सब्जी मंडी में लगाया जा रहा है, कब से आप यहाँ अपनी दुकान लगा रहे हैं?
4: मैं दिसंबर से आ रहा हूँ, अभी 25 सप्ताह हो चुके हैं।
2: जी जी,
4: और यहाँ पर जैविक उत्पाद लेकर आता हूँ मैं, जैसे मोरिंगा पाउडर है, अर्जुन पाउडर है, नीम पाउडर है और टमाटर वगैरह है, सब्जी में भी लेकर आता हूँ। ये यहाँ पर जैविक हाट बाजार से लोगों को स्वास्थ्य के लिए, जो आज रासायनिक लोग खा रहे हैं उससे, मतलब ये शुद्ध, मतलब यहाँ पर लोगों को मिलेगा।
2: कहना चाहिए कि
4: हल्दी भी है, मिर्च पाउडर है, ये सब ऑर्गेनिक तरीके से, मतलब यहाँ पे पाउडर तैयार करके और लोगों को यहाँ पे देता हूँ।
2: तो क्या लाभ है जब से आप ये दुकान लगा रहे हैं?
4: ये यहाँ पे ये लाभ है कि देखो, यहाँ पे ऑर्गेनिक लगाने से, एक तो हमारा मिट्टी है वो भी एक ऑर्गेनिक तरीके से ठीक रहती है, और दूसरे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इससे हमको आर्थिक लाभ भी होता है, हमारी उपज का अच्छा मूल्य मिलता है। तो मैं सभी किसानों से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग जैविक हाट बाजार आना चाहिए और जैविक तरीके से खेती अपनाएं और अपनी भूमि को बचाएं और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इसका लाभ लें।
2: भैया, आप भी जैविक हाट बाजार में आज दुकान लगाने आए हैं?
5: जी, मैं आज सौंसर से आया हूँ।
2: क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम मोरेश्वर दांडवे, सौंसर से ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ। एक काला आलू लगाया है, ब्लैक पोटैटो, और हल्दी लगी हुई है अपने यहाँ पे लाका डोना, जिसका कर्क्यूमिन 8.5% होता है, और काली हल्दी भी लगी है, काला अदरक भी लगा हुआ है, और गेहूँ लगाया था हमने सोना मोती वेराइटी, जिसमें ग्लूटीन नहीं की मात्रा कम है, और जो काला आलू विशेषता इसमें शुगर फ्री है, स्टार्च कम होता है और सेहत शुगर पेशेंट के लिए एकदम कारगर उपाय है।
2: तो ये जो काला आलू की और क्या खासियत होती है?
5: इसमें स्टार्च कम होता है, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर रहता है ये, और जैसा अपन ने भी इसको खाए तो शुगर नहीं होता इससे, मतलब शुगर क्रिएट नहीं करता है। इसको डेली यूज करने से शुगर पेशेंट को भी इसमें आराम मिला है, उनकी टेबलेट बंद हुई है, तो काले आलू की ये फायदे है जी।
2: तो आप इसकी खेती करते हैं?
5: हाँ जी, मैं इसकी खेती करता हूँ। इसका बीज मैंने लखनऊ से लाया था और अपने संसार में ऑर्गेनिक पद्धति से इसको उगाया है, और इसका बाजार, इसका मार्केटिंग देखो, अपना जैविक हाट बाजार छिंदवाड़ा, एक पांडुरना और सौंसर में लोकल बिकता है, और एक शासन प्रशासन का धन्यवाद करना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक के लिए हमको उनने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है छिंदवाड़ा में और पांडुरना में।
1: अपने प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के विक्रय के लिए किसान भाइयों को सर्टिफिकेट प्रदान कर इस आयोजन का समापन किया गया। तो ये थी आज गुरैया मार्ग स्थित सब्जी मंडी जिला छिंदवाड़ा में जिला प्रशासन छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित जैविक प्राकृतिक हाट बाजार के 25 सप्ताह पूर्ण होने पर आयोजित हुए

0: अभी आप सुन रहे थे सब्जी मंडी गुरैया जिला छिंदवाड़ा में प्राकृतिक जैविक हाट बाजार की 25 सप्ताह पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।
1: मुझे अपनी मम्मी के जन्मदिन पर आकाशवाणी से बधाई देना है, क्या करूं?
2: नो टेंशन, इसके लिए कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क करो। और हाँ, अगर शादी या शादी की सालगिरह, त्योहारों की शुभकामना या किसी विशेष अवसरों पर किसी को बधाई देना चाहते हो तो भी आप आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क कर सकते हैं।
1: अच्छा, मेरे चाचा बर्तनों की दुकान खोल रहे हैं, उसके लिए भी?
2: हाँ हाँ, अपने प्रतिष्ठान के शुभारंभ पर भी आप बधाई दे सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं। तो विज्ञापन के लिए संपर्क करें
1: कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा।
2: हाँ,
0: हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में डीके शिव कुमार को नया नेता चुना गया है। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। विधायकों ने उन्हें अपना नेता और अगला मुख्यमंत्री चुना है। श्री शिव कुमार को नेता चुने जाने के प्रस्ताव को पारित करने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक में पार्टी विधायकों को आधिकारिक रूप से इसकी सूचना दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांव को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांव को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार है। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम ITI क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल नेपॉन स्टील इंडिया नामक एक

0: निजी कंपनी के निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित और परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।

0: उद्योग प्रबंधित और परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए जुड़ते हैं संदेशों से।

0: हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार भोपाल से।
1: नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। खेत बचाओ अभियान युद्ध स्तर पर किया जाएगा संचालित, कहा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है सेना। और मानसून ने पकड़ी रफ्तार, इधर प्रदेश के मौसम ने बदली करवट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की सक्रिय भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ये बातें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान कही।
4: खेत बचाओ अभियान गांव गांव तक पहुंचने का हमारा प्रयास होगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधिकारी, हमारे वैज्ञानिक, कृषि विभाग का एक्सटेंशन का अमला, हमारे प्रगतिशील किसान, हमारे KVK एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथी, ये सब के सब जुटेंगे। और इसी दौरान एक तरफ हम बेहतर और संतुलित खेती पर चर्चा करेंगे, वहीं कई योजनाओं का लाभ भी, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो हम बना के वहां देने का प्रयास करेंगे, मैकेनाइजेशन के यंत्र बटना है तो उसमें बट सकते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड अगर देना है तो उसमें दिए जा सकते हैं, तो जितनी चीजें व्यवहारिक रूप से हो सकती है उसमें देने का प्रयास करेंगे। ये खेत बचाओ अभियान 1 से लेकर 30 जून तक

0: पैमाने पर चलेगा।
1: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि गोमती नदी के नाम पर बने आईएनएस गोमती युद्धपोत के कारण लखनऊ का नौसेना से पुराना नाता रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस निर्माण के जरिए देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहा है।
2: 2014 तक भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वह बहुत कम हुआ करता था। हम केवल 1,000 करोड़ रुपए से भी कम के हथियार और साजो सामान दुनिया को बेच पाते थे, लेकिन आज वही बढ़कर हम लगभग 40,000 करोड़ रुपए के सामान दुनिया के दूसरे देशों को दे रहे हैं। इस तरह के अनेक उपलब्धियां रक्षा क्षेत्र में हम लोगों ने हासिल की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन का गतिरोध एक हफ्ते में दूर कर लिया गया है। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, फिलहाल संघर्ष विराम जैसी स्थिति है। जरूरत पड़ी तो तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने एक मानक तय कर दिया है जो कि भारत किसी भी उकसावे पर कैसे जवाब देता है ये जाहिर कराता है। ये बातें सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड के दौरान कही। इस वर्ष रक्षा अकादमी ने कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि हमारे युवा देश की आशा और सामर्थ्य हैं, उनके विचार और चरित्र ही देश का भविष्य तय करेंगे। जरूरी है कि हमारे युवा जो भी काम करें उसमें वे उत्कृष्टता और संवेदना पर विशेष बल दें। राज्यपाल आज रविन्द्र भवन के हंस ध्वनि सभागार में आयोजित सिस्टेक ग्लोरी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन में संवेदना का भाव ही सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है। ममता और करुणा का मोल पैसों से कहीं ज्यादा हुआ करता है, इसलिए भावी जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए कभी भी उन लोगों को नहीं भूलें जिन्होंने आपका सहयोग किया है। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 में उत्साहजनक बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में तीव्र प्रगति के आंकड़े बताए गए हैं। ये सर्वेक्षण वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया, जिसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवार शामिल हुए। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव वर्ष 2019 से वर्ष 2021 में 88.6% से बढ़कर 2023-24 में 90.6% हो गए हैं। बात मौसम की करते हैं। बारिश की आशा लगाए नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। मानसून ने एक बार फिर से गति पकड़ ली है। अगले 4 से 5 दिन के भीतर केरलम और तमिलनाडु में मानसून के पहुंचने के लिए वातावरण की परिस्थितियां तेजी से अनुकूल हो रहे हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तथा लक्षद्वीप और कन्याकुमारी क्षेत्र के कुछ इलाकों में मानसून आगे बढ़ रहा है। इधर नौतपा के बीच मध्य प्रदेश के मौसम ने अचानक करवट बदली है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है, जबकि शेष इलाकों में खासी गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में तो रातें भी बहुत गर्म रही है। इस दौरान नरसिंहपुर का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसी क्रम में राजगढ़ में 42, खरगोन में 41.6, भोपाल में 40 और इंदौर में 38.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड

क्षेत्र दमोह छतरपुर टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आधे से अधिक प्रदेश में आंधी तूफान की परिस्थिति भी निर्मित हो सकती है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। मंडला जिले में आज वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीव अनुश्रवण कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कान्हा टाइगर रिजर्व में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। विधायक बैतूल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने आज नगर पालिका बैतूल अंतर्गत विभिन्न विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। शहडोल जिले में इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी लक्ष्य से अधिक हुई है। 25,000 मीट्रिक गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इस साल 29,244 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। सीहोर जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत अब तक 2,555 चेक डैम निर्माण, 10 तालाब निर्माण, 17 सोसर निर्माण और 4 तालाब गहरीकरण जैसे कार्य लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण किए गए हैं। नीमच जिला चिकित्सालय के रेडक्रॉस सभागार में वृद्धजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। झाबुआ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी एस बघेल ने आज जिला अस्पताल झाबुआ के ब्लड स्टोरेज सेंटर का निरीक्षण किया और आमजन को रक्तदान के महत्व की जानकारी दी। छिंदवाड़ा जिले में स्कूल छोड़ चुके या नियमित रूप से स्कूल नहीं जा रहे बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जाएंगे। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड खंडवा द्वारा वर्ष 2026-27 में कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत जिले के बेरोजगार युवक और युवतियों को विभिन्न व्यवसायों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। और हार्निया रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा समय पर उपचार के लिए इंदौर में 2 दिवसीय निःशुल्क हार्निया जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। खेत बचाओ अभियान युद्ध स्तर पर किया जाएगा संचालित, कहा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है सेना और मानसून ने पकड़ी है रफ्तार, इधर प्रदेश के मौसम ने बदली करवट। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। अभी दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में।

0: सभी किसान भाइयों को रजनीश भैया
1: और संतु भैया की
0: राम राम, राम राम।
1: और रजनीश भैया आज कौन सा दिन है
0: भैया? आज महीने का अंतिम शनिवार है।
1: अरे वाह, और अंतिम शनिवार को कौन सा कार्यक्रम होता है?
0: आकाशवाणी गांव में।
1: आज कौन से ग्राम चल रहा है अपने को
0: भैया? आज हम जा रहे हैं ग्राम बींजावाड़ा।
1: बींजावाड़ा, अच्छा ये कपुर्दा के आगे पड़ता है?
0: कपुर्दा के आगे पड़ता है भैया। और यहाँ से कितनी दूरी है इसकी?
1: इसकी कम से कम 55 से 60 किलोमीटर है भाई।
0: तो भैया चलो चलते हैं वहाँ पर, कपुर्दा माता के रास्ते में दर्शन भी कर लेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे। और देखो रास्ते में दर्शन तो करेंगे, आगे और भी अपनी बातें जो अपन करते चलेंगे, अपने किसानों से मिलेंगे। तो अब गाड़ी आपकी कर लो तैयार।
0: ठीक है भैया, मैं गाड़ी तैयार कर रहा हूँ, आप जरा अच्छे से पकड़ के बैठना पीछे।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो चलें।
0: बिल्कुल चलते हैं ग्राम
1: बींजावाड़ा।

0: रजनीश भैया
1: हाँ संतु भैया,
0: देखिए हम पहुंच चुके हैं ग्राम
1: भींजावाड़ा
0: और यहाँ पे देखो सामुदायिक भवन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है
1: भैया? दिख रहा है सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत भींजावाड़ा।
0: तो चलिए अब ग्राम का भ्रमण करना, हमें जितने भी हमें किसान मिलेंगे सब उनसे बात करेंगे और गाँव के विषय में बात करेंगे, हम सरपंच सचिव से मिलेंगे। और वैसे रजनीश भैया यहाँ के किसान जो मैंने सुना हूँ ना बहुत लगनशील है, मेहनती है और बहुत बढ़िया से अच्छे सुंदर तरीके से खेती करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अभी देखो चल रहे हैं अपन, तो ये देखिए सामने जो खेत दिख रहा है मुझे भैया बड़े अप टू डेट दिख रहे हैं। चलें इनसे बात कर लें क्या?
1: चलिए भैया बिल्कुल से बात करते हैं।
0: चलो चलते हैं भैया। राम राम।
2: राम राम भैया।
0: क्या नाम भैया आपका?
2: मेरा नाम राम तिवारी है और मैं ग्राम भींजावाड़ा का रहने वाला हूँ।
0: बिल्कुल, हम ग्राम भींजावाड़ा ही में आपके यहाँ पे हैं। ये खेती जो हम देख रहे हैं आपकी छे?
2: जी जी।
0: कितने
2: जी।
0: एकड़ है?
2: हमारे 30 एकड़ जमीन है।
0: 30 एकड़ आपके पास खेती है। कौन कौन सी फसल 12 महीने चलती है आपकी?
2: देखिए जी, हमारे यहाँ अब जैसे गर्मी के बाद जो प्रथम फसल आती है उसमें मक्का मुख्यतः बोया जाता है, उसके बाद हम सोयाबीन भी बोते हैं, कुछ जगह पे धान भी लगाना चालू किए हैं 2-3 सालों से, कुछ मक्का कुछ सोयाबीन, ऐसी बुनी हमारे गांव में होती है। गेहूं हम बोते हैं रबी की फसल में, उसके बाद मूंग भी बोते हैं।
0: मूंग गर्मी की फसल होती है, हमारी जायद की फसल जिसे कहते हैं,
2: जायद की फसल में मूंग भी बोते हैं।
0: कैसा रहा इस बार उत्पादन आपके फसलों का?
2: इस वर्ष उत्पादन थोड़ा वीक है मूंग का, लेकिन गेहूं का ठीक ठाक रहा।
0: अभी जायद में हम कदम रखे, जायद एंडिंग में चल रहा है। अब खरीफ का जो मौसम आएगा बारिश का, उसमें फसल कौन सी लेने वाले हैं आप?
2: बारिश की फसल हम लेने वाले हैं सोयाबीन, मुख्यतः बोया जाएगा क्योंकि हमारा मक्का कुछ सालों से पैदावार उत्पादन कम हुआ है, तो इसलिए हम अब सोयाबीन बोने की तैयारी में हैं और इसके बाद धान भी बोएंगे थोड़े कुछ खेत में।
1: तो भैया पूरे 30 एकड़ में क्या क्या लगाएंगे अब खरीफ में?
2: खरीफ में भैया अभी जैसे 10 एकड़ में हम करीब मक्का लगाएंगे, 15 एकड़ में सोयाबीन और उसके बाद जो बची जगह रहेगी उसमें धान बोएंगे।
0: और राम भैया आप और कुछ बताना चाहते हैं यहाँ की प्रसिद्धि के बारे में?
2: जी, हमारा गांव शुरू से जो है बहुत ही प्रबुद्ध लोगों का गांव रहा। पहले हमारे पिताजी यहाँ पे पढ़ लिख के आए, उसके बाद जब राजनीति में इंक्लूड हुए तो पहली बार वो यहाँ जनपद से चुन के गए और जनपद उपाध्यक्ष रहे। माँ जो हमारी है वो जब पहली बार पंचायती राज की स्थापना हुई तो प्रथम बार में वो जिला पंचायत अध्यक्ष छिंदवाड़ा की यहाँ से चुनी गई।
0: अच्छा,
2: जिला पंचायत अध्यक्ष
0: जी क्या नाम से है?
2: श्रीमती किरण तिवारी।
0: अच्छा,
2: उनका नाम और जो बिल्डिंग है आज भी वहाँ पे जो पत्थर है उसमें उनका नाम डला हुआ है।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, धन्यवाद। चलिए एक और खेत में हम चलते हैं। भैया राम राम।
3: अरे जयराम जी की जयराम जी।
0: क्या नाम है सबसे पहले? नाम
3: मेरा दीपक किशोर तिवारी।
0: बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी से। आज हम आप ही के ग्राम में आए हैं और ये कार्यक्रम जो है हमारा आकाशवाणी में प्रस्तुत होने वाला है। खेती बाड़ी ये आपकी छे?
3: जी जी।
0: कितने एकड़ है खेती?
3: 60 एकड़।
0: 60 एकड़ है
3: जी।
0: क्या बात है, देखो भैया
1: यार रकबे सबके पास काफी बड़े क्षेत्र में खेती। हाँ। के अभी जो पहले भैया मिले तो उनकी 30 एकड़ है, इनकी 60 एकड़ है, तो मतलब काफी अच्छे रकबा यहाँ पर खेती बाड़ी का है, मतलब जो कृषि भूमि है उसका काफी विस्तार है यहाँ पर।
0: विस्तार है यहाँ पे। कौन कौन सी फसल जो है अपन ले पाते हैं साल भर में?
3: रबी में गेहूं और सरसों की फसल लेते हैं हम हमारे यहाँ पर, गर्मी में मूंग उड़दा।
0: खरीफ का मौसम बन रहा है, बारिश होने वाली 15 जून के बाद मानसून आ जाता है, तो इसमें क्या तैयारी आप?
3: इसमें अभी हमने खेत की बखरानी अखरानी करके जुताई उताई करके पेहटा मार के उसको समतल करके और बस बोने की तैयारी में है कि मानसून मेहरबान हो तो हम मतलब हमारा कृषि कार्य आगे बढ़ाएं।
0: अक्सर करके देखा जाता है जो आदान सामग्रियां होती है जिसे हम एकत्रित करते हैं अपनी फसल के लिए, वो पहले से लोग तैयारी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आगे फिर नहीं मिली है, नहीं मिली कुछ खाद मिल रही नहीं मिल रही है, ऐसे बहुत जगह सुनने में आता है। तो आदान सामग्री जो है वो आपने एकत्रित कर ली है क्या?
3: हाँ वो सब कर लिए। अभी सरकारी तो बहुत बढ़िया चल रही है
0: जी,
3: यानी फर्टिलाइजर अपन स्लॉट बुक करके और वो मिल जाता है, तो प्राय जो भी किसान है और जिनकी जमीन है तो उन्होंने स्लॉट बुक करके और अधिकांश किसानों ने ले आए हैं और जो नहीं ला पाए हैं वो भी अभी बोनी के पहले यानी 15 जून के पहले सब एकत्रित हो जाएगी।
1: सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है उसके कारण आदान सामग्रियों की प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं जाए?
3: नहीं नहीं, उसमें भ्रष्टाचार पे लगाम मिली है। दूसरी चीज, अतिरिक्त रेट लेकर के अधिक रेट लेकर के किसानों को जो शोषण किया जाता था उससे भी मुक्ति मिली है।
0: आप तो प्रगतिशील कृषक हैं, बड़ी खेती है। जो किसान हमारे छोटा छोटे किसान हैं 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़, वो अपनी खेती में अधिक उत्पादन कैसे ले लें, क्या बताएंगे आप उनको, क्या कहना चाहेंगे?
3: वैज्ञानिकों ने, मैं अभी टेलीविजन देख रहा था तो उसमें उन्होंने किसान को सजेस्ट किया है कि हम आगामी समय में यानी कम उम्र की फसल बोएं ताकि मतलब उसका प्रभाव से हम वंचित रह सकें और हमको उसका नुकसान न उठाए।

0: आना पड़े।
1: चलिए दीपक भैया, आपने बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी जानकारी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई है।
2: बिल्कुल भैया, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अगर अल नीनो का असर आता है तो कम अवधि की फसलें बोएं ताकि जल्दी बोएं और जल्दी प्राप्त कर लें।
1: चलिए, आपने जो समय दिया इसके लिए आपको हमारी राम राम।
0: बहुत बहुत जयराम जी की, जयराम जी की।
1: रजनीश भैया।
2: हाँ संतु भैया,
1: आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए कितने सारे पशु बंधे हुए हैं, और ये पशु बंधे हुए हैं तो चलिए भाई, पशुपालन भी तो कृषि का एक अंग होता है।
2: बिल्कुल भैया, चोली दामन का साथ है, कृषि और पशुपालन का एक दूसरे के साथ ही है।
1: तो ये भैया चले अपन घर में, पशुपालन का भी काम है तो पहले अपन से बात कर लेते हैं। भैया राम राम।
3: राम राम।
1: क्या नाम है आपका?
3: गिरजानंदन सनोडिया।
1: गिरजानंदन भैया, जो हम पशु देख रहे हैं ये आप ही के हैं
3: जी?
1: किस प्रकार देख रेख करते हैं आप इनकी? अभी गर्मी का मौसम चला,
3: गर्मियों में विशेष तौर पर पशुओं पे ध्यान देना पड़ता है क्योंकि बार बार पानी की आवश्यकता जैसे मनुष्य को होती है वैसे ही पशुओं को भी होती है। तो हम कम से कम 4 से 5 बार उनको पानी की व्यवस्था करते हैं। इन दिनों पे जो हरा चारा है वो नहीं मिलता है, तो हमने खेतों में क्या काम करके रखे हैं, कुछ बरसी, कुछ चरी, बहुत भर्रू जिसको हमारे इधर घास होती है, वो हमने जो मूंग में है उसको भी हमने नाश नहीं किया, मतलब दवाई सींच के, बल्कि उसको भी लगे रहने दिया। हम उसको लेके आते हैं और बकायदा काटते हैं, उस पर उतनी ही मात्रा में भूसा और आटा मिलाते हैं ताकि हम गर्मी में बाहर ना ले जाए। साथ में हम ये काम करते हैं कि उनको छायादार जगह में बांधे। इस प्रकार से हम उनको प्रयास करते हैं अपने टाइप का रखने का ताकि उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मैं आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप गौशालाओं में एक गाय पे 40 रुपए का अनुदान दे रहे हैं, ऐसे ही व्यवस्था यदि आप कर दे कि प्रत्येक घर में जिन पशुपालकों के पास गाय है, बछड़े हैं, उन पे भी यदि आप व्यक्तिगत तौर पे दे दे तो और भी अच्छा रहेगा, लोग पशुओं को नहीं छोड़े, ये मेरा निवेदन है गवर्नमेंट।
1: तो चलिए, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए इतनी अच्छी बातें कही है, आपका संदेश भी ये पहुंच रहा है, आपको हमारी राम राम।
3: जी आपको भी, पूरी टीम को आपको बहुत बहुत राम राम।
1: चलिए हम आगे चल रहे हैं और एक खेत में और चल रहे हैं और फिर बात करेंगे यहाँ पे हमारे किसान भाई से, ठीक है? भैया जी राम राम।
4: जय श्री राम।
1: क्या नाम है भैया आपका?
4: अशोक साहू।
1: अशोक साहू जी, ये आप ही का खेत है
4: जी?
1: कितने एकड़ खेती आपके पास?
4: 35 एकड़।
1: 35 एकड़
4: जी।
1: इस 35 एकड़ खेती में पूरी जमीन खेती लायक?
4: जी पूरी खेती लायक,
1: उपजाऊ जमीन। तो कौन कौन सी फसल आप लेते हैं?
4: 20 एकड़ में गन्ना लेता हूँ, बचा जो 15 एकड़ है उसमें अभी मक्का और बाद में गेहूँ।
1: जब आप गन्ने की फसल लेते हैं तो गन्ने की फसल थोड़ा सा लंबे समय की रहती है
4: जी,
1: तो उसकी कैसे तैयारी करते हैं आप खेती की?
4: पहले तो प्लाव करना पड़ता है, फिर कल्टीवेटर, फिर प्लेन करके, फिर फिर खाद डालते हैं, खाद डाल के फिर बीज उपचार करके रोटरी से प्लान करके, उसके बाद सीड ड्रिल से बीच में गेहूं भी बो देते हैं
1: जी, जी।
4: तो उसमें क्या है, डबल फसल मिल जाती है, गन्ने की भी मिल जाती है और गेहूं की भी मिल जाती है। तो जो गन्ने में जो लागत रहती है तो उसका एवज में गेहूं का फसल मिल जाती है।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।
6: ये साल भर की फसल होती है हमारे, जो गन्ना होता है, हमारे किसान भाई को आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई उनको जो साल भर की जो फसल है वो उसमें अच्छा उत्पादन मिले, तो रखरखाव को लेकर क्या उपयोगी बात आप हमारे किसान भाइयों से कहना चाहेंगे अपने अनुभव के आधार पर?
4: गन्ने की फसल 100% परफेक्ट फसल। गन्ने की फसल ऐसी है कि जैसे सोच लो कि बीमा, जैसे बीमा में मिलना ही है, ऐसी गन्ने की फसल में मिलना ही मिलना है। फसल गिर भी जाएगी तो पैदा होगा, आग भी लग जाएगी तो पैदा होगा, जो तुसार पड़ता है ठंड के समय में उसमें भी पड़ जाएगा तो पैदा होगा, तह थोड़ा 19-20 होगा लेकिन पैदा होगा। तो गन्ने की फसल 100% परफेक्ट फसल है। अभी गन्ने की रेट भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, गुड़ के रेट भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, गुड़ बनाने से तो बहुत फायदा ही फायदा है।
1: आपके यहाँ भी गुड़ आप तैयार करते हैं?
4: जी मेरे पास खुद गुड़ की भट्टी है और मैं खुद गुड़ बनाता हूँ।
1: क्या बात है, ये तो एक बात और आई कि भाई गन्ने की यदि फसल ले रहे हैं तो गुड़ भी ये खुद ही उत्पादन कर,
6: मतलब घाना भी इन्होंने लगाया है। क्या बात,
1: तो गुड़ से ज्यादा आमदनी होती है कि गन्ने बेचने से ज्यादा आमदनी?
4: गुड़ गुड़ गुड़ में बहुत आमदनी है
1: जी। तो आपका ये संदेश जा रहा है कि जो गन्ना लगाते हैं, गन्ना फसल लेते हैं, उन्हें कहानी भी करना चाहिए।
6: बिल्कुल, तो उससे उन्हें जो उत्पादन का जो है डबल मुनाफा उनको होगा इससे।
1: चलिए बहुत अच्छी बात अशोक भैया आपने हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कही है। अब हम आपसे विदा ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि ये आगे आंगनवाड़ी भी दिख रही है हमें, तो क्यों ना हम वहाँ चल के उनसे भी दीदी से बात करेंगे। आपसे हम विदा ले रहे हैं, आपको हमारी राम राम।
4: जी जय श्री राम।
1: रजनीश भैया।
2: हाँ संतु भैया।
1: चलो देखो आंगनबाड़ी दिख रही है कि नहीं दिख रही?
2: आंगनबाड़ी नजर आ रही है भैया, बड़ी भरपूर नजर आ रही है। बच्चे भी अच्छे बिल्कुल जैसे बगिया में फूल होते हैं।
1: आजकल हमने देखा है कि आंगनबाड़ियों को बहुत सजा के रखती है हमारी जो दीदी होती है।
2: नई नई योजनाएं आ रही है, आंगनबाड़ी को भी बहुत समृद्ध किया जा रहा है ताकि हमारे जो ग्रामीण है, खास करके जो बच्चे हैं, बालक हैं या बालिका

0: इनका भरपूर लाभ ले सकें।
1: तो चलें दीदी, राम राम।
2: नमस्ते सर।
1: दीदी एक बात बताइए, आंगनवाड़ी जो हम देख रहे हैं, ये आप यहीं पे कार्य करते हैं?
2: जी सर।
1: तो आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं?
2: जी सर।
1: कितने सालों से हैं?
2: सर हमारे 25 साल हो गए सर।
1: 25 साल हो गए। रजनीश भैया, 25 साल का अनुभव है दीदी को?
0: काफी लंबा अनुभव इनको रहा है। ये जानना चाहेंगे कितने बच्चे बच्ची इनके आंगनवाड़ी में आते हैं?
2: जी सर, मेरे यहाँ 22 बच्चे हैं टोटल सर।
1: 22 बच्चे?
2: जी सर।
1: कितने साल तक के अपने आंगनवाड़ी में बच्चे हैं?
2: 3 से 6 के आते हैं आंगनवाड़ी में, बाकी 0 से 5 साल के 104 बच्चे हैं।
1: कौन कौन सी योजना जो है बच्चों के लिए यहाँ पे चलाई जा रही है और बहनों के लिए?
2: गर्भवती के लिए PMBY का लाभ लेती हैं।
1: कितना मिलता है उसमें?
2: उसमें जैसे कि फर्स्ट किस्त में उनको 3,000 मिलता है, सेकंड किस्त में 3,000, ऐसा टोटल 6,000 मिलता है।
1: बच्चों के लिए क्या योजना अभी चल रही है, जैसे पोषण आहार की हुआ, तो पोषण क्या बच्चों को यहाँ पे आप मिलता है बढ़िया?
2: हाँ, बच्चों को सुबह मतलब 9:30-9:30 के अंदर नाश्ता मिलता है, फिर 12:30-1 के अंदर उनको भोजन मिलता है, और यहाँ सालापुर में शिक्षा देते हैं हम, रोज उनके वीडियो आते हैं, सारी जानकारी देते हैं, पढ़ाते लिखाते, खेल खिलाते, बॉल खिलाते हैं, जैसे कि अनौपचारिक शिक्षा में खेल खेल के माध्यम से उनको बच्चों को सिखाया जाता है कि ये ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, या ये आ अनार का है, सारी जानकारी देते हैं अनौपचारिक तरीके।
1: अच्छा, गीतों के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जाता
2: है? कहानी सुनाते हैं, मतलब बैठ के सारी योजनाओं का उनको जानकारी देते।
1: पहले जो हम बच्चों को स्कूल पहुँचाया करते थे, पहले से ही मतलब डाल दिया कर नर्सरी डाल दिया करते थे, पर आज आंगनबाड़ी भी नर्सरी हो चुकी है।
0: आंगनबाड़ी नर्सरी हो चुकी है, उनका पोषण का ध्यान यहाँ रखा जाता है। खेल खेल में उनको गिनती और आपकी वर्णमाला हो गई, अंग्रेजी के भी जो स्पेलिंग उनका अभ्यास कराया जाता है, तो काफी कुछ बच्चे का जो आधार तैयार हो जाता है।
1: बिल्कुल आधार तैयार हो जाता है, और आंगनबाड़ी ही जो ऐसी है ज्ञानवर्धक है, जो यहाँ से बच्चा यदि यहाँ आए तो यहाँ से वो नर्सरी के लिए तैयार हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल भी है, बिल्कुल,
1: क्योंकि यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा के बाद औपचारिक शिक्षा भी उन्हें दी जाती है।
0: बिल्कुल, और शुरुआती जो पोषण है उसका भी ध्यान रखा जाता है, किशोरी बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए भी। सरकार का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छी योजना है, जिसका लाभ मुझे लगता है कि हर बालक बालिका को लेना चाहिए, और इसके लिए उनके माता पिता को ध्यान रखना चाहिए।
1: किस प्रकार टीकाकरण होता है आपके आंगनवाड़ी केंद्र में?
2: टीकाकरण के दिन सारी गर्भवती महिलाओं को बुलाते हैं, धात्री वाले बच्चे वाले सारी महिलाओं को बुलाते हैं जो टीका लगने,
1: और हम देखते चले आ रहे हैं दीदी आंगनवाड़ी में सप्ताह भर बच्चों को पोषण दिया जाता है, अलग अलग उनके लिए आहार बनाया जाता है, तो क्या ऐसा होता है केंद्र में?
2: हाँ, 7 दिन का 7 प्रकार का मेनू है।
1: चलिए, आप ऐसे ही सेवा करते रहिए बच्चों की, आगे उनको पढ़ाते रहिएगा, खेल खेल के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा भी दीजिए, औपचारिक भी दीजिए। आपने जो समय दिया है हमारे आकाशवाणी परिवार को और अच्छी अच्छी बातें कही, इसके लिए हमारे आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी राम राम।
2: धन्यवाद सर।
3: मैंने 2015-16 से ऑल पाम की खेती की है, और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है नहीं, और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं, और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं, और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पम्प का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है, इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
5: ऑयल पम्प की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं, मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं।

0: राजेश भैया।
1: हाँ संतु भैया।
0: अब एक बात ऐसी आ रही है कि मैंने यहाँ पे सुना हूँ कि बहुत अच्छी जो धार्मिक शिक्षाएं भी दी जाती है, सामाजिक शिक्षाएं भी दी जाती है, अच्छे मंदिर भी हैं यहाँ पर, प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, तो मैं ऐसा लग रहा है कि यहाँ की प्रसिद्धि के बारे में कुछ हमारे ऐसे विद्वान मिल जाए या बुजुर्ग मिल जाए, उनसे बातचीत कर लें।
1: तो भैया बहुत ही अच्छा अवसर है, जिस हनुमान मंदिर में हम पहुँचे हैं वहाँ पर एक पुजारी है, वो हमें यहाँ दिख रहे हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं।
0: चलिए। जय सियाराम।
2: जय श्री राम। जय हनुमान
0: जी। आपको हमारी राम राम।
2: राम राम।
0: हम लोग आकाशवाणी छिंदवाड़ा से आए हैं और आप ही के ग्राम बीजाबाड़ा में हम भ्रमण कर रहे हैं, हमारे किसान भाइयों से मिल रहे हैं, आंगनबाड़ी भी गए थे हम। हमें ऐसा लगा कि यहाँ की प्रसिद्धि के बारे में किसी

0: बुजुर्ग से बात करेंगे, आप ही मिल गए तो आपके हम प्रणाम करते हैं आपको। आप यहीं पे रहते
1: हैं? पर मूल स्थान मेरा जन्म स्थान है, यहीं पर किनारे भी 2 किलोमीटर केदारपुर खुर्द है, वहाँ पर मैं प्रधान पाठक हूँ।
0: अच्छा, प्रधान पाठक हैं आप, क्या बात है क्या बात। देखिए भाई, विद्वान तो मिल ही गया।
2: बिल्कुल बिल्कुल, दोहरी भूमिका में है, ये मंदिर का भी संभाल रहे हैं एक पुजारी की तरह और साथ ही में ये प्रधान पाठक।
0: यहाँ की प्रसिद्धि के बारे में बताइए, कोई दार्शनिक स्थल यहाँ के हैं या यहाँ मेले लगते हैं, यहाँ कैसी प्रसिद्धि है पूरे गाँव में?
1: पूरे मध्य प्रदेश का हम आपको बताएं कि जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जो मेरे गुरु जी हैं, जिनसे मैंने दीक्षा प्राप्त की है, उनके आशीर्वाद से यहाँ सुदर्शन चक्र मंदिर बना हुआ है।
0: अच्छा।
1: पूरे क्षेत्र नहीं बल्कि अपितु मध्य प्रदेश का अनोखा स्थान है बीजावाड़ा, जहाँ पर सुदर्शन मंदिर है। अच्छा। भगवान चक्र श्री विष्णु जी का सुदर्शन चक्र धाम पहला है मध्य प्रदेश नहीं अपितु बल्कि पूरे 4-5 हमारे जो प्रदेश है। यदि अभी आप सुनेंगे उत्तर भारत का प्रथम सुदर्शन मंदिर पूरे भक्त जनों के सहयोग से यहाँ पर बना हुआ है।
0: जी,
1: वर्तमान
0: जी,
1: में सुदर्शन धाम के नाम से बीजावाड़ा प्रसिद्ध है। पूर्व में भी इसका एक बड़ा इतिहास है, यहाँ पर गढ़ी थी, यहाँ पर राजाओं की गढ़ी रही है, यानी ये कह दें कि हम बहुत पुरानी 1400 ईस्वी की गणेश प्रतिमा चतुर्मुखी यहाँ पर है। और जहाँ पर भी आप देखेंगे एक अद्भुत एक गढ़ी से यहाँ पर एक बहुत भारी किला भी है। जब आप यहाँ चोरई रोड पर जाएंगे, यहाँ की किला नुमा एक गढ़ी एक बावली भी है जो कम से कम 1,000 साल पुरानी है। और जहाँ भी मतलब खुदाई होती है तो ऐतिहासिक पुरातत्व की बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां, खंडित मूर्तियां, चूंकि ऐसा लगता मुगल काल में ये बहुत बड़ा गढ़ था जहाँ पर हमलावरों ने यहाँ पर लूटपाट भी की होगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है खंडित प्रतिमाओं को देख करके। इसलिए हमारा यहाँ का एक बहुत पुराना इतिहास है, यहाँ माने पहलवानों का गांव भी है।
0: अच्छा।
1: यहाँ पर राजा बाबू पहलवान हुए।
0: अच्छा।
1: इसके पहले राजा बाबू के पहल में भी पहलवानों का गढ़ है, पंडित सखाराम तिवारी जिनको पहलवान कहते थे वो भी यहाँ पर है, मेरे वो पराजा है उनके नाम से पहलवानों का गाँव भी कहा गया है। जहाँ भी जाते हैं बीजावाड़ा के पहलवान पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, पंडित सखाराम पहलवान से लेके राजा बाबू पहलवान, सच्चिदानंद तिवारी जी, कृष्ण बिहारी तिवारी जी, अवध बिहारी, मतलब ऐसे जो लोग, मतलब ऐसी प्रसिद्धि है जिन्होंने पहलवानी के बल पर इस बीजावाड़ा को थामे रखा। ऐसा मानना है कि किसी भी व्यक्ति ने हमारे बीजावाड़ा पर केवल बीजावाड़ा का ध्वज कभी झोंका नहीं, और बजरंग बली की इतनी बड़ी कृपा है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं बीज बाजार पे, हनुमान जी यहाँ के रक्षक हैं, और यहाँ नगबेड़नी माता की एक प्रसिद्ध स्थान है, नगबेड़नी माता वो भी ग्राम की रक्षिका देवी है। और इधर भी जिधर भी आप जाएंगे सही चतुर सीमाओं में देवताओं के मंदिर है, ऐसा ये प्रसिद्ध स्थान है।
0: क्या बात है रजनीश भैया, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपने बताया है ये सारी प्रसिद्धि के बारे में, तो यहाँ पे लोग आए और सुदर्शन मंदिर के बोलते एक ही इकलौता मंदिर है जो छिंदवाड़ा जिले में, मध्य प्रदेश में, पूरे भारत भर में ऐसा बता रहे हैं, यहाँ पे आना चाहिए लोगों को और दर्शन करना चाहिए, क्या कहते हैं आप?
2: हमारे जो सुनने वाले हैं उन तक आवाज जा रही है, अगर उनका आना इस तरफ होता है, कपूरदा तक तो आते ही ज्यादातर दर्शन करने के लिए, थोड़ा सा और आगे तक आ जाए 9 किलोमीटर बीजावाड़ा, और इस मंदिर के एक बार जरूर उन्हें दर्शन का लाभ लेना चाहिए,
0: दर्शन लाभ
2: लेना चाहिए।
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, कोई ऐसी बात तो नहीं छूट रही है प्रसिद्धि की जो अपने ग्राम से हटके हो? और
1: सरयू नदी के भांति नदी का जो आप देख रहे हैं ये ग्राम की सरयू नदी है।
0: जी जी।
1: ऐसी सरयू माता ये हरकत है जो यहाँ घोघरी से निकली हुई है भी यहाँ पर, ये वैन गंगा की सहायक नदी है, वैन गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हमारे ग्राम के किनारे से बहती है, ये हमारे 4 चांद लगाती थी ग्राम की सुंदरता में। वर्ष भर आजकल तो यानी नहर का पानी छूटने बांध का पानी उसमें आ गया है, इसलिए वर्ष भर पानी की स्थिति बनी रहती है, अभी गर्मी भर में सूखा न था, ये जो नदी है हमारे लिए सरयू का काम करती है।
0: आपने बहुत अच्छी जानकारी बीजावाड़ा ग्राम के बारे में दी है, जरूर ये हमारी जो बातें हैं जो भी लोग सुन रहे हैं वो जरूर यहाँ पे दार्शनिक स्थल जैसे कपूरदा धाम आते हैं दर्शन करने के लिए, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो भाई बीजावाड़ा भी आ जाएं वो, तो उनको यहाँ पे जो आपने प्रसिद्धि बताई तो सुदर्शन मंदिर के दर्शन भी कर लें वो। रजनीश भैया ऐसा लग रहा है बात करते चले जाएं पर संध्या माई भी जो है वो सर पे है, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है,
2: बहुत अच्छी बातें बताई और काफी रोचक जो तथ्य हैं इस गांव से जुड़े हुए, इस गांव की संस्कृति से जुड़े हुए, उन तथ्यों को इन्होंने उजागर किया है। बहुत आनंद आता है ऐसे में ऐसी वार्ता सुनने में, और बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके।
0: तो चलिए अब हम आप ही के ग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, संध्या माई हो रही है तो हम और कुछ लोगों से मिलेंगे। ऐसा लग रहा है कि मंदिर है, शिव जी का मंदिर भी है, हनुमान मंदिर भी है, और भक्त लोग मंडली लगाकर बैठे हैं, तो क्यों ना हम चाह रहे हैं कि एक कार्यक्रम को सजाने के लिए पंडित जी आपकी आज्ञा हो तो एकाद हम भजन वगैरह या गीत वगैरह सुन लें।
1: ये तो बड़ सौभाग्य का विषय है, भगवान के कार्य के लिए राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम, मंडली का भी आनंद लें।
0: बिल्कुल, क्योंकि कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर न रुत रही पारा, है ना, इसलिए भगवान का नाम ही जिसके सारे हम अपनी जीवन की नैया को पार लगाते हैं। चलिए आपने जो समय दिया हम आपको प्रणाम करते हैं, जय सियाराम।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।
0: तो रजनीश

0: दिया।
1: हाँ भैया, मंडली की आप बात कर रहे थे तो
0: बिल्कुल मेरा मन हुआ है कि एक आध गीत वगैरह सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल, अगर मंदिर में आए और मंडली बैठी है तो गीत सुनने की तो
0: बनती है ना। चलिए तो अपन मंदिर चलते हैं, शिव मंदिर चलते हैं, वहाँ पे मंडली बैठी है तो वहीं पे अपन गीत वगैरह सुनवाते हैं अपने किसान भाइयों को।
1: बिल्कुल भैया, बिल्कुल
0: चलते हैं। देखिए मंडली बैठी है तो सबसे पहले इनका परिचय ले लें।
1: परिचय लेते हैं भैया, सबसे पहले परिचय लेते हैं अपनी हारमोनियम वाले।
0: जरा हारमोनियम बजाइए हम। ये देखिए ये हारमोनियम लेके बैठे हैं। क्या नाम है आपका
2: जी? संतु भैया, मेरा नाम जी विनोद साहू है।
0: विनोद भैया, चलिए विनोद भैया, ये आप हारमोनियम बजाएंगे और ढोलक पर आप हैं, क्या नाम है?
3: युगल सनोडिया।
0: जरा बजा के बताइए ना कैसी बजा। हाँ, ये भी ढोलक बज गई। इधर मंजीरा के लिए बैठे, क्या नाम है आपका?
4: बसंत डहरिया।
0: बसंत भैया, मंजीरा आपने पकड़ लिया, मैं भी बजाता हूँ मंजीरा वैसे, हाँ मगर आप बजाएंगे आज। आपका नाम?
5: परशुराम सनोडिया जी।
0: हाँ परशुराम जी। आपका नाम?
6: श्याम कहार।
0: आपका?
7: राधे श्याम डहरिया।
0: राधे श्याम जी।
8: गिरजा नंदन।
0: हाँ गिरजा जी। अच्छा चलिए बढ़िया, हमें एक कौन सा गीत सुनाने वाले हैं आप हमारे किसान भाइयों को?
2: जी हम राम भजन सुनाना चाहते हैं।
0: राम जी का भजन
2: जी।
0: बहुत बढ़िया, स्वागत है।

0: बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने भजन सुनाया राम जी के चरणों में। क्यों रजनीश भैया, कैसा लगा?
1: भैया बहुत अच्छी प्रस्तुति थी, ये सुन के इतना आनंद आया कि ऐसा लग रहा था कि सुनते चले जाओ।
0: चलिए अब हम आप लोगों के ग्राम से बस विदा ले रहे हैं। आप सभी को हमारी राम राम।
2: राम राम।
0: रजनीश भैया,
1: हाँ संदीप भैया,
0: चलिए देखिए आप निकल रहे हैं, मगर भाई ग्राम के सरपंच हैं तो भाई उनसे भी तो मिलना जरूरी है ना।
1: बिल्कुल, सबसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं गांव के सरपंच साहब।
0: चलिए उनके घर पे अपन चलते हैं, ऐसा लग रहा है। घर तो खुला है वैसे, होंगे, गाड़ी भी खड़ी है घर में, है ना।
1: चलिए भैया उनसे बात करते हैं, मिलते हैं। तो
0: चलो चलते। अरे सरपंच जी, राम राम।
3: राम राम जी।
0: अरे वाह, आप ही सरपंच हैं क्या?
3: जी हाँ।
0: अच्छा, क्या नाम है आपका?
3: अनिल सनोडिया।
0: अनिल सनोडिया जी, अच्छा कब से हैं आप सरपंच पे पद पे?
3: 2022 से।
0: यानी आपको 4 साल हो गया?
3: जी हाँ।
0: कैसा अनुभव रहा है आपका सरपंच के पद पर?
3: बहुत अच्छा अनुभव रहा है, लोगों की सेवा करने में बहुत आनंद आता है और गाँव के विकास करने में रुचि है और लोगों का बड़ा सहयोग मिलता है।
0: ये बताइए कौन कौन सी योजनाएं जो है अभी ग्राम के लिए चलाई जा रही है?
3: शासन के द्वारा जो भी स्कीम चलाई जा रही है जनहित सी, वो सारी ग्रामवासियों को मिल रही है, जिसमें लोगों को नल से पानी मिलना चाहिए। तो जल जीवन मिशन के तहत हमारे यहाँ काम हुआ है और इसके पहले भी अच्छा काम था, नल कनेक्शन गांव घर घर थे, लेकिन दुरुस्त होके फिर से हुआ है। लोगों को पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, जिन लोगों को राशन मिलना चाहिए राशन भी मिल रहा है। शासन के द्वारा ये योजना बनाई गई थी लाडली बहना, उसमें महिलाओं को भी मिल रहा है, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। शासन के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है वो सारी की सारी योजनाएं धरातल में लोगों को मिल रही है।
1: तो भैया अच्छा अनुभव आपका रहा है 4 सालों का, जो आपने काम यहाँ करवाए हैं, तो उससे आपके जो क्षेत्रवासी संतुष्ट रहते हैं आपसे?
3: देखो संतुष्टि तो कभी हो नहीं सकती, चाहे जितना भी काम कर लो कम होता है ना। और मुझे भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ काम करना चाहिए था, लेकिन कि जितना शासन से फंड मिलेगा आप उतने ही काम कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे काम अधूरे रह गए हैं। मैं आपके माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ,
0: बिल्कुल,
3: जिससे कि हमारी बात हमारे मुखिया, प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया तक पहुँचे और जिले के मुखिया तक पहुँचे। और सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि जो खेत सड़क शासन के द्वारा बंद की गई है, हम 4 साल हो गए हैं, 4 साल में हमने गांव की एक भी खेत सड़क नहीं सुधार पाए। किसानों ने अपनी मेहनत से जो भी सुधारा है वही सुधार पाए हैं। अब क्या होता है कि काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, काली मिट्टी क्षेत्र होने के कारण किसान दलदल में वाहन से खेत भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो किसानों को बड़ी समस्याएं होती है। जो उन्नतशील किसान खेत पे चाहते हैं कि गन्ना लगाएं, सब्जी लगाएं, लेकिन रास्ता नहीं होने के कारण वो फसल नहीं लगा पाते। मैं तो ये मानता हूं कि यदि किसानी का मुख्य आय का यदि स्रोत है और किसान को यदि उन्नत किसान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खेत सड़क मार्ग देना पड़ेगा कि लोग खेत सुलभता से पहुंच जाए, किसान अपनी फसल वहां से निकाल पाए। तो ये बड़ी कठिनाई है। तो मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी एक छोटी सी ग्राम पंचायत, इसी प्रकार हमारे जिले की हजारों ग्राम पंचायत है जहां पे खेत सड़क की आवश्यकता है। दूसरी चीज, हमारी इतनी बड़ी नदी है, इसमें एक भी डैम नहीं है, तो स्टॉप डैम बन सकता बड़ा, जिससे कि पानी का संचय करके रोका जा सके, क्योंकि बड़ी लागत का काम है। मैं बार बार प्रशासन से निवेदन किया हूं कि यहां एक बड़ा स्टॉप डैम बनाया जाए, जिससे कि पानी का संचय हो जाए, जिससे किसान उसका लाभ ले सके। गर्मी में जैसे कि अभी पानी की बड़ी समस्या हो रही है, जल स्रोत बहुत नीचे चले गए हैं।
0: चलिए देखिए आपकी बात जो है शासन प्रशासन तक पहुंच रही है, जरूर वो आपकी बातों का अनुसरण करेंगे, क्यों रजनीश भैया?
1: बिल्कुल, उनकी जो अपेक्षाएं हैं प्रशासन से, शासन से, वो उसके ऊपर खरा उतरे प्रशासन। इनकी जो जनता की जो जरूरत है यहाँ पर, खासकर ग्रामवासियों, जैसे उन्होंने टॉप डैम की बात कही, किसानों खेती बाड़ी में लाभ मिल सके, हम ऐसी आशा करते हैं कि शासन इन अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा।
0: चलिए आपने बहुत अच्छी बात कही है, ऐसे ही आप ग्राम विकास के लिए कार्य करते रहे
3: और आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के हमारे गांव का चयन किया, इसके लिए आप लोगों की बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। आपको भी हमारी राम राम।
3: राम राम।
0: रजनीश भैया,
1: हाँ संतु भैया,
0: देखो सरपंच जी से तो बात हो गई, अब अपन जाने वाले हैं।
1: बिल्कुल,
0: अजय रास्ते में ऐसा लग रहा है कि कौन भैया आ रहे हैं, जरा इनसे बात कर लो जरा आप जरा।
1: जी भैया, भैया राम राम।
4: राम राम जी।
1: क्या शुभ नाम भैया आपका?
4: पंकज।

0: तिवारी
1: जैसा कि हमें जानकारी मिली कि आप उपसरपंच भी हैं और साथ में किसान भी हैं,
2: जी
1: तो इन दोनों भूमिकाओं को कैसे निभाते हैं?
2: ये खेती बाड़ी के साथ साथ उपसरपंच का जो मेयर पद है,
1: दायित्व जो
2: दायित्व है, उसे आराम से निभा देते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी के बीच में काफी समय मिलता है। ऐसा नहीं कि अपन हमेशा खेत में ही रहते हैं।
1: कौन कौन से दायित्व है जो तत्परता से निर्वाह करने के लिए समक्ष है आपके?
2: गाँव के अंदर भी अभी काफी सड़कें बनने की रह गई है। शासन से हमारा निवेदन है कि गाँव को, हमारे गाँव नहीं और भी दूसरे गाँव, सभी गाँव में जो गाँव की सड़कें हैं वो भी बनना चाहिए, जिससे लोगों को अपने घर मैंने बस्ती में कीचड़ जो है वो ना रहे।
1: आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को जो आपको सुन रहे हैं?
2: श्रोताओं से निवेदन है कि गाँव की स्वच्छता के लिए, क्योंकि कोई प्रशासनिक सुविधा तो रहती नहीं है, जैसे नगर निगम या नगर पालिका में बहुत कर्मचारी रहते हैं, सब रहते हैं, वैसे पंचायत में ऐसा कुछ रहता नहीं है। हम गाँव वालों से निवेदन करते हैं कि अपने अपने घर के आजू बाजू खुद स्वच्छ रखें, साफ सफाई बनाए रखें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने हमसे की। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। राम राम।
2: राम राम जी।
3: अब अपने छिंदवाड़ा की ओर अपन के बढ़ने हैं, मगर अपन चलो जी भैया, अपन के रोक के क्या कह रहे हैं जरी उनसे बात कर लें का। चलो चलो
1: चलो चलो भैया।
3: अरे राम राम जी।
4: अरे भैया नमस्कार नमस्कार।
3: अरे जे तो भैया अप टू डेट देखा रहे हैं। जा बताओ आपने हमके रोक के काहे लाइन रोके आप?
4: अरे भैया वो आप देखा, वो एक भैया से बात कर रहे थे।
3: हाँ।
4: और आपके हाथ में कुछ रिकॉर्डर जैसा दिख रहा था।
3: हाँ हाँ हाँ।
4: तो भैया मुझे बड़ा शौक है सोशल मीडिया में आने का।
3: अरे वाह। अच्छा आपका नाम बताए पहले।
4: मेरा नाम नरेंद्र महौर्य है।
3: क्या कर रहे थे आप?
4: भैया मैं एक कंपनी में हूँ।
3: अच्छा
4: किसान मित्र हूँ मैं।
3: अच्छा किसान मित्र हैं।
4: जी हाँ।
3: अरे वाह, किसान मित्रों का बड़ा योगदान रहता है।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज सलाह देते हैं, बहुत अच्छा उनके काम आते हैं।
4: भैया मेरा खाद का काम है।
3: हाँ हाँ।
4: और किसानों को मैं जो कैसे संतुलित खाद डालना चाहिए उसके विषय में मैं जानकारी देता हूँ। जैविक खाद में भी किसानों को सोच समझ के और अच्छी कंपनी का जो जैविक खाद आता है।
3: हाँ हाँ।
4: उसका उपयोग करना चाहिए। पता चले कोई भी भलते गांव बेचने वाला आया, खरीद कर डाल दिया, रिजल्ट जीरो।
3: हाँ।
4: तो जो सर्टिफाइड होती है और जो वास्तव में जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, ऐसी खाद का ही हमें उपयोग करना चाहिए।
3: चलिए तो बहुत अच्छी बात है। आप सारे किसानों को आप समझाइश दें कि संतुलित मात्रा का उपयोग करें तो फसल भी बहुत बढ़िया होगी, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा।
4: बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, हमेशा यही कोशिश रहेगी।
3: राम राम।
4: राम राम जी।
1: चलते चलते मुझे लगता है किसान भाई और हमसे बात करने की बात।
3: अरे भैया राम राम।
5: राम राम भैया। राम राम।
3: क्या नाम है आपको?
5: परशुराम धनुड़िया जी।
3: अरे परशुराम भैया एक बात जा बताओ कि खेती बाड़ी है का?
5: हाँ जी छोटी सी है, 5-6 एकड़ करीब है।
3: अरे बहुत है, 5-6 एकड़ फिर भी अच्छी है। कौन सी फसल लेते हैं आप उसमें?
5: भाई मक्का लेते हैं और दूसरी गेहूं की फसल लेते हैं बस।
3: अच्छा पानी की व्यवस्था है आपके पास?
5: फुल व्यवस्था है।
3: अच्छा उत्पादन मिलता है आपको?
5: हाँ, अच्छा उत्पादन मिलता है, जितनी लागत लगाते हैं उसका उत्पादन मिलता है।
3: चलो तो अब हम आपसे विदा ले रहे हैं, काहे की संध्या माई हो रही, हमके आकाशवाणी जाने हैं छिंदवाड़ा। आपको हमारी राम राम।
5: राम राम भैया। राम राम।
3: रजनीश भैया जी रास्ता रोक के खड़े हो गए अपने आप। जी का नाम आपको?
6: मदन तिवारी।
3: अरे मदन भैया आप हमारे रास्ता रोक के खड़े हो गए गाड़ी के आगे, अभी हमके विदा लेने हैं सब किसान भाइयों से। आकाशवाणी आज आपके ग्राम में आई है तो आपको कैसा लग रहा है?
6: बहुत बढ़िया लग रहा है कि आप लोग छिंदवाड़ा से यहाँ तक हमारे ग्राम में इतनी दूर आए हो।
3: हाँ।
6: और मैं ये कहना चाहता हूँ।
3: हाँ।
6: कि यहाँ फलदार भी और फूल वगैरह हों में तो ये बहुत अच्छा, इसमें लाभ मिलेगा किसानों को।
3: बात
6: की फसल है, जाम की फसल है, पपीते वगैरह ये लगाए।
3: हाँ हाँ।
6: तो इससे अच्छा आवक होगी किसानों को।
3: बहुत बढ़िया।
6: और गुलाब के फूल है, गेंदे के फूल है, इनसे भी किसानों को मैं सजेशन देना चाहता हूँ।
3: हाँ हाँ।
6: संतु भैया।
3: हाँ।
6: कि ये अपने खेतों में बाड़ियों में सब्जी वगैरह लगाए तो इसको भी किसान को लाभ मिलेगा। मैं भी अभी अपने घर के पीछे में कुछ आम के झाड़ लगाया, जाम के लगाया, पपीते के लगाया, जिससे कि बहुत अच्छा है। और सूजी अच्छा। के बेलपत्ती के भी झाड़ लगाया, अभी चिड़ियों के लिए पानी भी रखे। मैं ये भी किसानों से अपने बहुत बढ़िया है कि झाड़ों पे एक खुट्टी बना के ऐसा परैया टाइप में, तो पक्षी भी अब मैं देखता हूँ सवेरे सवेरे जब पानी रखता हूँ तो उसमें चिड़िया भी अपने पीते रहती हैं, चहकते रहती हैं, इससे बड़ा आनंद मिलता है।
3: ऐसे ही आप पशु पक्षियों की सेवा करते जाइए और बढ़िया फलदार पौधों से उत्पादन लीजिएगा, अतिरिक्त आय के साधन बनाइएगा। आपने जो हमसे बात कही है कार्यक्रम के लिए, हमारे आकाशवाणी परिवार की तरफ से, सभी किसान भाई की तरफ से आपको हमारी राम राम।
6: राम राम संतु भैया।
3: देखो ग्राम के सारे लोग अब इकट्ठे हो गए।
1: बिल्कुल इकट्ठे हो गए हैं और इसे विदा लेने का समय।

0: आपसे तो बात करने का हमको समय अब नहीं है, तो अब चलन की बारी है,
1: तो सबको राम राम कह लेते हैं भैया।
0: हाँ, तो चलिए आप सभी को कह रहे हैं संतू भैया और
1: रजनीश भैया की
0: राम राम, जय जवान
2: जय किसान,
0: जय जवान
2: जय किसान,
0: जय जवान
2: जय किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसके अंतर्गत आपने सुना स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

कश्मीर का ये छिंदवाड़ा केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं, डीजे प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी पसंद।

श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मेरी पसंद में। कार्यक्रम में स्वीकार करें शाइस्ता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, दौर चाहे जो भी हो, लेकिन फिल्मी गीत फिल्मों की जान होते हैं। यदि कहानी बॉलीवुड का दिल है तो गाने उनकी धड़कन। फिल्मी गीत न सिर्फ गीत हैं, बल्कि जानी अनजानी भावनाओं के सहारे हमारे मन के मीत भी हैं। ऐसे ही कुछ चुनिंदा गीत मैं लेकर आई हूं आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है मेरी पसंद। दोस्तों, मेरी पसंद का पहला गीत एक रोमांटिक और सदाबहार गीत है, जो प्यार और उसकी तड़प को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाता है। इसके भावपूर्ण बोल बेकरारी के एहसास को बताते हैं। दो प्यार करने वाले प्रेमियों के बीच इंतजार और चाहत को बताता है ये गीत। दोस्तों, शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों का सुरीला संगम है इस गीत में। आइए मिलकर सुनते हैं मेरी पसंद का ये गीत।

की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं हम जिसे प्रेम करें वो हमारी जिंदगी बने, लेकिन सच्चा प्यार दूर रहकर भी अपने प्यार के लिए दुआ करता है। लेकिन प्यार में अधूरापन छोड़ जाता है दिल में सुलगते हुए वो सवाल जिनके जवाब ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। कुछ यही कहता है मेरी पसंद का ये अगला गीत।

दोस्तों, सारे एहसास एक तरफ और प्यार का एहसास एक तरफ, हर भाव की अपेक्षा प्यार का भाव सर्वोपरि है। मेरी पसंद का अगला गीत निस्वार्थ प्रेम

कार्यक्रम मेरी पसंद का अगला गीत किशोर कुमार और सलमा आगा की जादुई आवाज में सजाया गया है, जो एक अनजाने रिश्ते और दिल के गहरे एहसास को बयां करते हैं। इस गाने का संगीत राहुल देव बर्मन ने तैयार किया है, जिसमें सुकून देने वाली क्लासिक मेलोडी है। प्रेम और कसक के मिले जुले भाव इस गीत को और भी खूबसूरती देते हैं। मेरी पसंद का ये गीत जितना सुनने में अच्छा लगता है, देखने में भी उतना ही खूबसूरत है।

दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत महान गायिका आशा भोसले की आवाज़ में, जिसमें एक दर्द झलकता है, एक नज़ाकत है इस गीत में जिसे रति अग्निहोत्री ने बड़ी शिद्दत से निभाया है। दोस्तों, ये गीत बताता है कि प्यार में देरी या बेवफाई हमेशा रुलाती है। प्यार में इंतज़ार लंबा तो लगता है, साथ ही तकलीफ देने वाला भी होता है। ये गाना अपनी रूहानी धुन और बोलों के कारण बना है मेरी पसंद।

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। ये वो गीत है जो 90 के दशक की रोमांटिक फिल्मों के संगीत का एक उदाहरण है। एक बेनाम सी उदासी है इस गीत में। अलका याग्निक की मधुर आवाज ने जैसे रूह भर दी हो इस गीत में, जो सीधे दिल को छू लेती है। शायरी और संगीत का मेल नजर आता है दोस्तों इस गीत में, जो बताता है जिंदगी का माहौल शायराना है। गीत के बोल प्रेम के एहसास से सजे हैं। आइए सुनते हैं मेरी पसंद का ये अंतिम गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं गैर फिल्मी गज़लें।

श्रोताओं, इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र और सुन रहे हैं गैर फिल्मी गजलें। आइए अब आपको सुनवाते हैं हजरत जयपुरी का कलाम। आवाज़ें हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की।

दोस्तों इसी के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम गैर फिल्मी गजलें। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरो गोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित

0: की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा, साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता

0: सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: As far as Operation Sindoor is concerned,
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार

0: श्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 175,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आपके लिए इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह। जौहर महमूद इन गोवा, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का ये गाना है। मुकेश की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: घराना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, रवि का संगीत था। 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अनारकली फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल सी रामचंद्र का संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती के सभी श्रोताओं को दिलीप का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर।

23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले लगभग 3,500 जिंगल्स के लिए आवाज दी। क्रिकेट विश्व कप 1999 के दौरान भारतीय टीम की हौसला अफजाई के लिए जोश ऑफ इंडिया गीत में भी उन्होंने गाया। उन्होंने संगीत में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। केके का कहना था कि गायक का चेहरा दिखने के बजाय उसका सुना जाना ज्यादा जरूरी है।

केके के चर्चित गानों की बात करें, शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का गाना आंखों में तेरी काफी लोकप्रिय हुए, काइट्स का जिंदगी दो पल की, जन्नत का गाना जरा सा, गैंगस्टर का गाना तू ही मेरी शब है,

के बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे। कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर परफॉर्म भी करते थे और नेचर लवर भी थे। केके के कुछ अपने उसूल भी थे जिनसे वो समझौता नहीं करते थे। एक बार एक गाने को रिकॉर्ड करते वक्त उन्हें लगा कि गीत के बोल ठीक नहीं है और उनकी इस आपत्ति का सम्मान करते हुए गाने के बोल बदल दिए गए। अच्छे गायक की उनकी अपनी परिभाषा थी। केके मानते थे कि अच्छा सिंगर वही है जो किसी संगीतकार के गाने को अपना बना के गा सके।

0: संगीतकार ललित पंडित ने कृष्ण कुमार कुन्नाथ के लिए अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए।
1: केके को पूरी म्यूजिक फ्रेटर्निटी बहुत प्यार करती है, बहुत ही अच्छे कलाकार होने के अलावा बहुत अच्छे दिल के इंसान थे, बहुत दोस्त थे मेरे साथ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में लाइफ में कभी कभी और शोबिज मुकेश भट्ट जी की फिल्म में गाने गाए हैं, उन्होंने सारे मेरे जतिन ललित के भी गाने गाए हैं। उनकी आवाज़ में एक यूथ को अट्रैक्ट करने

की एक क्षमता थी और गाने में जो सुर पकड़ने की ताकत थी उनमें बहुत थी। और सबसे बड़ी बात है जो सिंगर में लोग ढूंढते हैं और जो कुदरत की तरफ से आती है वो एक वॉइस क्वालिटी। उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही यूथफुल वॉइस क्वालिटी थी। और वॉइस क्वालिटी का ऐसा होता है कि एज से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता, वॉइस पुरानी नहीं होती आपकी, आपकी गायकी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, और वो केके में थी।

के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से कॉन्सर्ट्स का हिस्सा बने, जिसके लिए वो खास तौर से जाने जाते थे। युवा दिलों की धड़कन बने और अपने आखिरी पलों में भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वो युवाओं के साथ ही थे। 53 वर्ष की अवस्था में मंगलवार 31 मई 2022 को कोलकाता में कॉलेज के कॉन्सर्ट के बाद हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह गए।

0: श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर। आलेख और स्वर दिलीप का, संपादन और प्रस्तुति तेजस्वी कांबले की।
1: आज के फनकार।

छाएगी प्रोग्राम थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि खूबसूरती ऊपर वाले की देन है। हर एक इंसान के नए नक्श बनाने वाले ने अपनी ही तरह से बनाए हैं, जो उस इंसान के व्यक्तित्व की पहचान है। सिर्फ सुंदर तीखे नए नक्श ही असली खूबसूरती नहीं होते, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं।

किसी को पहली बार देखते हैं तो आपकी दो आंखें चार होती हैं सामने वाले की दो आंखों से। आंखों के लिए एक शायर ने क्या खूब कहा है, वो चीज कहते हैं फिरदौस से गुमशुदा जिसको, वो चीज कहते हैं फिरदौस से गुमशुदा जिसको, कभी कभी तेरी आंखों में पाई जाती है।

आंखें आईना होती हैं दिल का। खैर, आंखों के बाद प्रभावित करती है सुरीली आवाज। आवाज में वो जादू होता है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है, और यही आवाज पहचान होती है इंसान की।

जरूर ढाएगा कोई महशर, जरूर फितना बर्पा करेगा तुम्हारा अटखेलियों से चलना, झुका के गर्दन उठा के आंचल। जी हाँ, बारी है चाल की। जहाँ उठना बैठना बात करना लोगों के मन को लुभाता है, वहीं चलना भी एक अदा है। ऐसी मतवाली चाल जिसे देखकर कोई तौबा।

खूबसूरती क्या है? देखा जाए तो हर चीज का नियमानुसार होना। किसी की आंखें छोटी होती हैं या बड़ी बड़ी होती हैं, किसी के होंठ पतले हैं या मोटे, लेकिन अदाएं, जी हाँ, अदाएं तो आपके बस में हैं, क्योंकि यही अदाएं देखकर एक शायर ने ये कहा।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: यार कन्हैया
1: बैठा चुप है भैया
2: मेरा भैया
0: हाँ हाँ तेरा भैया हाँ हाँ मेरा भैया
2: भैया भैया बोलो भैया
3: बोलूं क्या मैं अरे बोल कन्हैया

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये पहला जो गीत है अब्दुल्ला फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर

0: उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।